0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
1: ओम यस्य सूर्यश्चक्षुः चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, जागृति कार्यक्रम
2: और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्लाह अली खामिनेई के शव को आज तेहरान भर के रास्तों पर ले जाया जाएगा जिससे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मैयत में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान के में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन इन सबके बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनेई की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम से आ रहे एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़े बादलों का असर आज दिन से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की

0: दी जाती है। तापमान सरल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चलेंगी। कल से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकेगी। सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 के मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 6 जुलाई 2026 आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और इस महीने का पहला सोमवार है और आप लोगों के साथ बिताने का मौका मिल रहे हैं। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और हमें पता है कि आप भी साथ निभाएंगे और इस सुबह को और रंगीन बनाएंगे। कहते हैं ना, जो लोग सुबह जल्दी उठकर सपने देखते हैं वो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए साथ मिलकर सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, जागृति कार्यक्रम के सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पुष्पलता कलुआ का सादर अभिवादन है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विचार करेंगे। प्रिय श्रोतागण, भारतीय वैदिक परंपरा में मानव जीवन को अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और उद्देश्यपूर्ण माना गया है। यह जीवन केवल शरीर की आवश्यकताओं, भौतिक सुख सुविधाओं अथवा सामाजिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक ऐसी सूक्ष्म और सतत यात्रा है जिसमें मनुष्य क्रमशः अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हुए परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। वेदों के ऋषियों ने मानव जीवन की इस संपूर्ण दिशा को 4 मूलभूत पुरुषार्थों में विभाजित किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों केवल दार्शनिक विचार नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन दृष्टि की आधारशिला है, जिन पर नैतिकता, समाज व्यवस्था, अव्यवस्था और आध्यात्मिक साधना आधारित है। पुरुषार्थ शब्द 2 शब्दों से बना है, पुरुष

और अर्थ। यहाँ पुरुष का अर्थ केवल व्यक्ति विशेष या पुरुष लिंग नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति है। और अर्थ का अर्थ है उद्देश्य या लक्ष्य। इस प्रकार पुरुषार्थ का तात्पर्य है मानव जीवन के वे चार महान लक्ष्य जिनकी प्राप्ति के लिए यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। वैदिक दृष्टि में मनुष्य केवल जैविक इकाई नहीं है, बल्कि वह चेतन, विवेकशील और आत्मचेतन सत्ता है, जिसमें सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित और कर्तव्य अकर्तव्य का भेद करने की क्षमता है। इसी कारण उसका जीवन केवल भोग या अस्तित्व तक सीमित न होकर आत्मविश्वास और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इन चार पुरुषार्थों में धर्म को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि धर्म ही शेष तीनों का आधार और नियामक है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। जो संपूर्ण सृष्टि, समाज और जीवन को धारण करता है, वही धर्म है। धर्म कोई संकीर्ण धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक नैतिक नियम है, जो सत्य, न्याय, करुणा, संयम और कर्तव्य पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कन्नाद ने धर्म की अत्यंत वैज्ञानिक परिभाषा दी है, यतो अभ्युदयनिः श्रेयस्सिद्धि सधर्मः, अर्थात जिसे सांसारिक उन्नति और परम कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। यह परिभाषा धर्म को दो स्तरों पर समझाती है, एक भौतिक अभ्युदय और दूसरा आध्यात्मिक निःश्रेयस। इस प्रकार धर्म केवल पूजा पद्धति या आस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का नैतिक विज्ञान है। वेदों में धर्म का आधार रीत और सत्य को माना गया है। रीत का अर्थ है ब्रह्मांडीय संतुलन, प्राकृतिक नियम और नैतिक व्यवस्था। यजुर्वेद में स्पष्ट आदेश दिया गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानव जीवन का सार्वभौमिक संविधान है। यदि मनुष्य सत्य और धर्म से विचलित हो जाए, तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। धर्म व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। एक शिक्षक का निष्पक्ष ज्ञान देना, एक न्यायाधीश का निष्पक्ष निर्णय देना, एक चिकित्सक का ईमानदारी से उपचार करना और एक नागरिक का कर्तव्य पालन करना, ये सभी धर्म के व्यवहारिक रूप हैं। धर्म समाज में विश्वास, स्थिरता और नैतिकता स्थापित करता है। यदि धर्म समाप्त हो जाए, तो समाज में केवल स्वार्थ, संघर्ष और अराजकता रह जाती है। प्रिय श्रोतागण, धर्म के पश्चात दूसरा पुरुषार्थ अर्थ है। अर्थ का सामान्य अर्थ धन समझा जाता है, किंतु वैदिक दृष्टि में अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि जीवन के सभी भौतिक साधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन, उद्योग, तकनीक और आर्थिक व्यवस्था। वेद अर्थ को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि धर्म अनुकूल अर्थ अर्जन को जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य को परिश्रम पूर्वक जीवन निर्वाह हेतु साधन अर्जित करने की प्रेरणा दी गई है। अर्थ मानव जीवन के संचालन का आधार है। बिना अर्थ के न शिक्षा संभव है, न चिकित्सा, न परिवार का पालन और न समाज का विकास। किंतु अर्थ का उपयोग सदैव धर्म के अधीन होना चाहिए। यदि अर्थ अधर्म से अर्जित किया जाए, तो वह सामाजिक विषमता, शोषण और दुख का कारण बनता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि अधर्म से प्राप्त धन त्याग योग्य है, क्योंकि वह अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म और अर्थ का संबंध अत्यंत गहरा है। धर्म अर्थ को दिशा देता है और अर्थ धर्म को व्यवहार में लाता है। जब यह संतुलन टूटता है, तो समाज अस्थिर हो जाता है। अब
तीसरे पुरुषार्थ का

0: काम की ओर दृष्टि डालें तो यह केवल इंद्रिय सुख नहीं बल्कि इच्छा, आकांक्षा और प्रेरणा का सिद्धांत है। प्रत्येक सृजन, प्रत्येक विकास और प्रत्येक खोज के पीछे काम ही मूल शक्ति है। ऋग्वेद में आया है, कामस्तद्ग्रे समवर्तताधि मनसः, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में इच्छा उत्पन्न हुई। इसका अर्थ है कि इच्छा ही सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति है। यदि मनुष्य में इच्छा न हो तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, समाज सेवा की इच्छा, वैज्ञानिक खोज की इच्छा और आत्मविश्वास की आकांक्षा, ये सभी काम के शुद्ध रूप हैं। किंतु जब काम धर्म से विचलित हो जाता है तो वह वासना बन जाता है। यही कारण है कि काम को धर्म के अधीन रखा गया है ताकि वह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए कल्याणकारी बने। प्रिय श्रोतागण, अब मानव जीवन के चौथे और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा की जाती है, जो संपूर्ण वैदिक जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य है। यदि धर्म जीवन की नींव है, अर्थ उसका साधन है और काम उसकी प्रेरक शक्ति है तो मोक्ष उसका परम शिखर है, जहाँ पहुँचकर मानव अस्तित्व अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की वह अवस्था है जिसमें वह अज्ञान, दुख, बंधन और कर्म चक्र से पूर्णतः मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। उपनिषदों में मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय वह मार्ग है जो तत्कालिक सुख और भौतिक आकर्षण देता है, जबकि श्रेय वह मार्ग है जो दीर्घकालिक कल्याण और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। विवेकी व्यक्ति सदैव श्रेय का चयन करता है क्योंकि वही मोक्ष की ओर ले जाता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने मोक्ष की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाते हुए कहा है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। जब चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही मोक्ष की अवस्था है। यह न दुख है, न अज्ञान, न भय और न इच्छा, केवल शुद्ध चेतना और शांति का अनुभव होता है। सांख्य दर्शन में मोक्ष को पुरुष और प्रकृति के भेद ज्ञान के रूप में समझाया गया है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह प्रकृति से भिन्न है तब वह बंधन से मुक्त हो जाती है। इस प्रकार मोक्ष केवल धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि एक गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था है। प्रिय श्रोतागण, अब यदि चारों पुरुषार्थों को एक समग्र दृष्टि से देखा जाए तो उनका पारस्परिक संबंध अत्यंत वैज्ञानिक प्रतीत होता है। धर्म इस संपूर्ण संरचना की आधारशिला है क्योंकि वही यह निर्धारित करता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा अनुचित। अर्थ उस आधार पर जीवन को भौतिक स्थिरता प्रदान करता है, काम उस जीवन को ऊर्जा, प्रेरणा और सृजनशीलता देता है और मोक्ष उस संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है जो मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल चार शब्द नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा है। धर्म जीवन का आधार है, अर्थ उसका साधन है, काम उसकी प्रेरणा है और मोक्ष उसका परम लक्ष्य है। जब ये चारों संतुलन में रहते हैं तभी मानव वास्तव में सफल, शांत और सार्थक बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। बस ये दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ हो रहा है और यहाँ पर सुबह का नज़मा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। जी हाँ, 6:30 बजे समाचार भूलिएगा नहीं, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद। तब तक

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कामगारों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। अधिकारियों के अनुसार समाधान के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम और ई हेल्थ की तरफ जरूरी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताकर इसका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ईरानी वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर आयतुल्लाह अली खामिनेई की मैयत में उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनेई की गैर मौजूदगी में ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर ये रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए हैं, जब विदेशी कामगारों के काम की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बीगन का अनुमान है कि अगर उन लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाए जो अपना काम छोड़ने के बाद बिना दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 के करीब पहुंच सकती है। शैली नियरबर्न, यशना मिश्रा।
2: फैजल अली बिगन के अनुसार ये विदेशी कर्मचारी वैध तरीके से यहाँ पर मॉरिशस में काम करने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बाद में अपने रहने या काम करने की परिस्थितियों के कारण अवैध स्थिति में पहुंच जाते हैं। परिस्थिति या कार्य शर्त ठीक नहीं, एजेंट ने नहीं बताया कि उनकी पगार से महीने में 3,000 रुपए काटे जाएंगे जीवन खर्च, डॉर्मेट्री और खाने पीने के लिए। ये सब जब उन्हें पता चलता है तो वे भाग जाते हैं, छुप कर काम करते हैं, ये जानते हुए कि जब इमिग्रेशन को पता चलेगा तो उन्हें रोक कर डिपोर्ट किया जाएगा। श्रमिक संघ प्रतिनिधि इस सोच के भी खिलाफ हैं कि विदेशी कर्मचारी मॉरिशस के कर्मचारियों की तुलना में सस्ते हैं या

0: उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाती है। उनके अनुसार कार्यस्थल पर विदेशी और मॉरिशस के कर्मचारियों के समान मौलिक अधिकार होते हैं। उनका कहना है कि असंतुलन या असमानता मुख्य रूप से कुछ भर्ती प्रक्रियाओं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के कारण पैदा होता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसी अवैध स्थिति को बढ़ावा देते हैं, कदम नहीं उठाते और बदले में इन्हीं अवैध कर्मचारियों को काम देते हैं, पगार भी देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विदेशी कर्मचारी मॉरिशनों की नौकरियां छीन रहे हैं। फैजल अली बिगन का कहना है कि कई पद अब भी खाली पड़े हैं, जबकि मॉरिशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अन्य कैरियर विकल्पों की ओर अधिक रुझान रखते हैं। जो काम ये विदेशी कर्मचारी कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे नहीं करेंगे। कपड़ा, होटल, कृषि, बस परिवहन क्षेत्र, ड्राइवर आदि का काम, जिस काम को मॉरिशन ठुकरा रहे हैं, ये विदेशी कर्मचारी वही काम करने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि 30 वर्षों से अधिक के अपने ट्रेड यूनियन अनुभव में उन्होंने कभी भी ऐसे किसी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं देखी जिसने अवैध स्थिति में रह रहे श्रमिकों को काम पर रखा है, जबकि कानून में इसके लिए स्पष्ट दंड का प्रावधान है।
1: सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। शैली नियरबन, यशना मिश्रा।
0: जब कोई आपात स्थिति हो, कोई दुर्घटना या हार्ट अटैक, तो 114 हॉटलाइन कायम है। हर इलाके में 2 एम्बुलेंस हैं। हम इस सेवा को रात को भी जारी रखने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर रात को एक ही एम्बुलेंस काम करता है। कुछ एम्बुलेंस पुराने हो गए हैं और खराब भी हो सकती हैं। इसी कारण कुछ समय तक मरीजों को लाने और छोड़ने के लिए समस्याएं हो रही थी। बहुत जल्द समस्या समाप्त हो जाएगी। जब रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट खुला, तब कई एम्बुलेंस मिले जिससे फ्लीट बढ़ी है। अब बजट में निर्धारित रकम की सहायता से हम सेवाओं को भी और बेहतर कर पाएंगे।
1: अधिकारियों का ये भी मानना है कि अस्पतालों में मेडिकल दस्तावेजों का खो जाना या उनकी गलत फाइलिंग एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इसके पीछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग के कर्मचारियों की कमी के कारण पाए जाते हैं और समाधान के तौर पर मंत्रालय ई हेल्थ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के साथ की जाएगी। इस सिस्टम के जरिए देश के सभी सार्वजनिक अस्पतालों में रिकॉर्ड्स एक ही नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
0: ऐसी समस्या जो सालों से बनी रही। कई मॉरिशन जब अस्पताल आते हैं तो वे अपने आइडेंटिटी कार्ड साथ नहीं लाते और ऐसे नाम बोलते हैं जो उनकी आईडी में नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी कभी वे एक दूसरे व्यक्ति का नाम भी ले लेते हैं, इसीलिए कभी कभी एक ही नाम पर 2 फाइल्स भी होते हैं। फाइल में आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है वो जरूरी है। हमारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और रिकॉर्ड्स अफसर की भी कमी है। इसका भी समाधान निकल जाएगा। ई हेल्थ प्रणाली से भी बहुत कुछ सुलझ जाएगा और ये एक ऐसी प्रणाली है जो देश के 5 अस्पतालों में कायम होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा।
1: दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई और सितंबर महीनों के बीच एल नीनो के तेज होने की आशंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में गर्मी की भीषण लहर, सूखे तो कहीं भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी इससे अछूता

0: नहीं है। वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। आमतौर पर एलनीनियो का असर 8 से 12 महीनों तक रहता है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ये नई संस्था उन मुख्य सुझावों में से एक है जो ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशने के वास्ते स्थापित कमेटी ने दिए हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगा। मंत्रिमंडल ने इस पूर्णतः स्वायत्त विशेष देखभाल और शिक्षा केंद्र की तत्काल स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता घुरा ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार इस संस्थागत कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। पेश है ये रिपोर्ट यशना मिश्रा के साथ।
1: À peu près 10% des cas rapportés à mon bureau concernent des enfants qui ont des troubles.
2: मेरे दफ्तर में दर्ज 10% मामलों का संबंध उन बच्चों से है जिनके बर्ताव में समस्या है। हिंसा, मौखिक या शारीरिक हिंसा, धमकी, भावनात्मक या मानसिक परेशानी, ये वे बच्चे हैं जो उन परिवारों से आते हैं जहां आर्थिक समस्या है, विघटन है, हिंसा है, तनाव है। भावनात्मक मार्गदर्शन का अभाव या तनाव इन बच्चों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड संस्था बहुत जरूरी है जहां इन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
1: कॉम्पोर्टमेंट डिफिसिल एट नेसेसेयर अफिन डू ऑफरी अन एनकैड्रमेंट स्पेशलाइजे एट अन एनवायरनमेंट सिक्योरिजे।
0: घरेलू हिंसा के पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करना और साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का प्रमुख मकसद है जिस पर पिछले मंगलवार से राष्ट्रसभा में बहसें चल रही हैं। ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। इसके लिए इसमें हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें आर्थिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। पेश है ये रिपोर्ट अंजलि सिरतन और यशना मिश्रा के साथ।
2: मॉरिशस में घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी ढांचे में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल इस समय राष्ट्रसभा में परीक्षण के स्तर पर है। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। सबसे बड़ा परिवर्तन घरेलू हिंसा की परिभाषा में किया गया है। अब तक ये मुख्य रूप से शारीरिक हिंसा तक सीमित थी, लेकिन अब इसे और व्यापक बनाया गया है। इसका संबंध मात्र महिलाओं से नहीं बल्कि पुरुषों से भी है। अब मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक हिंसा के साथ साथ घर के अंदर नियंत्रण, डराने धमकाने, सामाजिक रूप से अलग रखने तथा आर्थिक बाधाएं उत्पन्न करने जैसे व्यवहारों को भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। विधेयक में उन बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो ऐसे हिंसक माहौल में रहते हैं। भले ही वे सीधे तौर पर शारीरिक हिंसा के शिकार न हो, लेकिन लगातार हिंसक वातावरण में रहने के उनके अनुभव को अब पारिवारिक परिस्थितियों में अधिक महत्व दिया जाएगा। विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू घरेलू हिंसा करने वालों के पुनर्वास से जुड़ा है। मनोवैज्ञानिक संजना गोविंद के अनुसार पुनर्वास की प्रक्रिया से अपराधी को अपनी हिंसक प्रवृत्ति के पीछे छिपी समस्याओं का सामना करने और उन्हें समझने में मदद मिलेगी। यदि व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सामना करने का मौका मिले तो शायद वो इससे उभर पाए। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।
3: vraiment comprendre c'est quoi le problème, l'encadrement que la personne a besoin, ça reste très très important.
2: उन्होंने ये भी कहा कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपचार दोबारा हिंसा की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसकी सफलता सामाजिक सहयोग और अपराधी की खुद को बदलने की इच्छा पर भी निर्भर है।
3: Souvent, l'auteur de violence, c'est une personne qui n'a pas vraiment contrôle sur ses émotions.
2: हिंसा करने वाला आमतौर पर वो होता है जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है, जिया है, जिसका खुद की भावनाओं पर वश नहीं होता, जो खुद के बर्ताव को काबू में नहीं रख पाता, जो बचपन से ही शांत या उचित तरीके से खुद की भावनाओं को दूसरों के सामने नहीं रख पाता, मादक

0: द्रव्य या शराब आदि भी कारण हो सकते हैं। सामाजिक सहायता और पेशेवरों की मदद से ज्यादा व्यक्ति को खुद को बदलने की चाह होनी चाहिए।
1: Soutien social ou le soutien des professionnels, ce qui reste le plus important, c'est le willpower de la personne.
0: Domestic abuse bill पर बहस अगले मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फिर से शुरू होगी।
2: व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को आजकल एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है जिसमें यूजर नेम रिजर्व करने के लिए कहा जा रहा है। 29 जून को इस मैसेजिंग ऐप ने दुनिया भर में अपनी 30 बिलियन यूजर्स के लिए ये नया फीचर लागू करने की घोषणा की। जल्द ही बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए संपर्क करना मुमकिन होगा, जबकि अभी ऐसा करना ज़रूरी है। अमेरिका की इस कंपनी के अनुसार इस कदम के पीछे मकसद है उन लोगों की प्राइवेसी बेहतर करना जिन्हें किसी ग्रुप चैट में शामिल होने का आमंत्रण मिलता है या जो कोई नया कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। हालांकि इस बड़े अपडेट को अपने सबसे बड़े मार्केट में एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सरकार ने व्हाट्सएप से इस फीचर को रोकने के लिए कहा है क्योंकि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामले बढ़ने का खतरा है। प्रणव बिहारी, यशना मिश्रा।
0: मॉरिशस में घरेलू हिंसा से गणेशा ने बुधवार से ही अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है। रुकने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। उसके लिए इसके कई लाभ हैं।
3: Tu remplaces mon cher, mon numéro de téléphone avec un étranger. Je ne peux pas gagner mon numéro de téléphone. Je peux gagner un numéro de username. Aussi, je peux dire que pour une raison professionnelle et ou cher ou username, il est beaucoup plus facile à retenir un nom qu'un numéro de téléphone.
0: अभी के लिए इस अपडेट को लेकर कम ही जानकारियां दी गई हैं, लेकिन भारतीय सरकार इसे अलग नजरिए से देख रही है। उसे शक है कि इस कदम से साइबर अपराध के खतरे और बढ़ जाएंगे। यदि भारत पीछे हटा तो मेटा को लगेगा भारी झटका, क्योंकि मात्र भारत में ही व्हाट्सएप के 850 मिलियन यूजर्स हैं। नॉलेज 7 कंपनी के निदेशक और इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट अविनाश मितु बताते हैं, कोई भी किसी भी बॉलीवुड अभिनेता या फिर मशहूर नेता या मंत्री का नाम डाल सकता है। जब किसी को मैसेज मिलेगा तो उसे लगेगा कि असल में वही व्यक्ति मैसेज कर रहा है। मेटा के लिए जांच करना असंभव होगा। शायद इसके लिए लोगों को ज्यादा शिक्षित करना ही जरूरी है। शायद समय आ गया है मॉरिशस में लोगों को ज्यादा जागरूक करने का। यहाँ की आबादी ऐसी नहीं जिसने आजीवन टेक्नोलॉजी को जिया है। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, बच्चों को भी जागरूक करना उतना ही जरूरी है। इस बीच कई मॉरिशनों ने अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है, लेकिन आईसीटी मंत्रालय की ओर से इस पर अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं मिली है।
2: कौंदेमास में कल एक हादसा पेश आया। 24 साल की एक महिला उमेश्वरी एंटनी की मृत्यु कार्बन मोनोक्साइड इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई है। उसके पति ने उसे बाथरूम में बेहोश पाया और उसे फ्लैग के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे वेंटिलेटर आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। जांच से ये पता चला है कि कार्बन मोनोक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण ये हादसा पेश आया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयातोला अली खामिनेई के शव को आज तेहरान भर के रास्तों पर ले जाया जाएगा, जिससे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मयत में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन इन सब के बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनेई की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

आखिर में चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम से आ रहे एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़े बादलों का असर आज दिन के दौरान से पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद

दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सैनल प्लाटू पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं और कल से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकेगी। आज सुबह 6:46 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:43 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। अधिकारियों के अनुसार समाधान के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम और ई हेल्थ की तरफ जरूरी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन ने इस फैसले का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान में वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मैयत में उनके बेटे और उत्तराधिकारी की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 4C रॉयल रोडोकुले में 81 साल की 81 years old श्रीमती बाला रामदू। श्रीमती बाला रामदू पैदाइशी नाम इराना, जो फीफी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे रॉयल रोड बोबासें के अली एनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 3 PM। बेचू रोड बोनाकय में 62 साल की 62 years old श्रीमती दाना लक्ष्मी प्रताप पैदाशी नाम बिगादू, जो मून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पति श्री किशोर कुमार प्रताप के मकान बेचू रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। शुमेला गौ मौदाल बेमी 27 साल की 27 years old के दिवेश गौरिया जो गो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी माँ श्रीमती रूपवंती गौरिया के मकान शुमेला गौ मौदालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 2 PM। थोबी श्रोत्रियोले में 83 साल की 83 years old श्रीमती धनमावती गोबिन पैदाशी नाम भवानी, जो धर्मावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे श्री नीरज गोबिन के मकान थोबिश्रो थयोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थयोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 4:30 PM। ला क्लीमेंस रिविया जो एम्पॉमे 82 साल की 82 years old श्रीमती जसोदा पोचू पैदाशी नाम

अगुंदुआ जो ज्ञानती नाम से जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की दो बजे इनके बेटे श्री दानी पोचू के मकान लकली माउस कृपया जो आप उसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लाफोर्ज स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री तातेज बहादुर पदारत जो मानन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान लाफोर्ज स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 PM। बोग स्ट्रीट विलमेकोचे मिलिते में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री राजकुमार जगन जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे इनकी बेटी श्रीमती विद्या जुरावन के मकान बोग स्ट्रीट विलमेकोचे मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1:30 PM। सिमेटिया रोड प्लान मानियो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड श्री वितीश बुधन जो निश्ले नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे इनकी माँ श्रीमती संध्या राबूजी के मकान सिमेचिया रोड प्लान मानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4:30 PM। स्कूल लेन पेटी जूली में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री ईश्वर लाल जगीसर जो पिंगो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनिता जगेसर के मकान स्कूल लेन पेटी जूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। इंदिरा गांधी रोड पेटी राफे में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड श्री शिव कुमार बानिया जो अश्विन नाम से ज़्यादा जानी जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान इंदिरा गांधी रोड पिछे आफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पिछे आफे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। फिलाओ लेन ग्रांड पॉइंट पीमा में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रावती शंकर पिताश्री नाम रामलोगन जो प्रभावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री विनोद शंकर के मकान फिलाओ लेन गौन पोतो पीमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोतो बीश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जबरदस्त मैच चल रहा है इसी समय मेक्सिको के अज़्तेका स्टेडियम में, इंग्लैंड और मेक्सिको के बीच। अभी मैच समाप्त होने में कुछ मिनट बाकी हैं। हो सकता है बुलेटिन के अंत तक मैच समाप्त भी हो जाए। इंग्लैंड की टीम 3-2 से आगे है, इस पर ज्यादा जानकारी आपको देंगे थोड़ी देर बाद। उधर अर्लिंग अलोन ने ब्राजील को घर भेजा। ला सेलेसाओ वर्ल्ड कप 2026 से आउट, 2-1 से नॉर्वे की जीत। इट वॉज नॉट फ्रॉम नॉर्वे, ये है नॉर्वे। अर्लिंग अलोन का डबल, ब्राजील का गोल पेनाल्टी पर नेमार ने स्कोर किया। हर तरह से नॉर्वे ब्राजील से बेहतर टीम थी। उसके गोलकीपर नाइलॉन का लाजवाब परफॉर्मेंस, पेनाल्टी भी रोका, कई बार टीम को बचाया। वर्ल्ड कप में नॉर्वे की सबसे कीमती जीत, पहली बार के लिए नॉर्वे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। 5 बार वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील को वापस स्कूल भेजना होगा सीखने के लिए कि इन दिनों फुटबॉल कैसे खेलते हैं। नॉर्वे का मुकाबला किससे होगा अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फर्स्ट हाफ के 6 मिनट के अंतराल में 3 गोल, ये इंग्लैंड और मेक्सिको वाला मैच है। सबसे पहले बेलिंगम का डबल, फिर मेक्सिको के लिए क्विनोनेस का गोल। खराब मौसम के कारण मैच सुबह 5 बजे शुरू हुआ, मतलब 1 घंटा बाद। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड ने कई बार मेक्सिको को रोका। सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही इंग्लैंड के डिफेंडर क्वांशा को रेड कार्ड दिखाया गया। 10 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड के लिए हैरिकेन का गोल पेनाल्टी पर, स्कोर 3-1। फिर इसी हैरिकेन के फाउल पर मेक्सिको के लिए पेनाल्टी, स्कोर किया राउल यिमेनेज ने। यहां से इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी डिफेंड करने लगे। अज़्तेका स्टेडियम का माहौल गर्म होता रहा। 10 खिलाड़ियों के साथ सहना पड़ा मेक्सिको के अनगिनत प्रयास, यहां तक कि कप्तान हैरिकेन को अभी से कुछ मिनट पहले निकाला गया। एडेड टाइम 11 मिनट, देखेंगे अभी क्या होगा। आज के मैच रात के 11 बजे पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, फिर कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बेल्जियम, कल ही रात 8 बजे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, और कल मिडनाइट किक ऑफ रात्रि के 12 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला।

कोलंबिया से होगा। बुधवार को आराम का दिन, फिर गुरुवार को क्वार्टर फाइनल शुरू। यूएसए का फुलाकिन बालोगन आज खेल पाएगा, उसके रेड कार्ड को ओवरटर्न कर दिया गया है। बोस्निया के खिलाफ उसे रेड कार्ड दिया गया था, ऐसे में वो आज का मैच नहीं खेलता, पर फीफा के ने रेड कार्ड से सस्पेंशन को वापस ले लिया है। फैसले के तुरंत बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा को थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा। इस फैसले से बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो की गहरी मित्रता के कारण तो नहीं है। बेल्जियम इस फैसले से नाराज है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बालोगन यूएसए का टॉप स्कोरर है। उसका मैदान में होना यूएसए के लिए बहुत फायदेमंद होगा, मेजर बूस्ट, जबकि बेल्जियम के लिए खतरा। रेफरी विसल बजा के फैसला लेता है, यूएसए में ट्रंप बजा के फैसले बदलते हैं फुटबॉल में। फ्रांस न्यूज, मैनचेस्टर यूनाइटेड का टारगेट बन गया है चेल्सी का मिडफील्डर आंद्रे सांटोस। इधर इंटर मिलान का फुलबैक डेंजल डेम्फ्राइज रियल मैड्रिड में आ रहा है। न्यूकासल यूनाइटेड ने होफेनहाइम के आइवरी कोस्ट के इंटरनेशनल खिलाड़ी बाजुमाना को साइन किया, बाजुमाना टूरे को साइन किया 43 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। और लियांड्रो ट्रोसा आर्सेनल से बेसिक्टास में जा रहा है। टेनिस, नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, साथ में एक और रिकॉर्ड अपने नाम, विंबलडन में सबसे ज्यादा मेंस सिंगल जीत। ये रिकॉर्ड पहले रोजर फेडरर का था, जोकोविच ने रोमन साफ्यूलिन को हराया। कुछ अन्य नतीजे, पेगुला ने जोविच को हराया, फिर मुचोवा की भी जीत हुई। साबालेंका की हार, ओसाका ने उसे 6-2, 6-7 से हराया। यानिक सिनर 3-1 से मुचुजुकी को हरा पाया। कोको गोफ की जीत हुई, ओगर आलियासी में, और स्ट्रॉफ की भी जीत हुई। आज के मैच पाउलिनी, ईला, डिमित्रोव, फेरी, लेहेका, वेरेव, डेमिनो, कोबोली, कीज, नोस्कोवा, फ्रिट्स, बुब्लिच। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के ब्रिटिश ग्रैंड प्री में शार्ल लेक्लेयर की जीत हुई फेरारी पर। मर्सिडीज में जॉर्ज रसेल उसके पीछे आया और पोडियम पूरा किया लुइस हैमिल्टन ने। लीडर एंटोनेली 9वें पोजीशन पे आया, पर उसको डिमोट कर दिया गया 16वें स्थान पर। एंटोनेली अब रसेल से केवल 25 अंक आगे हैं। क्रिकेट, वुमेन T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। साइकिलिंग, टूर डे फ्रांस के सेकंड स्टेज दूसरे चरण में इसाक डेल टोरो की जीत हुई, और अभी ये बाकी है। तो खेल समाचारों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद आपको फाइनल रिजल्ट देंगे मेक्सिको और इंग्लैंड वाला मैच जो अस्टेका स्टेडियम में खेला जा रहा है। प्रमुख खबर फिर से बता दें, अर्लिंग हालैंड का डबल और ब्राजील वर्ल्ड कप से आउट। कल रात से फुटबॉल देख रहे हैं, सुबह तक फुटबॉल देख रहे हैं, चाय पीकर, कॉफी पीकर अभी मैच जारी है। ये है वर्ल्ड कप का असली नशा, वर्ल्ड कप का असली जादू जो बरकरार है।

0: आइए सुनिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ। ऑजी और इजी डोरोज के आसपास के इलाके MPI ऑजी CWA ऑजी इजी डोरोज विलाज के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 7 जुलाई 2026 सुबह के 8:45 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और साथ में सूरीनाम और मोसलम गोबिन सूरीनाम के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 8 जुलाई 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 kHz. This is Radio Marches. Radio Marches.

0: 7:14 हुए हैं श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ सुबह का नजराना। आप लोगों के नाम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आज सोमवार है 6 जुलाई 2026। जी हाँ, जब सुबह रोशनी लेकर आती है तो जिंदगी धीरे से कहती है अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, और कुछ सुबहें आवाज़ नहीं करती, बस दिल के अंदर एक नई हिम्मत छोड़ जाती है। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है स्पेशली आप लोगों के नाम हम करते हैं, तो सबसे पहले चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर जुम्मन जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दुनिया में कोई हंस के मरा और कोई रो के मरा, परंतु जीवन उसी का सफल हुआ जो कुछ बन के मरा।

7:22 हुए हैं दोस्तों जी। हाँ, खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम और ऐसे ऐसे गाने हम चला रहे हैं जो कि दिल को छू जाने वाले हैं। और यहाँ पर गाने के साथ साथ जानकारियाँ भी हम आपको देंगे। शमशाद बेगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना। और शमशाद बेगम जी बॉलीवुड की सबसे अलग और पहचान वाली आवाज़ों में से एक थी। उनकी आवाज़ में एक खास मिठास, ताजगी और देसी अंदाज था जो 1940 और 1950 के दौर में हर तरफ मशहूर हुआ। उन्होंने उस ज़माने में प्लेबैक सिंगिंग को एक नई पहचान दी और कई ऐसे गाने हैं जो मशहूर हुए। कभी यार कभी पार जो आपने सुना भी, मेरे पिया गए रंगून, लेके पहला पहला प्यार, सैया दिल में आना रे, ऐसे गाने बहुत ही हिट हुए और आज भी सुनने को हम पसंद करते हैं। और 2013 में उन्हें भारत सरकार के पद्मभूषण ने सम्मानित किया था और उनका देहांत अप्रैल 2013 को हुआ। लेकिन उनकी आवाज़ आज भी पुराने गीतों के जरिए अमर है। एक ऐसी आवाज़ और हम सुनने जा रहे हैं, तलत महमूद साहब की आवाज़, जहाँ फिल्म का नाम है कारवां।

सुबह के 7:27 हुए हैं दोस्तों, तलत महमूद साहब की आवाज़ में। बस ये गाना जो है दिल को सुकून देता है, और यहाँ पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेडियो सुर्खियाँ। साथ दीजिए, आप अभी सुन रहे हैं सुबह का नसराना प्रोग्राम 8 बजे भोजपुरी समाचार। समाचारों के बाद आपकी राशि और हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ आप सुन पाएंगे 8:50 पर। 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद नीतूषा के साथ आप सुनेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम, और इसके बाद 10 बजे संक्षिप्त समाचार भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुनेंगे उसके बाद, और 11 बजे भूलिएगा नहीं संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे सैयदा सुबाई के साथ शाम फरोजन प्रोग्राम उर्दू प्रोग्राम। दिन के 12 बजे मिसेस दरमिया प्रस्तुत करेगी मराठी प्रोग्राम, और 1 बजे से 1:45 तक जी हाँ आरएससी द्वारा तमिल प्रोग्राम और रंगारंग प्रोग्राम रत्ना के साथ आप सुन पाएंगे। 2 बजे चाइनीज़ प्रोग्राम होंग होंग के साथ, और 2:30 बजे रत्ना प्रस्तुत करेगी आपकी पसंद कार्यक्रम। 3 बजे जी हाँ 4 बजे तक आप सुन पाएंगे आपका मनपसंद प्रोग्राम गीतों का कार्यक्रम, और 4 बजे प्रकाश कार्यक्रम 4:15 तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र प्रस्तुत करेगा रत्ना के साथ। शाम के 5:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6 बजे तक, और 6 बजे से 6:30 बजे आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद जिनकी प्रस्तुति में चाइनीज़ प्रोग्राम, 7 बजे युवारासन के साथ तमिल प्रोग्राम, और 7:30 बजे तेलुगु प्रोग्राम वंदना प्रस्तुत करेगी स्वरला वेदिका, और 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम नितिन बापू के साथ मराठी प्रोग्राम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम रोशनी प्रस्तुत करेगी 8:10 पर सैयदा सुबाई द्वारा, 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम

फिलिश शब और भोजपुरी तर का प्रोग्राम किरण जानकी प्रस्तुत करेगी 9 से 11 बजे तक और रात के 11 बजे से 12 बजे तक गिनिशा प्रस्तुत करेगी सुनहरे पल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट।

7:40 हुए हैं श्रोताओ, अभी जो बच्चे हैं ना वो लोग तैयार हो रहे हैं स्कूल पर जाने के लिए, लेकिन कभी कभी अभी तो एग्ज़ाम भी है और वो तैयार हो रहे हैं, कभी कभी उन्हें हम एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित देना चाहिए। इस पर एक छोटी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक छोटा सा संगीत विद्यालय था, वहाँ कई बच्चे गाना सीखने आते थे। हर बच्चा अलग था, कोई बहुत शरारती, कोई चुप, कोई जल्दी सीखने वाला, तो कोई बार बार गलती करने वाला। एक दिन नई टीचर आई, उन्होंने देखा कि लोग बच्चों को सिर्फ उनकी आंखों और हुनर से पहचानते हैं। जो बच्चा तेज था सब उसकी तारीफ करते, जो धीरे सीखता उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन टीचर ने कुछ अलग किया, उन्होंने हर बच्चे को ध्यान से देखना शुरू किया। जो बच्चा हमेशा खिड़की के बाहर देखता था वो असल में प्रकृति को महसूस करता था। जो बच्चा ताल भूल जाता था उसके दिल में बहुत दर्द छुपा था। जो सबसे ज्यादा शरारत करता था वो सिर्फ थोड़ा प्यार चाहता था। धीरे धीरे टीचर ने बच्चों को बदलना नहीं समझना शुरू किया, और जब बच्चों को ये एहसास हुआ कोई उन्हें सच में समझ रहा है, तो उन्हें अंदर का डर खत्म होने लगा। कुछ महीनों बाद वही बच्चे हैं जो कमज़ोर कहलाते थे सबसे खूबसूरत सुर गाने लगे। तब जो टीचर हैं मुस्कुरा कर बोली, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें दांत से नहीं सही नज़र और प्यार से आकार दिया जाता है।

7:51 हुए हैं। श्रोताओं, हर इंसान के दिल में एक छुपी हुई तमन्ना होती है कि कोई उसे बिना शर्त समझे, बिना वजह अपनाए और उसके हर दर्द को बिना कहे महसूस कर ले। और जब ऐसा प्यार मिलता है तो जिंदगी की आधी थकान खुद ही उतर जाती है। चलिए खुचन खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम करते हैं और भूलिए गाने ही 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घर ही मिला ले जा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेश बा भोजपुरी के समाचार। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 के पहलका तिमाही में विदेशी कामगार लोग देने से उन लोग के देश में भेजल जाए होला पैसा में गिरावट आयल बाटे। एक बार इसमें ये रकम 2.889 बिलियन से कमती होके 2.786 बिलियन रुपया होल बा। ये आंकड़ा जून महीना के आखिर में जारी करल गल है, जब विदेशी कामगार लोग के काम की स्थिति के लेके देश में सार्वजनिक बहस छिड़ल बा। मार्च महीना के आखिर में सरकार मॉरिशस में 64,165 गो विदेशी कामगार लोग के रिकॉर्ड दर्ज कर ले रहल। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बीगन के अनुसार जे उ सब लोग के भी सूची में शामिल करल जाए जे अपन काम छोड़ के भी हियाँ दस्तावेज के बिना रहत हो जा, तो इस संख्या 70,000 के करीब पहुँच सकी। सरकारी अस्पताल में मरीज लोग के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ल चुनौती अक्सर सामने आवता। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इस सब समस्या के समाधान खातिर जरूरी कदम उठावल जाता। वो बतैलन कि डायलिसिस के मरीज लोग के पहले भी घर से अस्पताल ले निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलत रहल, बाकी अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करके 24 घंटा ई सेवा उपलब्ध करावे के। अधिकारी लोग ई भी माने लंजा कि अस्पताल में मेडिकल दस्तावेज गंवा जाला और ओकर गलत फाइलिंग एगो बहुत बड़ा चुनौती है। डॉक्टर रिसोल के अनुसार एकर पाछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग में कर्मचारी लोग के कमी के कारण है और समाधान के तौर पर ही मंत्रालय ई हेल्थ देने कदम बढ़ावता। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के संगे होए, ई सिस्टम के जरिए देश के सब सार्वजनिक अस्पताल में रिकॉर्ड्स के एक एक नेटवर्क उपलब्ध रही। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्या हुलाले का लोग खातिर उपयुक्त सुविधा कमती होए के देख के एगो विशेष सुविधा केंद्र बनावल जाए। ई एगो नवा संस्था मुख्य रूप से उस सुझाव में शामिल रहल जे ऐसा लेका लोग के देखभाल से जुड़ल चुनौती के समाधान तलाशे खातिर स्थापित करल गल कमिटी देले रहल। कल्याण मंत्रालय ई संबंध में एगो नवा विधेयक प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल ई संपूर्ण स्वायत्त केंद्र की तत्काल स्थापना खातिर मंजूरी देले बाटे। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनिता घुरा भी ई फैसला के अत्यंत महत्वपूर्ण बतैले हवन और एकर स्वागत करले हवन। घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग के बेहतर सुरक्षा करे के और एक संगे ही हिंसा करे होला लोग के खिलाफ उचित कार्यवाही करे के ई डोमेस्टिक अब्यूज बिल के प्रमुख मकसद है, जेकर परी गल मंगर के राष्ट्रसभा में बहस चलल। ई विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष के आर मजबूत करी। एकर खातिर ई हिंसा के परिभाषा के दायरा बढ़ावल जाता और एकर में आर्थिक भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसन रूप के भी शामिल करल जाता है। कर संगे ही ई विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसन प्रावधान करल जाता है, जेकर से पीड़ित लोग और लोग के लयिका लोग के बेहतर सुरक्षा मिली और हिंसा करे होला लोग के अपन हरकत खातिर जवाबदेह हो की पड़ी। दूसरा देश की खबर में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्लाह अली खामिनी के शव के आज तेहरान के रास्ता भर में चलावल जाए, जेकर से जनता उनकर अंतिम दर्शन कर सकी। उनकर मैयत में दुनिया के कई देश के राष्ट्र सरकारी नेता लोग तथा वरिष्ठ अधिकारी लोग शामिल होवत हो जाए। कल ईरान में आम छुट्टी के घोषणा करल गल रहल, बकीर ई सब के बीच उनकर बेटा और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनी के गैर मौजूदगी सबके ध्यान आकर्षित कर ले बाटे। ते रहल भोजपुरी की समाचार, तो ध्यान खातिर धन्यवाद।
2: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

मरनी की खबर सुना जा कश्मीर रोड गुडलैंड्स में, कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 78 बरिस के 70 जीवितों के बीबी सफीदा सलामत, मिसेस बीबी सफीदा सलामत इंतकाल कर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 4:00 उनका जनाजा आज सांझ के 4:00 उनकर घरे उनकर बहिन रुवेदा शेख हुसैन के मकान कश्मीर रोड गुडलैंड से उठा के दफनाए खातिर बेलमो गुडलैंड के कब्रस्तान ले जाल जाए। एनएचडीसी न्यू अल्फांस में, एनएचडीसी न्यू अल्फांस में 65 बरिस के 67 के श्रीमती देवंती आनंद पैदाशी नाम बुधन जे संगीता नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे एनएचडी से न्यू अल्फांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाल जाए। शांति निकेतन रोदामोगी में, शांति निकेतन रोदामोगी में 75 बरिस के 67 के जनाब आबू स्वाले दाहू जे स्वाले नाम से जस्ती जाल जात रलन उनकर इंतकाल हो गल बाटे। उनकर जनाजा आज फजर की 10:00 उनकर जनाजा आज फजर की 10:00 उनकर बेटी वशीरा दाऊ के मकान शांति निकेतन रोड आमोगी से उठा के दफनाए खातिर आमोगी के कब्रस्तान ले जाल जाए। नंबर 67 पूस स्ट्रीट थोंगबॉमी 77 बरिस के 67 के श्री हरिदेव लक्ष्मीन जे गुरु नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के तीन बजे उनकर बेटा श्री मनहर कुमार लक्ष्मीन के मकान नंबर 67 पूस स्ट्रीट थोंगबो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड ओकुले में 81 बरिस के 91 के श्रीमती बाला रामदू पैदाशी नाम एराना जे फीफी नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के तीन बजे रॉयल रोड बुबासें के एलियंसन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फेनिक्स की श्मशान भूमि ले जाल जाए। बेचू रोड बोनाकर में 62 बरिस के 72 के श्रीमती धनालक्ष्मी प्रताप पैदाशी नामो बिगादू जे मून नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर पति श्री किशोर कुमार प्रताप के घरे बेचू रोड बोना कैसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए कि श्मशान भूमि ले जाल जाए। शुमेला गौ मोदालबेमी 27 बरिस के 67 के श्री दिवेश गौरिया जे खो नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर माँ श्रीमती रूपवंती गौरिया के घरे शुमेला गौ मौदालबिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियों की श्मशान भूमि ले जाल जाए। तोबिश्रो थ्रियोले में 83 बरिस के 93 के श्रीमती धनमावती गोविंद पैदाशी नाम भवानी जे धर्मावती नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के बारह बज के आधा उनकर बेटा श्री नीरज गोविंद के खरे थोबी शोध थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यमिनिस थ्रियोले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। लाकलीमांस रिविया जो पौमी 82 बरिस के 92

के श्रीमती जसुदा पोचू, श्रीमती जसुदा पोचू पैदाशी नाम अगुंदुआ जे ज्ञानती नाम से जस्ती जान जाता रलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे, उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा शिदानी पोचू के करे। लाखली मौन सुबह जो पौसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। लाफोर स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस में 68 बरिस के 68 के श्रीता तेज बहादुर पदारत, श्रीता तेज बहादुर पदारत जे मानन नाम से जस्ती जान जाता रलन वो गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर घर लाफोर स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मार्गजानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए। बोग स्ट्रीट विलमे कौचे मिलितिया में 60 बरिस की 60 के श्री राजकुमार जगन, श्री राजकुमार जगन जे गौसो नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उनकर बेटी श्रीमती विद्या जुड़ावन के घरे बोग स्ट्रीट विल में कौचे मिलते सुठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए कि श्मशान भूमि ले जाल जाए। सीमेचिया रोड प्लान मानियों में 36 बरिस के 83 के श्री वितीश बुधन, श्री वितीश बुधन जो निश्लय नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज सांझ के 4 बज के आधा, उनकर माटी आज सांझ के 4 बज के आधा उनकर माँ श्रीमती संध्या राबू जी के घरे सीमेचिया रोड प्लेनमानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए कि श्मशान भूमि ले जाल जाए। स्कूल लेन पेटी जुली में 71 बरिस के 71 के श्रीश्वर लाल जगीसर जे पिंगो नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती अनीता जगेसर के घरे स्कूल लेन पेचिजुली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावंचियो के श्मशान भूमि ले जाल जाए। इंदिरा गांधी रोड पेचिराफे में 45 बरिस के 45 के श्री शिव कुमार बानिया जे अश्विन नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे, उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर घरे इंदिरा गांधी रोड पेचे ऑफिस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास काल के श्मशान भूमि ले चाल जाए। फिलाओलेन ग्रांड पॉइंट उपीमा में 77 बरिस के 77 के श्रीमती चंद्रावती शंकर, श्रीमती चंद्रावती शंकर पैदाशी नाम रामलोगन जे प्रभावती नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री विनोद शंकर के घरे फिलाओलेन गौन पैथोविमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पैथोविश के श्मशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डोबल इस सब परिवार लोग के संगे हमने की संवेदना है।

0: सुबह के 8:25 हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और बहुत धन्यवाद है। बस उम्मीद है कि ये जो गाने अभी आपने सुना, चंद खूबसूरत गाने, आपको पसंद आया। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मिश एरीज मेष राशि।
0: मेष राशि, इस हफ्ते आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। आप नए काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे और कई जगह पर सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में हल्का सा तनाव आ सकता है, और धन के मामले में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: ये सप्ताह आपके लिए सुकून और प्रगति लेकर आएगा, और लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, और प्रेम के पैसे के मामले में ये हफ्ता मजबूत रहेगा। इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिल सकते हैं। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: इस हफ्ते आपका मन का कई बातों में उलझा रह सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में अपने आंखों शांत रखें और अनावश्यक बहस से दूर रहें। प्रेम संबंधों में पुरानी यादें दोबारा ताज़ा हो सकती हैं, और धन के मामले में रिस्क लेने से बचना होगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी खास साबित हो सकता है। आपका आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी लोगों को प्रभावित करेगी। घर और काम दोनों जगह आपको सम्मान मिल सकता है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। जीवन साथी का साथ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। पैसे के मामले में धन लाभ के योग मजबूत हैं। करियर में प्रमोशन या नए काम का संकेत मिल सकता है। लकी नंबर है 1, लकी कलर है चांदनी रंग।
1: लेओ सिंह राशि,
0: इस हफ्ते आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें लोग आपकी तारीफ करेंगे। किसी बड़े व्यक्ति या अधिकारी का सपोर्ट मिल सकता है। प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन और करियर दोनों में प्रगति होगी, लेकिन घमंड से दूर रहना जरूरी है। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: कन्या राशि, आप हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहेंगे, लेकिन इसी वजह से थकान महसूस कर सकती है। इस हफ्ते हेल्थ और स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें। काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़गी हो सकती है। धैर्य और संवेदनशीलता से काम लें। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा है, और स्टूडेंट को मेहनत का फल मिलेगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है नीला रंग।

0: लिब्रा तुला राशि।
1: तुला राशि, इस हफ्ते पार्टनरशिप और टीम वर्क आपको सफलता दिलाएंगे। आप नए लोगों से मिलेंगे जो आपके फ्यूचर में मददगार साबित होंगे। प्रेम जीवन में रोमांस और अट्रैक्शन बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। धन के नए स्रोत बन सकते हैं। लकी नंबर है 6। लकी कलर है आसमानी रंग।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: ये हफ्ता आपको अपने गुस्से और जज्बातों को कंट्रोल करना सिखाएगा। किसी काम को लेकर मन में अशांति हो सकती है। धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसले आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। प्रेम संबंधों में इमोशनल गहराई बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा शक करना रिश्तों में दूरी ला सकता है। पैसे के मामले में पुरानी प्लानिंग से फ़ायदा मिल सकता है। लकी नंबर है 4। लकी कलर है गुलाबी रंग।
0: सजिटेरियस धनु राशि,
1: ये हफ्ता उत्साह और नए अवसरों से भरा रहेगा। आप किसी यात्रा या नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। करियर में नए लोगों से कांटेक्ट बढ़ेगा जो फ्यूचर में फायदेमंद होगा। प्रेम संबंधों में खुशी और हल्का फुल्का रोमांस बना रहेगा। सिंगल लोगों को अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। धन में वृद्धि के योग हैं, लेकिन सेविंग्स पर भी ध्यान देना होगा। लकी नंबर है 3। लकी कलर है पीला रंग।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: मकर राशि आपका डिसिप्लिन और मेहनत इस हफ्ते आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। व्यापार में धीरे धीरे प्रगति होगी। प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जीवन साथी का सपोर्ट आपको हर मुश्किल से निकलने में मदद करेगा। फाइनेंशियल मामले में अनावश्यक खर्च से बचना होगा और प्रॉपर्टी संबंधी मामले में सफलता मिल सकती है। लकी नंबर है 8। लकी कलर है पीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आपके क्रिएटिव आइडियाज लोगों को प्रभावित करेंगे। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और सोशल नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। नए कॉन्टैक्ट फ्यूचर के लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रेम जीवन में इमोशनल बैलेंस जरूर होगा। किसी अपने की बात दिल को छू सकती है। पैसों के मामले में धीरे धीरे मजबूत होगी और स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए समय अच्छा है। लकी नंबर है 4। लकी कलर है नीला रंग।
0: Pisces, मीन राशि,
1: इस हफ्ते आपका मन अध्यात्मिकता और शांति की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। आपको किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है। काम में धीरे धीरे प्रगति होगी। प्रेम संबंधों में सच्चाई और संवेदनशीलता रिश्तों को और गहरा बनाएगी। फाइनेंशियल मामले में संभल कर चलना होगा और स्वास्थ्य के बारे में आपको थकान और नींद का ध्यान रखना पड़ेगा। लकी नंबर है 2। लकी कलर है हरा रंग।
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मोशन्स।
1: आज 8:33 हुए है। जी हाँ, आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। चलिए, खूबसूरत गाने का सिलसिला हम जारी रखते हैं। किशोरदा की आवाज़ में अगला गाना सुनते हैं।

यहाँ ये मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही खूबसूरत है, और आप लोग सुन रहे हैं ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, और यहाँ पर 80s के गाने आपने एंजॉय किया. जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे सितम गर का ये खूबसूरत गाना, और यहाँ पर डिस्को डांसर सुरेश वाडकर की आवाज़ में गोरों की नकालों की ये दुनिया है दिलवालों की. जी हाँ, हम सब दिलवाले हैं, और यही गीत के साथ हम बढ़ेंगे आगे, और थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। गल सप्ताह हमने बात करत रिजा हमने के देश में जोन ताबिस्मों के व्यवस्था रहल उ कैसे रहल, कौन कौन ओहदा, कौन कौन लोग सम्हारत रहलन सा, और एकर में आप में से जितना कोई ताबिस्मों में काम कर ले हो वजह आप खुद के भी उ व्यवस्था में सिचुए कर ले हुई बा, पहले हुई बा। आज हमने देखब जा कि हमने के पूर्वज लोग के शुरुआती समय इ देश में कैसन रहल। अंग्रेजी शासन के शुरू शुरू के बरिस में ईख के खेती में बढ़ोतरी हुई लगल रहल। 1825 से हमने के चीनी उद्योग बढ़े लगल, जब कस्टम्स टैरिफ के हटा देवल गल और मॉरिशस के चीनी के दाम ओकर कैरिबियन कॉन्टिनेंट के कम्पिटिटर्स लोग के बराबर हो गल। 1818 में मॉरिशस कॉलोनी में 287 शुगर एस्टेट रहल। चीनी हमनी के देश के इकोनॉमी के कुलन हा। 1833 में 85% एक्सपोर्ट के पैदावार चीनी के ही रहल। मॉरिशस 100 बरिस से जस्ती तक 85 से 90% तक चीनी एक्सपोर्ट करलक और अंग्रेज शासन के सबसे प्रोडक्टिव कॉलोनी बन गल। 1855 से 1859 के बीच सब ब्रिटिश कॉलोनी से अंग्रेज जोन 20% चीनी एक्सपोर्ट करे उमें 7% खाली मॉरिशस से रहल। शुगर एस्टेट की ताकत मजदूर रलन सा। 1810 में हियाँ के जोन आबादी बा उ 78 यानी 67,000 रहल और इमें 63 यानी 67 मिल

गुलाम लोग रहलन सा। अब और मजदूर के जरूरत रहल, लेकिन 1835 में जब गुलामी के उन्मूलन हो गल एबोलिशन, तब अंग्रेज लोग के पढ़ल एगो दूसर सिस्टम शुरू करेगी इंडेंचर या अग्रीमेंट पर मजदूर आने के और उन लोग के पगार देवे के। अग्रीमेंट शब्द से ही गिरमिटिया शब्द बनल। मॉरिशस में 97.5% मजदूर हिंदुस्तान से आने गए, 2.5% चाइना, कमोरो, मडागास्कर, मोजाम्बिक और येमेन से। इमें 2600 ऐसन ईस्ट अफ्रीकन रलनसा जे लोग के गुलामी से आज़ाद हो रलनसा, लेकिन उन लोग के जहाज पर रॉयल नेवी कब्जा करके उन लोग के इंडेंचर सिस्टम में लगा देलनसा। 1834 और 1910 के बीच मॉरिशस में लगभग आधा मिलियन शर्तबंद मजदूर के आने गए। शर्तबंद मजदूर लोग मॉरिशस के इमिग्रेशन डेपो पर पहुँच लनसा, जिके आज हमने आप्रवासी घाट नाम से जानी लासा। ई इमिग्रेशन डेपो पर उ लोग के रहला जरूरी रहल, एकर से आगे कि उ लोग एगो नवा जिंदगी शुरू करियन सा शक्कर कोठी में। यहाँ 2 दिन बीतेला पर उ लोग के इमिग्रेशन टिकट देवल जात रहल। ई उ लोग के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पैव रहल और फिर उ लोग शक्कर कोठी में गैलन सा रहे, जेके ढाका बोलल जात रहल। शर्तबंद मजदूर लोग देश के इकोनॉमी और लैंड स्ट्रीम में बहुत योगदान देलन जा। 1846 से शर्तबंद मजदूर लोग चीनी उद्योग के 96% रिप्रेजेंट करत रहलन सा। जहाज में कितने जना एपिडेमी महामारी के शिकार हो जात रहलन सा, तो उ लोग दूसर कोई के बीमार नहीं करियन जा, इ खातिर क्वारंटाइन स्टेशन के प्रबंध करल गल, जैसे कि आज दुनिया भर में स्थापित हो गल बा। और इ पर गल सप्ताह हमने बात कर ले रही सा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन लो, धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

आज बजकर 27 मिनट हुए हैं श्रोताओं, चलिए ये भोजपुरी गीत आप लोगों के नाम, और इसी गीत के साथ हम भरेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की। और भूलिएगा नहीं, समाचारों के बाद आज की चर्चा आप सुन पाएंगे नीतू शाह की प्रस्तुति में। और हमारी तरफ से हम इजाज़त लेते हैं, उषा को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन।

0: 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे आदिति, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर यह रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए हैं, जब विदेशी कामगारों के काम करने की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कामगारों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बिगन के अनुमान का अनुमान है कि अगर उन लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाए जो अपना काम छोड़ने के बाद बिना दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 के करीब पहुँच सकती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती रही है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों का ये भी मानना है कि अस्पतालों में मेडिकल दस्तावेज़ों का खो जाना या उनके गलत फाइलिंग एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर रिसोल के अनुसार इसके पीछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग में कर्मचारियों की कमी का कारण है। समाधान के तौर पर मंत्रालय ई हेल्थ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के साथ की जाएगी। दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई और सितंबर महीनों के बीच एल नीनो के तेज होने का शंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में भीषण गर्मी की लहर, सूखे तो कहीं पर भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी इसे अछूता नहीं है। वक्वा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। आमतौर पर एल नीनो का असर 8 से 12 महीनों तक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी के शव को आज तेहरान भर में रास्तों पर ले जाया जाएगा, जिसे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मैयत में दुनिया कि कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन सबके बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोश्तबा अली खामिनी की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।
3: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
4: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC Radio.

0: आज की चर्चा।
1: सबको के नमस्ते प्रणाम। जितना जना हमने के देखा था वन टीवी पर और रेडियो पर सुना था वह आप सबको के स्वागत बातें आज की चर्चा कार्यक्रम में। काहे कि आज लैंडी के दिन है तो फिर से हमने बात करब जा खेती बाड़ी के बारे में और हनी के मेहमान रहेलन फागेदाने से। तो सबको के हमने याद दिला दे ला जा गत हफ्ता जन बातें हमने ऐसन न सब्जी फल के बारे में बतियात रही जा जन क्रॉप्स डिजापियरिंग क्रॉप्स बातें कर बारे में ढेर चीज रहल मुरुंग रहल हमने बतैली जा बुकला जौता कौपुवाद याद बा।

0: आज हो हमने यही पर चर्चा करब जा सकत हा। टेबल पर हबी देखबा जा ढेर चीज रखल गल बातें, हबी देखबा कौन ची बातें पता, वो सब बातें कहाँ बोल लौकता ढेर चीज बा। तो हमने बारी बारी से तोहरा दिखाब जा ये सब कौन ची है। और ये सब बतियाए खातिर हमने के मेहमान हवर फिरों से फागे दाने से श्रीमान संजय शंभू तचला इनकर हमने स्वागत करी ला जा। भाई शंभू तोहर प्रणाम बाते, स्वागत बाते आज की चर्चा कार्यक्रम में। कैसे हुआ?
1: सब ठीक
0: बुझाता, सब ठीक वे बातें काहे कि आज इतना चीज अनले हवा टेबल पर रखले हवा। तो दर्शकगण और श्रोतागण जे कुछ हो पूछे के बाद आज हो हमने डिसअपीयरिंग क्रॉप्स पर बतियात है जा। कितना जना हमने के फोन कर ले रहलन, बोलत रहन आगे वो सब है रहल हव रहल, अब नए बातें। अब उ लोग लगे बात जे कोई लोग खोजत हवन सा तो उ लोग संगे संख्या सा संपर्क उसक रखे। तो हमने के लाइन खुलल बातें 402-84-5-402-80-85 सकबा जा। ई सब जितना डिसअपीयरिंग क्रॉप्स के बारे में हमने बतियात है जा एक पर तनी सुन खुलासा दे। तो भाई शंभू हैजा परी लता पर ढेर चीज दिखत है, कहाँ बोल बाते हौजा परी मुरुंग बाते हैजा एगो पत्ता बाते, सुरन हमनी देखली सुरन ने बाते पर उकर पत्ता बाते और ढेर चीज बा। और आज यही पर तनी हमनी बतियाब जा कि ये सब जो डिसअपीयरिंग क्रॉप्स बाते आगे रहल ढेर जना नहीं जाने लन, अब कल्ली कल्ली उ लोग जानत होवन जा। पर जे एकर बारे में हमनी नहीं बतियाब सा तो हमने के आवत जिनासो कुछ नहीं जानियन सा, नहीं जानियन सा ये सब कौन चीज है, जे खाए के है भिगे के है कौन चीज करे के है। तो सबसे आगे कौन चीज पर बतियाई बा?
1: पहले तो ये एगो अच्छा बात बोला कि आज एक पर बातचीत नहीं हुई तो गते गते भुला जाब सा, नया पीढ़ी जोन बा नहीं जानी ये सब का है, तब गते गते भुला जाब सा, तब कोई रुपाई नहीं करी
0: जी।
1: और शुरू में पूछला कैसे बा हाल चाल था मुझे सब ठीक, तो ऐसे ने संचित जब खाए बा तंदुरुस्त रहा सब कुछ मंगल रही तो चाहे ला ना। तो चलो शुरुआत कैला सा एगो एगो ऐसा एगो लेगिम से जो सकबा अनेक प्रकार से रसोई घर में प्रयोग करे वह पुआकागे।
0: पुआकागे
1: अच्छा पुआकागे, तो पुआकागे है एगो पुआकागे के चार कोते में कांदे बाते और देखबा आज देखबा जा यहाँ पर ही गन्ना पंख कलिते
0: जी
1: डोंटली कहते पंख कहते से निकलल बाते हाँ। तो यह पुआकागे तो अब पुआकागे है ला जो हमारे हाथ में बा अभी थोड़ा जिया बा
0: हाँ।
1: आज हम छुआ तो देखा टूट जाए
0: हाँ। तो ई जेबा पारे हो गल बा
1: नहीं ई खाए खातिन तनी सुन ओकर लास्ट दे पासे हो गल बाते।
0: अच्छा
1: तो एक में देखबा आज कैमरा में शायद ठीक से नहीं दिखी लेकिन अंदर एक में अभी देखा बिया हो लगल बा आई में बिया हो लगल बा ऐसे तो ई थोड़ा हाँ पकवान खातिर एकदम उत्तम बातें।
0: अच्छा पकवान पर हमनी बात में आप जा है जो पुआकागे हुआ बातें ई लोकली जो हमनी के सब्जी है कि बाहर से मंगा रहल एक बारे में तनी सुन बताओ एकर इतिहास।
1: लोकल में गनाला
0: जी
1: ई हमनी के पूर्वज लोग आने वाला बहुत बहुत साल आगे ई हमने पता नहीं बा कहाँ से आना
0: भारत लेकिन सकेला
1: दूसर ओर से लेकिन पूर्वज लोग आने बा क्योंकि मॉरिशस ते कोई टापू रहा लोकल में तो खाली किसी बेला जंगल रहा ना। जब पहले यहाँ पर ऐलन जा हमने के जब पूर्वज लोग जब सब लेके आलन से ना गति गति तो है ओकर ओकर देखा तो ओकर लालियान और लत्ती है लालियान है तो ओकर पत्ता देखा तो कैसे रहेला और जब फुलाए के रहेला तो यहाँ देखबा एगो छोटा सुन चीज निकला था तो ये बाद में फुलाए से यहाँ पर ही फुलाए तो जब फुला जाए तब हौला
0: गति गति
1: गति गति है एगो छोटा सुन एगो निकली तो जब तान रहेला तो देखा कैसे फ्लेक्सिबल रहेला देखो
0: जी
1: ए हाउ हाउ वाला जब छुली तब पट से न टूट गया
0: जी
1: हाइला फ्लेक्सिबल रहेला और आज बीच में तुरबू कर तब भीतरे में बिया नहीं बाते
0: जी नहीं बात
1: या बिया बहुत छोटा बाते
0: जी
1: लेकिन फ्लेक्सिबल बाते तो ये पकाए खाते रेडी होकर बाते
0: रेडी होकर रेडी होकर तो है जो बिया हुआ बाते बुझा था मजा चिपवा नियन बाते तेरे सुन चिपवा है जो पका हुआ जला
1: हाँ एक रो पका जला सकल ला तैयार एक रो से भोजन तैयार करे
0: जी।
1: अब एक से अनेक प्रकार की तैयारी होला कोई कोई

0: एक काट काट के लंबा या
1: जरकुतानिया
0: उगाए में डाल देवेला
1: अच्छा।
0: कोई कोई मसाला के तकारी में डाल देवेला कोई कोई हम तो जानते नहीं रहनी एक दिन गए है एक दुकान में तो हम से बोल बिरयानी में भी डाल देवे
1: अच्छा
0: हाँ झरकू ने डाला बिरयानी में
1: हाँ, उसने काट के
0: फाड़ के हाँ लंबा लंबा लंबा फाड़ के तान बना लेके डाल देवे
1: और हमने जब एक हला माटी के मूल कार्यक्रम करे रही जा एक पर एक हमने बचारी लाली जा चाचा लगे गए रही सा हमारे देखे में जुबई रहल हौजा पर ऊ प्रौताशुमा कर ले दम्बोरे दम्बोरे डाल गल बातें का ही लगती है ना
0: हाँ। ओ अच्छा बात बोला क्योंकि अगर अब आगे रुपाई करब सर हाँ। चाचा वहाँ जाने के कैसे बोला ना
1: हाँ।
0: तो सबसे पहला तो दिखा तो दिखा ईगो लालियान हो तो क्योंकि ईगो लत्ती है लालियान लाने की लत्ती तो लत्ती तो फिले होला तो चल ले जला अब के आज रोपब सा नीचे में माटी में आज रोपनी सा और गन्ना सब चीज खुला बा फ्लैट बाते हाँ फ्लैट बाते तो लत्ती तो नीचे फिले हुई तो चल ले जाए जहाँ मिली चढ़ ले जाए चल ले जाए तब हवा में फुलाए हवा में फड़े हाई एक प्रकार से लत्ती चल ले जाए
1: जी
0: दूसरे प्रकार से क्योंकि कोई लत्ती है एक खुशी ला चढ़ेगी
1: जी
0: तो आज को ने स्त्रिक्चिया मिली एगो लकड़ी खम्बा सकबा डाले या तोहर लगे बागाज बा या कोनो मेटालिक
1: हाँ,
0: कोनो मेटालिक बाते कोनो प्रकार एगो पौधावे बाते तोहर लगे एगो एगो छोटा सुन वृक्ष बाते तो आज ओकर पास में आज एक रोबा तो ये गते गते चढ़ के लाहौल ले जा चल रहा है
1: आज का जब वर्टिकल फार्मिंग वो होता
0: हाँ तो लाहौल चढ़ के लाहौल ले चल रहा है जब लाहौल पहुँच जाए तब या तो घुमा फिरा के कोई तुफ कहते कर दे या फिर आज ओके और जगह रहे जाए के कैसे वो रस्सी कुछ डाल दे ले कुछ तो ओकर में से फिली हो ले जाए कैसे अब मेटालिक में आज मेटालिक पर के चढ़ा दे लो तो मेटालिक की तना एगो वही एगो गन्ने को बागाज के जगह बागाज वे कहते हो जाए तो में देखा ऐसे हाई हमने के हाई जन बोले जा सके पॉड एक पका के वैसे लटकल रहे ऐसे तो तू खाली तुर के खाया
1: जी
0: तो ई रहा पका के अब एक एगो चीज और ई पका के जोन है तो एक फामी हमने बोला सा लेगी मिनोज
1: जी
0: तो लेगो एक फामी के नाम है टेक्निक है धीरे का मैंने बचाप सा लेकिन चूंकि एगो ऐसा एगो परिवार से आवेला तो उ माटी के फेचिल करेला
1: अच्छा
0: हाँ तो एक संगे ओकर जड़ लगे कैसे बोला सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रहेला आज उखाड़ब से ओकर ओकर जड़ और आज तोहर माटी दे फेचिल कोम्पोस्ट दल दे रहा तो सकेला थोड़ा एगो गोल गोल चीज हसीनवा के में जुड़ल लौकी थोड़ा होज रहेला तक में बैक्टेरिया देला उ लगे जो एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है तो ओके लेके हिंच के माटी में लामोनिया कहते बना देला तो खाई के मिलेला एगो दूसर चीज हाई जो लती लौका था एक ऐसे सकब सा ग्रीन मैन्यूरिंग भी करे ग्रीन मैन्यूरिंग यानी कि कैसे ढेर पत्ता सब बात होता ना तो कैसे काट के निकाल दे तब काट काट के रख दे तैसा कैसा माटी में संगे मिला दे
1: जी तो आज हमने ये पुआकागे के बारे में हमने बतिया था जा और माटी के मूल कार्यक्रम में भी दिखाई ली जा तो कल्ले कल्ले जितना हमने बाजार वो में देख ली सा ढेर जगह नहीं बाटे पर बाजार में देख ली सा कि एकर यानी कि खरीदारी कई जना करत हो वन सा जे जाने लन आगे के जो हमने के दादा दादी लोग पर कल्ले कल्ले तोहर देखे में लोग एकर बारे में जानत हो वन सा अब
0: ऐसे बातचीत करते हैं तो हमने के जन आवाज जन जन आगे की पीढ़ी के हुआ
1: सा
0: लोग पहचाने लन सा जाने लन सा हमू एक एगो एगो एक लाते रोज में एगो एगो सुपेरेट जैसे बोला सा छोटा सा सुपेर महर्षि में गई तो वहाँ पर ही पकागे रहल तो एक गो में आके छः पाकि किन के जाता तो वही तो बोला था बता हाई हम खुशी ला खाए के घर हम नहीं पकाए ला सा वो जाने ला
1: हाँ, जे जाने ला तो
0: हाई एगो चीज हम अनुभव कर ले हाई कि जे जाने ला तो क्योंकि हाई ढेर कोई एक रुपाई नहीं करेला
1: जी
0: तो जो मंडी में जो आवे ला पकागे तो तनी सुन आवे ला तो जे जाने ला तो खरीद के चल जाला
1: चल जाला
0: तो एक दूसरा जना आज मंडी में आए
1: उन्हें
0: जाने नहीं जाने लौकी बेचा जाला हाली से बेचा जाला
1: तो तुम्हारे देखे में कौन चीज चाहे ला करे कि हमने एक जो डिजापियरिंग

0: क्रॉप्स है तब फागे दन इसे कुछ होता जब मैं ये सब जन क्रॉप्स हुआ बाती है जन पकाए हुआ बाती एक और बढ़ावा मिली
1: तो वही कारण था साथ यहाँ पर यहाँ सही मंच पर तो हमने तो उत्साहित करता है ऐसा जितना कोई हमने के नागरिक लोग बा कि और किसान लोग बा तो हमने के जो ये डिसअपीयरिंग क्रॉप्स बा
0: जी
1: तो चाहला रूप के क्योंकि अनेक फायदा बातें एक तो आमदनी ही मिली क्योंकि आदमी लोग ढूंढे ला नहीं मिलेगा दूसरा तो ये लोग

0: में से तान रहल
1: जी
0: फ्लेक्सिबल रहल तब बाद में तो जिया होगल है तब छोड़ दे बाओगे ऐसे हो जाए
1: अच्छा
0: हाँ तब जब ऐसे सूख के कड़िया हो जाए तब सकबा तब तोड़ के तब सकबा में से
1: सूखल बिया बाते
0: हाँ जे कानी कैमरा में लौक था हाँ दिखाता बिया बा यहाँ पर ही हिला
1: जी तो ये जो बिया वा बाते ये पारे हो गल बाते ट्रांसप्लांटेशन खातिर
0: नहीं रुपए खातिर
1: रुपए खातिर हाँ रुपए खातिर जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: आसानी से जमे लगे अभी अभी तो लेकिन अभी हमने सर्दी के मौसम में ऐसा
1: हाँ ये जो पकारे हुआ बात है ये सर्दी के मौसम में मिलेला के गर्मी के मौसम में कब रोपाई होला कब फसल होला
0: नॉर्मल में ज़्यादा तक ये गर्मी के मौसम में मिलेला
1: जी
0: लेकिन अभी तक जैसे बोला सा क्लाइमेट चेंज हाँ थोड़ा बिगड़ गल अभी तक कभी कभार ठंडा नहीं ला कभी कभार गर्म नहीं ला तो अभी तक दिखा जाओ अभी हमने लिवे में ऐसा लेकिन हम तोड़ के आने
1: जी
0: मिला था लेकिन एक रोपे के रही बीज के बोए के रही तो सर्दी जैसे निकला था कैसे अगस्त महीना में निकला था ऐसा तब वो के सकबर डाल दे माटी में तब पौधा निकली
1: जी
0: तब चढ़े दिया
1: तो जे कोई एक बिया खोजे के मन बातें खोजा था वो कहाँ जाए
0: तो हम बोलती देखा हमने के फागे के सकी मिले फागे लगे कैसे नोफ में हमने ला मापू मोडेल्फा में तो एक थोड़ा सुन रुपाई के लासा था बीज खाद निकाले खाते सके अंजा मापू मोडेल फॉर्म संगे संपर्क रखे या हमारे संगे इन्फॉर्मेशन यूनिट फागे में सैपिया जस्ती आसान बातें तो वहाँ कॉल करके आज बोलियन सब नाम फोन नंबर छोड़ दिए सकब बंदोबस्त करी
1: तो चला जे फागे के नंबर खोजा था जो मेन ऑफिस बाती सैंपिया में वो 433-43-78 चला एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमने आगे बढ़ाब जा और दिखाब जा कौन कौन हमने के जो क्रॉप्स बाते सब्जी फल बाते जो गते गते लुप्त होते जात बाते और उजे हबी नहीं जानब सा तो सच्चे के चल जाए हमने के कुछ नहीं मिली एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद
2: आज

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकगण और श्रोताओं। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम देखत हुआ सुनत हुआ आज सच्चे के बुझाता जंगल में मंगल बातें। आज अभी हमने पुआकागे के बारे में बताई ली जा और उजे कुछ पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बातें का सौदे का तो वह सैक और सब बोला था वन एक जना हवन चलो उनका सुनी ला जा। हेलो
2: नीतू शाह जी और मेहमान जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार गुरु
2: जी, जैसे आप ले पुआकारे के बात कर रहे हो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो थे ना वो ज्वेलर का काम करते थे, फिर भी हमारे घर में एक बड़ा सा गार्डन था
1: जी।
2: तो वो रोपते थे सब कुछ मानियो बता बगैर सब कुछ, और उसमें एक बड़ा दो बड़ा सा बासन जैसे बोलते थे
1: जी।
2: इसमें फिश था, फिर भी उसी पानी से वो आरोसे करते थे
1: जी।
2: तो मैं ये कहती हूँ कि लेपुआ कारे जब आप रोपेंगे ना तो जैसे एक लालियान जैसे है वो ऊपर होते हैं और वो बहुत अच्छे हैं, अभी भी मिलते हैं। एक बार मैं गई थी बेरोज बाजार में, वहाँ भी मिलते थे ये लेपुआ कारे बहुत अच्छे हैं। और तो रेजे भी थे, क्या बताऊँ, सब कुछ थे उस गार्डन में।
1: अच्छा, आप कह रहे सब कुछ था उस जमाने में, आज भी है आपके जो गार्डन है आपके बगीचे में, आज भी कौन कौन सी चीजें आपने रोपी किए हैं और ये माने कि कुछ बात और लगी तो हर जोड़े में।
2: लेकिन ये बात 30 साल के बाद बोल रही थी, अभी तो सभी घर बन गई है, पांच घर बन गए हैं, फिर भी लीची की गाछ है और मेरे भाइयों भी कुछ कुछ करते हैं अभी तक।
1: ये अच्छी बात है, ये हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप प्रभा जी है ना
2: जी
1: तो बस ऐसे ही आप अपने गार्डन में, चाहे आपके पास ज्यादा मिट्टी ना हो, आजकल तो आप जो कंटेनर गार्डनिंग में भी आप कर सकते हैं, एक छोटे से बो में जैसे कहते हैं आप कुछ ना कुछ रुपाई कर सकते हैं। और अभी आप पुआकागे की बात कर रहे हैं और भी चीजें हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी,
2: थैंक यू,
1: शुभ दिन आपको। तो हम इंतजार करें कि कब शुभ दिन तो हो रो। चल जे कुछ शेयर करे की बातें तो हो रो हमने की लाइन खुलल बातें का सौदे का तो वह कहते वैसे। भाई संजय, अभी प्रभा जी बोला था वन उनका सौदे में गार्डन में पुआकागे रहल ढेर चीज बा, आज तक ढेर चीज नहीं बातें पर डेगो लेक्सी के गौची बातें जब हमने के याद बातें वाजा लगे पड़ोसी लगर लगे पुमसाको रहल हमने के आंगन में कुंची कुंची नहीं रहल काहोसुल शरीफा कदबफ
3: बादामिये
1: बाप कुछ कुछ नहीं रहल, बचपन के याद आगल।
3: एक खजाना रहल है,
1: सच्चे के खजाना रहल। हमने यही तो प्रॉब्लम बातें हमने नए सकब सा डेवलपमेंट के रोके, डेवलपमेंट चाहे ला हो।

0: के कोसुक्षो तो होते बातें हमने की आबादी पोपिलासो तो बढ़ले जात बातें अब चाहेला घर बनाए के मैं समझ चाहेला एगो छोटा सा जगह खोजे के जे मटियो ने बात जैसे हमने आजकल कंटेनर गार्डनिंग की बात करे था सब छत पर आजकल रुपाय सब भूला मैंने की चाहेला कुछ न कुछ करे के मटिया चाहेला लौके के हमने के आंगन में
1: एगो चीज हम बोलती हम पता नहीं है ऐसे बुझाला कि जैसे मनुष्य की गति और ट्रेन दे वी जो बातें जाता हाँ उतना बदल कर बातें और हमके बुझाला हम ये एगो एगो फैशन कहते हो गनला बाहर की जो चीज है ओकर ओकर
0: खाए
1: के ता आज देख बा ता ट्रेन और उसने ये बोला था कि अपनी पोम खाता जोरस खाता पोम जोरस में आज देख बा कितना आज इंटरनेशनली रिपोर्टेड है कितना पेस्टिसाइड दुकान में रहेला ग्रेप्स में रेजा कितना पेस्टिसाइड रहेला ये सबसे हमने कहा दूर रह के और हम तब बोलती जैसे पा देखा आज थोड़ा मन कहला फल खाए के तो ये सब फल ना खा छोड़ दो ये फल छोड़ के हमने के जो यहाँ के देसी के जो फल सीजनल बातें जो देखे बहुत ऐसा चीज पेयरिंग क्रॉप वो खा हजार गुना जैसी अच्छा बात है
0: जी तो अभी हमारे हाथ में एक और गो लट्टी बात है देखत हैं तो कोपागे गरम नहीं पुआकागे तो नहीं है ये कौन जी है
1: ये है जौंतक
0: यही है जौंतक
1: यही है जौंतक अब ओकर लट्टी हाथ में हमरो हाथ में लेला देखा था पुआकागे के लट्टी और जौंतक के लट्टी में ढेर अंतर नहीं बातें
0: अच्छा लट्टी के तनी सुन हमने छोड़ब सा कहे कि एक और जना हो अच्छा। और लोग से हमने बता ले जा हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्ते
2: नमस्ते नीतू शाह जी और मेहमान को भी नमस्ते
0: नमस्ते भाई बोला
2: हम एगो धरला कैसे पुरानिया लोग प्रांतल कैसे हमने के दादी नानी लोग
0: जी
2: जोन जोन लुप्त हो गल बा हम बोले चाहते नहीं कहानी कहूं पर मिलत हुई कि नहीं जैसे रहल रेंगनी पम नामू जे के बोला तनी जा अच्छी है ब्रेड मॉर्टन कैसे बोलन जैसा बनान कारे और बन प्याज खाई थे कुछ अफेयर हो गल बात अभी स्मॉल हो गई करता था रहल ग्रेनाजिन जैसे बोल जा सकता कारी पकाई के
1: कारी ग्रेनाजिन कारी
2: हाँ अरे वो रहल सरंची भाजी और एक सोहा भाजी सरंची बोले जा और सोहा भाजी
1: सोहा
2: हाँ गाटो पीमा में और कैसे बोल जाता कोहरा के लेकर में ओके संगे पकावल जाता है हाँ तो ये सब हमने के हमार लागे रखल ये सब हमने के दादी ताई कैसे बहु एगो बहन जी बोला कैसे घर उ टूटल बनान रहता तनी सुर अथी हो गल बात जो जो सकीला जब लाते कैसे हमार लागे तो सुसु भाजी बा कोहरा भाजी बा मुरुम भाजी बा कैसे पपाई बा जाबुका बा बांगासाई मोदारिन ये सब बा और बनान कारे के गाँच बा अभी ले प्लांट ले हैं वो अभी तनी सुन उधर ला अथी हो गल हल तो अभी फिन से ओके फिन से बनाओ ना के ओकर रोपाई कर ले हैं अभी
1: बढ़िया बढ़िया
2: अथी रहल बोले के और प्रोग्राम बड़ा बढ़िया बा
1: धन्यवाद
2: आप लोग के धन्यवाद और शुभ दिन
0: शुभ दिन तोहरो भाइयो और उजान के अच्छा लगे था कि भैया लगे कुंची कुंची हमने अभी सुनत है जब मांगा साई की बात करत हो अंजा
1: हम रेंगी सब... जाने लगा हो
0: रेंगी
1: हाँ बुल्ला ना भी रेंगी
0: नहीं
1: रेंगी एगो टमाटर हो लेकिन बड़ा छोटा छोटा होला कैसे हबी हमने बोला था चेरी टमाटर
0: हाँ
1: ता नया दौर में चेरी टमाटर
0: हाँ
1: हमने के पुराना दौर में रहल रेंगी
0: रेंगी
1: ओकर टेस्ट थोड़ा अलग रहल
0: हाँ
1: लेकिन ओके घर पे प्रयोग करल जाता हल रेंगी
0: रेंगी तो चला ई नामो हमने याद रखब जब छोटा
1: हबीले हबीले लौकीला
0: जी
1: बहुत रहा होगल बा बहुत बहुत रहा होगल बा एक आग को किसान लगी सकेला हुई हबीले हुई हाँ
0: जी तो चला हबी हमने बताया था जब लट्टी बातें ई है जौंतक
1: हाँ यह जौंतक
0: जी
1: तो जौंतक के हाँ तो बोला तीन देखा लत्ती तो आज देखबा खाली लत्ती के तब तो लगभग वही लौकेला दोनों दोनों वही पत्ता की तरह
0: जी
1: ये कारण ये कहा है क्योंकि जितना लगी मिनोज बात है कैसे जरको के पत्ता था उस

0: स्नेहा के पता थोड़ा उसने रेला तन सुन अंतर रेला मैं जे जाने ला तो उसकी जीवन से करे लेकिन ऐसे नहीं तो यहाँ पर ही पकाके की तरह लंबा लंबा ऐसा फल नहीं हुआ ओकर में दिखा एगो छोटा सुन जरकू का लीते लेकिन जैसे छोटा
1: जी
0: थोड़ा प्लाट बाते कैमरा के निमन से बता देते हाई देखा यहाँ पर ही एक बेला सौ तक
1: जी
0: अभी
1: ओकर मोटाई इतना हुए रहेगा
0: इतनी बड़ा होला अच्छा इतनी बड़ा होला तो एक ही बेला जो तक अब एक अभी तक हरावा दिखा किसी बेला से भड़गल बाते
1: जी
0: भड़गल बाते तो आज एक खुलब सा
1: एक रो में भी आवा
0: हाँ एक में दिखा छोटा छोटा ग्रुपा कर लेते छोटा छोटा ग्रुपा कर लेते कम हाँ कम इधर बा अच्छा छोटा छोटा ग्रुपा कर लेते दिखा एक अन में पौध अति बातें
1: जी
0: या बातें तो एक ही पकाप सा
1: जी देखा तो हाँ जो छिलकावा बातें उकर इस्तेमाल नहीं होला
0: हाँ नहीं जब ऐसे भर जला तब छिलकावा थोड़ा जीए हो जला तब कठिनाई होला लेकिन कैसे गल हला मौस्टू की बात कर दला
1: हाँ
0: तो जब भरल नहीं रहेला ढेर तान भी रहेला
1: जी
0: तो सकबा ऐसे भी सकबा में थोड़ा जीए रहेला में जस्ती तान रही तो सकबा झिरक एके कोनो तैयारी में डाल दी
1: अच्छा इहू हमनी के पूर्वज लेके आ रहल जा
0: बिल्कुल ऐसे होश आ रहल जा हो
1: जी
0: हाँ तो देखा तो काहे के देखा एगो ऐसा जमाना में आ रहल सा और ओकर बाद भी देखल जा कि कैसे बोलन सा आमदनी आय खातिर कठिनाई रहल ना यहाँ तो आ रहल सा सोना निकाले तो कहाँ पड़ल रोज खेती सब देखे तो गुजारा कैसे कर जा और उस समय में हाई मंडी आसपास में नहीं
1: रहल
0: पर था चल के कहीं कितना जाए के
1: तो उन लोग की जो चीज अनले रहलन जा उन लोग के जो रुपाय वो सब कर ले हवन जा
0: और सेल्फ फैमिली में गना सेल्फ खजन सा सेल्फ सफिशिएंसी यानी के फैमिली में ना तो वो कहते हैं अनेक प्रकार के चीज रुपाय हो तो जी तो ई भी ओकर में एगो है ई भी एगो लत्ती है तो जैसे पकाके के बोलनी औसनी ही रही लत्ती सब डाल दे कुछ हो रही मेटालिक कुनो अति रही खंबा कुछ हो रही तो मैं चल जाए आराम से हो जाए हाँ
1: जी
0: और जब एक जब बिया निकाले के रही तो इजन बा तो सूखे लगे ला तब काला नहीं हुई तो कागे कहते काला नहीं हुई लेकिन मारों हो जाए तो जाने सूख गल बातें हाँ सब बात तब उसका में से बीज निकाल
1: अच्छा पकाके की बात करें तो वह भाई संजय तो है जो सुखल बात है पकाके वह ऐसने सब बार रखे
0: हाँ ये वो अच्छा चीज पूछ ला नहीं दूसरा तो हम बोलती आज तोहरा अभी रुपाई करके नहीं बाकी कहना अभी हम क्या ही मिला
1: जी
0: दो महीना में रुपाई करेगा अगस्त महीना में तो हम बोलती एक में छोड़ देगी तोड़ के नहीं निकाले के ये कहना ओकर नेचुरली ओकर घर बा के प्रिजर्व करे खातिर सुखल व्यवस्था में हाँ तो तोड़ के लेके अब बाहर आंगन में रखे क्योंकि पानी सब कम लगे ना वर्षा हुई तो लेके कहूँ एक सुरक्षित जगह में रख दिया
1: जी
0: अब आज तोरा मन हुई बिया निकाले के ओके प्रिजर्व करे खातिर जस्ती लंबा तो एक बोकाल में डाल के बंद कर दिया
1: निमन से
0: बंद करके रख दिया।
1: तो चले दर्शकगण श्रोतागण हमने आज जो डिसअपीयरिंग क्रॉप्स के बारे में हमने बताया था जब अभी जोंताक देख ली सर अभी पुआकागे देख ली सर और कौन चीज हौचा परी हम देखा था मुरुंग तो हर महात में मुरुंग बाते जो फूल हुए बाते और वो हजा परिमम जोली जोली जो बातों मुगुंग हम के लौकल बाते अभी बुयों के अभी सर्दी के मौसम बाते को बुयों मिल जाए तो अच्छा रहत हाँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल गरम गरम
1: गरम गरम हाँ। हुई
0: हाय हबीले मिले ला उतना ये गन्ना हाय
1: गन्ना सुपरफूड हम निके
0: सुपरफूड हम मिले ला शायद हमने के जवान में गन्ना जवान लोग में कमती जानत हुए लेकिन घर घर घर में मुरुम चनाला हो लेकिन पहले तो हर आंगन में मुरुम के एगो पेड़
1: रहल अब
0: गांची रहल अब तने लौकेला तो है हमने के मुरुम है देखा तो ओकर फूल तो पहला मुरुम के देखला सर तो जब ऐसे रहेला तान रहेला तो देखा पत्ता हरा रहेला
1: जी
0: तो कुंच कैला सा अभी भुजों के नाम लेला या सा कब सा पकाए भी भूंज के तो ऐसे तूर के तब पत्ता निकाल के पत्ता के प्रयोग कैला जा हाय तरह पत्ता के तान तान पत्ता रहला ओकर प्रयोग कैला जा अब आज छोड़ देब सब पत्ता नहीं तुरत जा ओकर जो भौस बा डाली डाली बाटे डाली के नहीं ताई करते हैं सब तब फुलाए लगी
1: ये भरती बरती बरी सब फुलाला
0: पार्टी पर पुला ला लिविया में कम थी, लिविया में कम थी पुलाई, लेकिन

0: फुला ला हाँ कैसे अभी देखा अभी
1: अभी तो फूल
0: ठंडी मौसम है सर तो फुला था तो अब जब एक मैसे जब फुला जाए तब पूछी हो कर मेरे को फर आए
1: बातों रूंग
0: देखा हमने के फर अब एक ऐसे का पकाई बा
1: हम दाल में डाला आलू में डाला हाँ,
0: सांभर में से डाल दे
1: सांभर हाँ
0: सांभर में डाल दे बा लेकिन धीरे को एक मसाला में आए जब ते को ना कोई तकारी पकाना था मसाला की तो कमें डाल दियो ना तो हाई थोड़ा जुआल बाते एक अर जब तान रह लाते आप चाहना प्रयोग करें
1: जी
0: और जब सूख जाए तब सब बस आपका में से बिया निकाल के हाँ तब बिया लेकिन मुरुम के सब बुचिया भी करे
1: अच्छा
0: हाँ बुचिया करके एक डाली तोड़ के छोटा सुन डाली छोटा सुन बॉस चीज जैसे बोला सब ओकर सब बुचिया करे या तो फिर जब सूख जाए तब में से बिया जब मिली तब डाल दे बा मुरुम के एक खासियत था बड़ा हाली हाली बढ़ेला बहुत हाली हाली तो आज तू एगो तू तू तोरा मन बा भाजी भाजी पकाए के बुयो पकाए के निसंकोच तू ले जाइया उपनकते जाए तू ले जाइया उपनकते जाए
1: हमेशा मिलते रही लाई सच्चे बात
0: हाँ बहुत हाली हाली तो लेकिन आज तुरते रहबा तो पनकते रही तुरते रहबा पनकते रही तो वो फुलाए नहीं
1: अच्छा हाँ
0: तो तोरा मन करी कर फर खाए के तो तोरा चाहला ओके फुलाई दे के तो फुलाई दे खातिर चाहे डाली के छोड़ दे के ओकर में से नहीं तुरे के
1: जी
0: पत्ता वगैरह ओकर में नहीं तुरे के तब जाके फुलाए तब जाके हो फर आए
1: और आज तो हमने देखा था ऐसा मोगिंगा के चाय बनाता हमने जानी राजा लासोते खातिर कितना अच्छा बातें हमने भूज के खाए लासा बुयों बनाए लासा ढेर चीज सब करी राजा और एकर पत्ता कितना पौष्टिक बाई में कितना न्यूट्रियों बाई में अजय हमने के लयका वो सब सुनत हो जाए तो लोग बोले ना जाए ना ये सब हम पसंद नहीं करे लासा नहीं चाहे ला मैंने कि घर के जो बड़का आदमी हो सा चाहे ला लैकवन के सिखाए के और खियाए के कहे कि ये सब एगो सुपर फूड है और आगे चलकर ये सब हमने के काम हुए आए और ये जा में लुप नहीं हो तो चल एक हमने सकेला पोते से करे के एक कर सुरक्षित हमने चाहेला रखे के तो चल और ढेर चीज बा अभी
0: और एक में बहुत मिखोए लेमा मिलेला सुपर फूड तो बात है जैसे कि जिंक बात है
1: अच्छा।
0: जैसे कि कैल्शियम बात है एक में मिलेला तो बोले ना कैल्शियम खाते हैं जा दूध
1: हाँ, पिए हाँ पिए एक एक चीज में सब कुछ मिला था
0: हाँ, में मिल जाए
1: चल हाँ। आज की चर्चा कार्यक्रम में देखा तो वह बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हाथ में एगो पत्ता बातें अब देखा तो वह सोचा तो कौन चीज के पत्ता है बोला था भाइयों ये कौन चीज के पत्ता है
0: लेकिन एक फल नहीं नहीं नहीं
1: फल नहीं बातें में खाली पत्ता बा
0: या जलीव
1: जलीव
0: हाँ और याद आज बचपन याद हुई था कैसे जलीव के आंचे आंचे हाँ कंपोट
1: कंपोट
0: आचार पर कॉफी
1: कॉफी
0: हाँ या फिर ओके काट काट के बुई करके काट काट के तब
1: अचार सब डाली के हाँ थे चीज बाद डाली के तो ये सब हमने के बहुत आगे से रहल जुलीफ
0: हाँ
1: ना और आज हो बातें और जब फूला ला जब मिले ला तो ढेर जाना जाके तुरे लंस सलाद उसब बनाए के जासो सब अभी तो शादी के सीजन
0: बाते उतना
1: उतना नहीं लौकेला
0: नहीं नहीं जुलीफ नहीं लौकेला उतना
1: ये बाहर से मंगाल गल बात है कि
0: नहीं सब बाहर हुए से हाँ
1: जी
0: लेकिन एक अनेक प्रकार के जो ऐसे वृक्ष पाते वो लिपुक फ्रांसे के लिपुक में
1: जी
0: जब कॉलोनी फ्रांसे जन ऐसा तब के आए अनल गल हल कैसे हमने के पॉम्पले मुसेस बोटानिक गार्डन जब
1: जी जी
0: तो वहाँ पर जितना ज्यादा तक जितना तरह वहाँ पर वृक्ष पौधा लोकेला तो सब हाउ जमाना से आनल गल बात
1: जी ये तो सच्ची बात है और जुलीब खाइबाई में बहुत ही अभी मुंह में पानी चला बात है लेकिन एगो श्रोता हवन उनकरा सुनी ला जा हेलो
2: नमस्ते निशा बहन
1: नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते
2: और भाई संजय को भी नमस्ते
0: नमस्ते
2: हम रिसीव कर रहे थे प्रोग्राम टेलीविजन में आज मौका मिला हम एगो किसान आई लेकिन प्लोटीला
1: अच्छा
2: आज अभी घर पर है तो टेलीविजन में दिखा था प्रोग्राम सौताक सब खेले हैं मैं आतान खाली बैठभूम पर थोड़ा बातचीत करी ला
1: जी
2: कितना लाभ दायक है हम जानी ला चिकुन दुनिया रहल हो रहल वो लाने
1: जी
2: हमरो हो गए मैं है बैठभूम था लगो दवाई की तरह ना हाँ तो सच्ची को कर लिफ्ट कर लक मजे
1: अच्छा
2: हाँ तो हम जहाँ हमर वाजने के बाद है कभी कभी बुझो मन कर लक
1: अच्छा लगल ये सच्ची बात बा

0: कर पीछे साइंस कर पीछे बा ता कैसे तू ही बोला सुपर फूड हम बोली मिक्रो एलिमेंट भरा हुआ कर में ता हिसाब मिक्रो एलिमेंट तो हर शरीर के चाहे ला दे के चाहे ला ता जब कमी रहे ला ता तू हूं अफेबली हुए ना ता जब सब सुपर फूड ले हुआ ता तंदुरुस्त तंदुरुस्ती आई
1: तो चला जितना हो सके मुरुंग के भाजी खाइया बुयो खाइया बातों मुरुंग खाइया पिया ये बहुत ही अच्छा बात है हमने के सेहत खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई
2: अच्छा
1: शुभ दिन नमस्ते तो चला और ढेर चीज लौका था हमरा हाय देखा तो वह कौन सी है
0: हाँ बोला
1: इधर कहाँ बोल
0: कहाँ बोल हाँ
1: हाँ यहाँ कहाँ बोल और हाय योला जो बाटे ये जो मीठा कहाँ बोल हाँ एगो खट्टा बाटे एकर से एगो जो छोटा छोटा रहेला वो लोग ओकर से हमने आचार सब बनावे राजा और ये मीठा कहाँ बोल हाँ
0: हाँ तो हाय जैसे बोला दू कहते कहाँ बोल हम अब हमारे हमारे दिन से दू गो कहते बाटे हमने के टापू में तो एक गोहा जो थोड़ा खट्टा रहेला
1: हाँ वे
0: हाय इला जो हम ने हाय ये मीठा रहेला
1: मीठा रहेला
0: ये मीठा रहेला तो अचार डाल बा ऐसे ही खाई बा सलाद डाल बा
1: एक ऐसे तरीके से जिसे भी मम्मी ने जाए तो अच्छा हो जाए ना तो ऐसे ने खा लिया सा ये भी बहुत विटामिन बा
0: हाँ जितना जितना फल है
1: जी
0: सब मिनरल्स रिच रहेला मिनरल्स मात्रा बदले ला
1: जी
0: लेकिन सब में मिनरल्स मिलेला सब में विटामिन्स मिला मिलेला
1: तो आज इतना जन हमने के यार बा हमने के रात बा आंगन में एगो गौची रहल इतना फरत रहल तुरबा मिलता फ्लेगी होता फिर से मिलता हमेशा मिलते रहत और वो आज तक ये सब के देखे के कबो कबो तरस जाएला सा खाए के और वो आज एकर मात्रा बातें कमती हो गल बातें कैसे
0: यू कमती हो गल बातें
1: जी
0: नहीं उतना कैसे एकर कमर्शली का रुपाई नहीं होता
1: जी जी
0: जेकर लगे बातें तब बातें आज मंडी में लौके लाता वो कैसे कैसे हमारे लगे होता ढेर बा ना लगरल बा कच्छ में तब पड़ोसी संगे बाटल लाए वगैरह वगैरह परिवार के दिया लाए तो फिर भी बचल बा
1: भाइयों की जब इस सब के बात कर रहे हुआ आगे ये सब हमने के मिलत रहल तो हमने सा खूबे खात रही सा अब कई जना देखे ला जब ई के जाए खाए एगो लेके हाँ खा ले एक पोतों जो बातें वो कमती हो गल बातें
0: जहाँ तो आज दूर के दिख बा एकर पीछे एगो दूसर कैसे बोलिए एगो दूसर रहस्य बातें
1: जी
0: जैसे कि ई सब चीज जब पहले फरे कैसे को जमालाक होता है जमालाक होता है कैसे साधारण चीज आम मुई होता है तो कौन चीज होता है परिवार जुटा रहल
1: जी
0: तो आम के को सलाद बनी पिताजी छिलके बनाए माताजी लेके ओके
1: को मैंने बत्ती बना ली में खाते रही सब
0: तब सब कोई बैठ के साथ साथ होकर आनंद ले
1: जी
0: तो हाई सब पहले खाली एगो फल नहीं रहल एगो माध्यम रहल
1: एगो बहाना रहल
0: एगो बहाना रहल परिवार के जुटाए खातिर
1: जी जी
0: तो तोहर घर के ही नहीं बाहर पड़ोसी या दूर के परिवार जब जहाँ तक बातें तो वो भी आता तब जब आए तो का सत्कार और किसी बॉस में गाजर से नहीं होता
1: है यही सब से हाँ सच्चे
0: के एक बॉन्डिंग एकर माध्यम से बॉन्डिंग होता है परिवार
1: में जी जी तो चाहे ला फिरो से हो जो खाजी सोमो बा चाहे ला फिरो से वापस आने के हवे से हमने बात कर रहा था जहाँ जो डिसअपीयरिंग क्रॉप्स सब्जी फल उस सब बातें फिरो से उन लोग के रेस्टो सकब सब बोले उन लोग के वाले न्यूट्रिशनल वो बातें और उन लोग के वाले हुए जो फल भी बातें सब्जी चाहे ला वापस आने के हाँ जो परिवार में जो जो जैसे बोली ला जाए ना एगो सिपाशो नियन हो गल बातें तो चाहे ला सब कोई के जुटाए के जैसे बोला था हुआ ये सच्ची बात है
0: एकर पर एगो चीज और बोल देला कहाँ बोल जो ना एगो वृक्ष एगो एगो पेड़ हा तो छोड़ दे बस नहीं तो बड़ा गला तो तुरे तुरे के कहाँ बोल के प्रॉब्लम हुई
1: तो गांची पर चढ़े के पड़ी
0: हाँ गांची पर चढ़े के पड़ी आजकल लड़का लोग कहाँ चढ़े ला गांची पर हाँ लोग सोफा पर चढ़े लन सजेस्ट तो हम कुछ बोलते हैं कि कहाँ बोल के जो वृक्ष बा और जो पेड़ बा सगबा जागा ना एगो 2 मीटर की ऊंचाई पर ओके ताई कर दे
1: जी हाँ कहले वो तो टूफ हो जाला
0: एकर एकर जन भाव सा फ्लेक्सिबल रहेला लंबा लंबा वाला फ्लेक्सिबल है जब 2 मीटर के ऊंचाई में से काट दे बा
1: जी
0: तो जन लाते का जन भाव सा वो कहना ललियान ललियान नहीं है लती नहीं है लेकिन लंबा लंबा ऐसे ही छत्ता की तरह
1: जी
0: छत्ता की तरह ऐसे
1: फैल जाए
0: हाँ मोड़ ले ले तब तोहरा तूरे के तक
1: आसानी हो जाए
0: आसानी से सकबा तोड़ दे
1: जी
0: सकबा जाकर बाहर में जहाँ को मेरा शालमा आए कहाँ बोल के ओकर ओकर पैदावार कर दला तो वहाँ पर ही कुछ कैलन सा किसी वो लोग 2 मीटर लगभग हैं 2 मीटर ऊंचाई पर ओके काट देवेलन सा तब लाहौर में वायवाड आइलैंड्स
1: अच्छा
0: वायवाड नाते हो जला तब ओकर

0: जन बहुत सा फैला था
1: हाँ
0: डाली जन फैला था ऐसे छत्ता की तरह तो ओकर में लेके खाली बांध देवे लंस तक तक तू जाइब त गन्ना टनेल कई त है गन्ना को लासिया में डुकल
1: जी
0: भीतरे त खाली ऐसे अपन तुरब
1: आसानी
0: से हाँ
1: ये तो सच्ची बात है। तो चल आज कितना बरिस बात हम स्टॉफ रूट देखा था गाँव बोल देखा था तो अभी हमने आगे बढ़ा जा कहे कि वक्त अब भागते जात
0: हाँ
1: बाते
0: भागता
1: और ढेर चीज बा हमने अब बात करब जा हाई जा परी यह
0: अच्छा
1: सुरन सुरन के पत्ता
0: हाई पहला ले लासा अच्छा हरा
1: हरियाल बाते
0: हरियाल बाते
1: जी
0: सुरन ता शायद दूसर रेगुलर कार्यों में हम आंदे
1: जी
0: लेकिन जेने जानत हुई ता ये सुरन के जो पौधा रहेला ये कर पत्ता है
1: जी
0: ओकर एक के गो किसी बेला थोंक रहेला एक के गो नीचे से जब जो निकले ला था
1: हाँ।
0: एक के गो रहेला तब छत्ता की तरह पत्ता रहेला ऐसे तब
1: जी
0: ऐसे रहेला तब यू बगल रही यू बगल रही
1: जी
0: तो जब ले हरियाल रही तब सुरन हमने के तैयार नहीं हो पाते
1: जी अब जब पारी हो जा
0: हाँ
1: रहा था
0: जब कैसे जाना से अब सुरन तैयार हो गल बात तो अगर पत्ता देखो अब मुरझाए लगी ऐसे हो जाए पीला हो जाए अब जानब से अब सुरन तैयार हो गल बा अब सुरन कहाँ रहेला सुरन माटी में रहेला भीतरे में हाँ एगो कौबा की तरह रहेला तब पड़ी ओकर ओतू में गत्ते से पियोसु सबसे गना सफा पिका से
1: मोटा होला कब वो इतना
0: हाँ
1: बड़ा हो जा रहा
0: खोजे के नहीं
1: हाँ।
0: तब कर ब्लेसे कर देबा तो हटा के तब फुर्सेत वगैरह फुर्सेत पिका से तब लेके ओके निकाल देगा
1: तो इस सब भी जन फलवन उस सब बातें जन अभी एक वो सुरन के बात हमने करे थे सा आलू तो हमने जानी ला सा तो सुरन एक इतिहास के बारे में तेरे सुन बताओ
0: सुरन यांबिन ता इता है भारत ही से एशिया के गनला उधर से आलबा ता ये पूर्वज लोग गनले हुई
1: जी
0: हाँ ये
1: जी
0: लोग गनले हुई
1: जी
0: ता एकर से ancestralement traditionnellement कुंच के लासा अनेक प्रकार के पकवान बाते
1: हमने तेरे सा जाने आचार हाँ
0: तरकारी बा
1: तरकारी बाटे
0: चटनी बाते इता खाए खातिन पकाए खातिन नहीं तो आचार बाते
1: आचार हाँ
0: नहीं तो कुच्चा बाते ओकर में होला तो ये हमने लोग अभी के जमाना में तरकारी कहते कम लेकिन जब शादी हल्दी में जलासा है तो हाँ
1: आचार
0: चिके के मिलेला आचार के रूप में वो उतना अपने नहीं लोग के लाओ हाँ पहले खूब जहाँ जाए हल्दी में जाते खाए जहाँ तक सुरन के आचार बाटे
1: ये कौन सीजन में जस्ती मिलेला निवे में
0: नहीं फुल ईयर राउंड मिलेला
1: जी
0: आज आज अगर रोपाई करना गर्मी के मौसम के अंत में कर रहे थे तो थोड़ा लस्सी लंबा ले ला पा रहे हो क्योंकि लिवे में उतना सर्दी के मौसम में उतना नहीं बढ़ेला
1: जी जी
0: लेकिन ईयर राउंड होला अभी के लेपक में कैसे सके सके अभी ओकर रिकॉल के समय चला लबा
1: जी अच्छा
0: जो आगे रोपाल रहा तो एक साल तो होता ना एक साल पूरा होता ओकर फसल के समय चला लबा।
1: तो चलो हमने आज इतना चीज के बारे में हमने जाना था ऐसा देखा था ऐसा हमने खाली खाए जानी ला सा अब ए लोग के बारे में हमने जाना था ऐसा कि सुरन कब पारे हो जाला जब पतवन पियर हो जाला तब चल जाएगा कि हाँ सुरन अब पारे होगा बात
0: छोटा से सकेला सुरन ऐसा छोटा रही
1: हाँ।
0: सकेला से बढ़ा हुए मिले
1: पर जब पियर हो जाला पतवन तब जान
0: हाँ,
1: जाएगा
0: तैयार हो गला और जितना तोरा कर कर कर थोंक मिले
1: हाँ।
0: जबड़
1: जी
0: जहां तक उतना बड़ा गना
1: सुरन
0: मिली पतरा रही तक छोटा
1: छोटा भी रही चलो खाए के तो मिल गए
0: हाँ
1: अच्छा अब हमने हौजा परी देखा था ऐसा ऊह अपवाद एक कर पर हमने बचा थोड़ा ली जगत हला
0: हाँ।
1: हयोग लती हुए हा
0: नहीं ये गो वृक्ष छोटा वृक्ष वाला
1: जी
0: यू परिवार से आने लेकिन मैंने जो अब देखा एक ये पौधा में देखा पत्ता बा पत्ता बाते और ऊपर में देखा तो आप फड़ बाते यहाँ देखा तो आप फूल सब लोग करता
1: जी जी
0: अब ये का सेजों बाते तो एकर कुंची एकर जन फर बाते एक के जब जब तैयार हो जाता जब भर जाला
1: जी
0: जन भर जाला देखा ये भर अलवा तो ये गुजर देला सब निकाले तो घर पे कुंच करब जा एकर फसल करब सा
1: जी
0: जन फर बा एक तुरब सा ताजा फड़ के जन बा ओके खुलब सा
1: चिपवा नहीं यान बाती
0: बिल्कुल जैसे बोला देखा देखा भीतर में कैमरा इधर से की आए जूम से की हुई तो हाँ देखा यह देखा तो कमरे भीतर में बिया कहते बा ता इके जब निकाल ले सा ता जैसे चिपवा कहते बा जैसे बोला बिया
1: रु ऐसे सकबा खाई
0: हाँ तो ऐसे देखा हाथ में हमारे ओकर बिया बाते तो अब इके छिपवा की तरह

0: लगभग हर जना के घर रहल आगे हम यार बाते ये सब रहल आज हो लौकेला कोनो कोनो जगह पर हम जाएला सत दम्बोरे दम्बोरे देखबा तनि सुन
1: जगह चिराए कर पैदावार एकर रुपाई जस्ती कहला हमनी कम थी
0: अच्छा
1: चिराए सगरे सगरे लेकिन लेकिन जैसे बोला आगे आगे के आगे में हमनी लगे किसी बागास करके होता ही रहल वाले दे प्रति इलाका में कोनो कोनो किसान लोग हवन सा जनों कर लोग के जो खेत बातें खेत के ओकर जो बाउंड्री बाते तो ओकर में बोझियो में इसे रोपल करे लन सा
0: जी तो है ही तो बोलत है ढेर जना इस सब के देखे लन सा पर एकर वाले नहीं जाने लन सा नहीं जाने लन सा ई कौन ची हा सकेला हाँ देख ले हो ऐसा खा के पता नहीं बट एकरा कोनो महत्व भी नहीं देवे लन
1: ता जो जब चिपवा फ्रोजन किने या बॉट में
0: इतना तड़का बाते फ्रेश बाते
1: इतना तड़का मिली ना घर पे बाग किसी बोला हर गरीब बोला सा फैसिलिटे के दौर चला था
0: जी
1: तो हमनी हमनी बात के खरीद ला सा या फिर साशे में खरीद ला सा क्योंकि इतना ले आसान बातें प्रयोग करे के तो हाई में तन्नी सुन खाली से फोबा करे के देखा एक मैं देख रेख करे के नहीं बा जितना चीज आज हम ले है सुरन होए काबोल होए जोतक होए पुआकारे होए एक को में तोरा पीलुआ बीमारी उसमें लौकी
0: और कोनो पेस्टिसाइड कुछ नहीं चाहिए
1: ना चाहे ला कुछ डाले के देख रेख अपने से होला ता खाली कुंच बा करे के कहा बोल के जेबा पेड़ लगे थोड़ा सुन तुरे सुपे मौसम में नहीं जेबा तुरे पर पेड़ लगे जाके तुरे के पुआ कागे के जेबा तुरे ओंबरे बाद जब पारे हो जाए था जन पारे हो गलबा भर गलबा तब निकाल के तब परी ओके खोल के ओके निकाले के तब
0: एगो प्लेजर रहल आगे एगो प्लेजे रहल सब तुर के पकाए के खियाए के खाए के अभी तो हमने बोला था ऐसा ये सब हमने के जितना सुपर फूड्स ये सब हमने देखा था ऐसा सब्जी फल देखा था ऐसा चाहेला ए लोग के वापस हवन सा हबी ले ढेर सकेला नए बातें पर जितना बा वो लोग के चाहेला फोपाजे करे के ना
1: आजकल एगो फैशन ही कहते बा लेकिन आदगी में उल्टा फैशन शायद तो आजकल जे जाने ला जे जाने ला और ओकर लगे बात कोई का घड़ी आवता और ओके इम्प्रेस करे के चाहेला बताए कि ना चाहला हमार लगे ता इ सब चीज तूर के तब पकाए तब देखा हमार आंगन में की है हमार लगे की है हम अति कल है ओकर में पेस्टिसाइड ने बाते
0: जी
1: न्यूट्रिशियस बाते ता सब कोई कन ला अच्छा ऐसे होता
0: हाई जो सेटिस्फैक्शन हाई जो तो हर चमक बातें आंखों में जब बात कर रहे एक बारे में तो हम यही आशा कर रहे थे जा कि जितना जना ये सब फल जो सब्जी बातें कैसे कुछ सब जो चीज हमने देखा था ऐसा इन लोग के कोसो मासो करिया जा स्वस्थ रह बा जा और उस स्वस्थ सब कोई के हमने बताब जा तो भाई संजय शंभू आज हमने के आज की चर्चा कार्यक्रम है जी परि समाप्त होला आवत हफ्ता फिर से मिलाब जा और जितना जना पार्टिसिपेट कर ले हवन जब देखा था हमने के टीवी पर और ये सब जो चीजवा देखा तो वह फिर से याद आवा था हाँ ये सब रहल चाहेला फिरों से वापस आने के तो ये सब का खाए के हमने के चाहेला तभी तो हमने स्वस्थ रह जा और उस स्वस्थ सब कोई के बना जा
1: हाँ अरे एगो एगो एगो चीज सा कब्जा करे आज तोहरा मन करी सब के रुपाई करे के तोहर जो आर एम फ्री के फेसबुक जो है प्रोग्राम चली रही फेसबुक पर बाद में तो ओकर में एगो लिंक डाल ले तो सकियन जा ओकर भर दे एगो लिंक में एगो
0: अच्छा अभी खाली टीवी और रेडियो पर बातें तो हमनी बाद में इतला कर अब जा कहां पर सक बचा करे
1: हां तब सक बचा या फिर कैसे बोलनी जा इंफॉर्मेशन यूनिट
0: जी
1: सैं पियर
0: जी
1: 4334378 पर या फिर 4339350 पर सक बचा फोन करे वहां पर जना दिया जा तब संपर्क रख जा
0: जी तो चल बहुत बहुत धन्यवाद हो रो और उस सब कोई के हमने के सजे टीम जाने से प्रणाम शुभ दिन
1: शुभ दिन आज की चर्चा रेडियो मॉरिशियस

0: इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई से सितंबर महीनों के बीच एलनीनो के तेज होने की आशंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में गर्मी की भीषण लहर, सूखे तो कहीं भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को आजकल एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है, जिसमें यूजर नेम रिजर्व करने के लिए कहा जा रहा है। 29 जून को इस मैसेजिंग ऐप ने दुनिया भर में अपने 30 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स के लिए ये नया फीचर लागू करने की घोषणा की। जल्द ही बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए संपर्क करना मुमकिन होगा, जबकि अभी ऐसा करना ज़रूरी है। अमेरिका की इस कंपनी के अनुसार इस कदम के पीछे मकसद है उन लोगों की प्राइवेसी बेहतर करना जिन्हें किसी ग्रुप चैट में शामिल होने का आमंत्रण मिला है या जो कोई नया कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। हालांकि इस बड़े अपडेट को अपने सबसे बड़े मार्केट में एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा है। भारतीय सरकार ने व्हाट्सएप से इस फीचर को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामले बढ़ने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी ने नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स पर प्रहार किया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। इस तूफान के साथ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हैं। कुछ जगहों पर भारी नुकसान की खबरें हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

समस्त श्रोताओं को नितुषा का करजोर प्रणाम। सुबह के 10:04 हो रहे हैं। जी हाँ, इस समय आप भक्तिधारा कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, आइए श्री गणेश करते हैं।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनू अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड का दोहा 254 अर्थात 254 और उसके नीचे की चौपाइयों को आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग आपको

ज्ञात है कि धनुर्यज्ञ होने वाला है मिथिला में। अनेक राजा दूर दूर से इस आशा को लेकर के आए हैं कि वे धनुष उठाएंगे और जनक नंदिनी सीता जी से विवाह करके अपने भाग्य पर गर्व करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी राजा धनुष को टस से मस भी नहीं कर सका और ये स्थिति देखकर राजा जनक बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने अपने मन की पीड़ा को इस तरह अभिव्यक्त किया कि लगता है इस धरती पर अब कोई वीर बचा नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि यदि मुझे थोड़ा सा भी इस बात का अनुमान होता कि कोई वीर अब इस धरती पर शेष नहीं है तो मैं इतना बड़ा प्रण अपनी पुत्री के विवाह के लिए कभी नहीं करता। और उनके इन उद्गारों को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है और वे कहते हैं कि रघुवंशियों के होते हुए राजा जनक का ये कहना कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राम संकेत करके लक्ष्मण जी को बिठाते हैं और तब गुरु विश्वामित्र श्री राम से उठकर धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं। श्री राम उठते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा कि जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए उठते हैं यानी धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में ना हर्ष है और ना विषाद और वे अपने सहज स्वभाव से ही उठ खड़े होते हैं। यानी ना तो उन्हें इस बात का कोई गर्व है कि मैं धनुष उठा लूँगा और मैं एक तरह से विश्व विजेता बन जाऊंगा, मैं राजा जनक की पुत्री से विवाह करके सभी राजाओं को पराजित कर दूंगा, ऐसा भी उनके मन में कोई भाव नहीं है और ना ही इस बात का कोई खेद है, दुख है कि यदि मैं धनुष नहीं उठा पाया तो क्या होगा। वे हर स्थिति से परे हैं, बस उन्हें आदेश मिला है और वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। इस भाव से श्री राम उठते हैं और जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, उस मंच पर जहां पर धनुष रखा था, तो उनका सौंदर्य कैसा है, वे कैसे लगते हैं, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही कलात्मक ढंग से किया है। आइए हम उसे सुने, उस दोहे का आनंद लें। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी? कहना केवल इतना चाहते हैं कि उस मंच पर रघुनाथ जी पहुंचे और उन्हें देख करके जितने संत थे, सज्जन पुरुष थे, वे अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनके नेत्र प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। लेकिन चूंकि तुलसीदास जी कवि हैं इसलिए इस स्थिति का उन्होंने बहुत ही कलापूर्ण वर्णन किया है। वे क्या कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। मंच बना हुआ है और मंच हमेशा ऊपर बना होता है, यानी फ्लोर से, फर्श से थोड़ा ऊपर एक मंच बना हुआ है और राम जी नीचे से उठ करके उस मंच पर जा रहे हैं जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। तुलसीदास जी उस मंच की तुलना किससे कर रहे हैं? उदयाचल यानी

उस पर्वत से जहाँ से सूर्य निकलता है। यानी सूर्य कहाँ से निकलता है? निकलता तो है ऊपर से, लेकिन उदयाचल से, यानी दिखाई दे रहा है, एक ऊंचा पर्वत है और उसके पीछे से धीरे धीरे धीरे धीरे सूर्य निकलता हुआ आ रहा है। तो श्री राम कैसे लग रहे हैं जब मंच पर पहुंच रहे हैं? तो ऐसे लग रहा है कि उदयाचल से सूर्य विकसित हो रहा है। इसके दो कारण हैं सूर्य कहने के। एक तो श्री राम का जो तेज है वो सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य बहुत तेजस्वी होता है, आभा से युक्त होता है, कांति से युक्त होता है, वैसे ही श्री राम का पूरा व्यक्तित्व और विशेष रूप से उनका जो मुखमंडल है वो बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, श्री राम सूर्यवंशी माने जाते हैं, तो चूंकि वो सूर्यवंशी हैं इसलिए भी कहा जा रहा है कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर, यानी सूर्य उदय हो रहा है। और जब सूर्य उदय हो रहा है, मान लीजिए सवेरे 5 बजे का समय है आजकल के हिसाब से यदि हम लें, तो सूर्य की हल्की हल्की आभा गगन मंडल पे फैल रही है। उदयाचल से धीरे धीरे सूर्य उदित होते होते पूरे गगन मंडल पर उसकी आभा फैल रही है। और वो सूर्य कैसा है? अभी बाल सूर्य है। बाल मैंने एकदम छोटा, नन्ना, बच्चे की तरह से, जैसे छोटा सा बच्चा धीरे धीरे धीरे धीरे चल रहा हो, जिसे हम बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे घुटनों के बल चल करके आ रहा हो, कुछ वैसा ही वर्णन है कि बाल सूर्य है। क्योंकि राम जी कैसे हैं? राम जी अभी तरुणावस्था में हैं, राम जी अभी युवक नहीं बने हैं। तो राम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानो बाल सूर्य, मान लो छोटा सा सूर्य जो अभी अभी उदयाचल से उदित होते हुए अपनी आभा को पूरे गगनमंडल पर विस्तृत कर रहा है। तो ऐसे हैं श्री राम जो बिल्कुल बाल सूर्य की तरह हैं, यानी उदित होते हुए सूर्य की तरह हैं। और जैसे सूर्य को देखते ही कमल खिल जाते हैं, आपको मालूम होगा कि दो फूलों के बारे में ऐसा सूर्य के साथ उनके संबंध को उद्घाटित करते हुए कहा जाता है कि एक कुमुदिनी का फूल है जो रात में खिलता है और सुबह मुरझा जाता है, और दूसरी ओर कमल का फूल है जो शाम को मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, कमल खिल जाता है। एक और बात होती है, चूंकि कमल के पराग से भौरों का बहुत प्रेम होता है, जो भ्रमर हैं, जो भौरे हैं, वो कमल के पराग का पान करने के लिए मचलते रहते हैं, इसलिए जैसे ही कमल का फूल खिलता है भौरे आकर्षित होकर के उसका रसपान करने के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। और धीरे धीरे कमल का जो रस है, जिसे मकरंद कहते हैं, पराग कहते हैं, उसका पान करने लगते हैं। और जब सायंकाल सूर्य अस्त होता है और रात्रि का आरंभ होता है, तो धीरे धीरे जब कमल की पंखुड़ियाँ संकुचित होती हैं, बंद होने लगती हैं, तो भौंरे उन्हीं पंखुड़ियों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्हें इसमें से निकलना है। अभी तो हम इसमें बंद हो जाएंगे, वो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि रस पान करने में वे इतना आनंदित हो जाते हैं कि उनको इस बात की कोई सुध ही नहीं रहती कि शाम हो जाएगी तो हम इन्हीं पंखुड़ियों में बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है, जैसे ही सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं और कमल की पंखुड़ियाँ खिलना आरंभ होती हैं, तो जो भौंरे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भौंरे रात भर बंद थे उन कमल की पंखुड़ियों में, अब वे मानो स्वतंत्र हो जाते हैं और वो फिर से गुंजार करना आरंभ कर देते हैं, मानो अपने

मन का हर्ष अभिव्यक्त करने लगते हैं। इस पूरे दृश्य को एक तरह से अपने समक्ष रख के, ये पूरा दृश्य मानो उपमान है, इसी दृश्य से तुलना कर रहे हैं तुलसीदास जी श्री राम के मंच पर आने की। तो अब क्या कह रहे हैं वे कि जैसे जब सूर्य उदित होता है

और कमल में जो भौंरे रात भर बंद होते हैं वो भौंरे अब प्रसन्न होकर के अपना हर्ष गुंजार करके अभिव्यक्त करते हैं। तो श्री राम के पक्ष में जब श्री राम उस मंच पर आ रहे हैं जिस मंच पर वो धनुष रखा है उसकी ओर बढ़ रहे हैं श्री राम, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानो सूर्य उदित हो रहा है। श्री राम सूर्य की तरह हैं, उनके चेहरे का जो आभा मंडल है वो बिल्कुल सूर्य की तरह है, तेजस्वी हैं श्री राम। और उनके आते ही जब श्री राम मंच पर उपस्थित होते हैं तो जितने संत हैं वे मानो कमल की तरह हैं। जैसे कमल खिल जाता है सूर्य को देख के, वैसे ही जो सज्जन लोग थे, जो संत लोग थे, जो ऋषि मुनि लोग थे, जो चाहते थे कि श्री राम का सीता जी के साथ विवाह हो, वे सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मानो उनका हृदय कमल की तरह है जो श्री राम रूपी सूर्य को देख करके खिल उठता है, और उनके नेत्र भौरों की तरह हैं। देखिए कवि की कल्पना, आंखें कैसी होती हैं, नेत्र कैसे होते हैं? काले होते हैं, चंचल होते हैं, और जो भौंरे हैं वे भी काले हैं, चंचल हैं। इसलिए नेत्रों की तुलना भौंरों से की जा रही है, भ्रमर से की जा रही है। तो जो संत लोग हैं उनका हृदय रूपी कमल खिल उठता है प्रसन्नता से, और उनके नेत्र हर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम के रूप का वे पान कर रहे हैं, वे श्री राम को एक टक निहार रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है हमारे नेत्र आज धन्य हो गए कि हमें श्री राम की छवि देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आगे यहाँ तो उन्होंने संतों की बात की, अब आगे कहते हैं नृपन केरी आसा निसिनासी बचत नखन अवनी न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। श्री राम जब मंच पर जाते हैं जहाँ धनुष रखा है तो संत तो उस प्रकार प्रसन्न होते हैं मानो जैसे कमल खिल जाता है और जैसे भंवरे प्रसन्नता से गुंजार करने लगते हैं, वो स्थिति है संतों की। और आगे कहते हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। सवेरा हुआ है तो रात्रि समाप्त हो गई है, तो रात्रि समाप्त हो गई है इस बात को तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं कि जो राजा लोग आए थे आशा लेकर के, अपने मन में एक सपना सजा करके, एक आशा लेकर के आए थे कि हम धनुष तोड़ लेंगे, हम धनुष को हटा देंगे, हम प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे और हमारा विवाह सीता जी से हो जाएगा। तो अभी तक उनके मन में वो आशा थी, लेकिन वो आशा अब निराशा में बदल गई, वो आशा समाप्त हो गई, क्योंकि वे लोग आए, धनुष उठाने का प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो इस बात को तुलसीदास जी कैसे कह रहे हैं? मान लो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। रात्रि नष्ट हो गई का अर्थ रात समाप्त हो गई, सवेरा हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, यानी सूर्य जैसे धीरे धीरे उदित होता है, तो जब सूर्य उदित हो रहा है तो रात्रि समाप्त हो गई है। तो रात्रि समाप्त होने का अर्थ है कि जो राजा लोग मन में आशा लेकर के आए थे उनकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। और बचत नखत अवली न प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभी तक वे मुखर थे, यानी बोल रहे थे, वाणी से अपनी वीरता का बखान कर रहे थे कि हम तो बहुत वीर हैं, हमारे रहते कोई अन्य राजा इस धनुष को हाथ भी नहीं लगा सकता, हम तो जैसे ही जाएंगे इस धनुष को जैसे ही उठाने की कोशिश करेंगे तुरंत उठ जाएगा,
हमने तो इतने महान महान कार्य किए हैं, हमारी वीरता का तो डंका बजता है, इस धनुष को उठाना कौन सा कठिन काम है। तो ऐसे जो वचन बोल रहे हैं वे वचन कैसे हैं? मान लो जो आकाश में रात्रि के समय तारे होते हैं तो उनके वचन तारों की तरह हैं, और जैसे सवेरा होते ही तारे चमकना बंद कर देते हैं।

उसी प्रकार श्री राम को मंच पर गया हुआ देख करके, उनके तेज को, उनकी आभा को देख करके जितने भी राजा हैं, मानो उनकी आशा मिट गई और उनका जो बड़ा बड़ा बोल था, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें वे बोल रहे थे, वे उन तारों की तरह थे जो तारे आकाश में चमकते हैं लेकिन प्रातःकाल वे सारे तारे बुझ जाते हैं। उसी प्रकार ये राजा भी श्री राम को देखकर बिल्कुल मौन हो गए। उनके मुंह में मान लो शब्द ही नहीं रहा, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि श्री राम का व्यक्तित्व इतना प्रखर, इतना तेजस्वी था। फिर कह रहे हैं, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू कलुकाने। रात्रि में क्या क्या होता है, बोल रहे हैं, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। रात्रि होते ही कुमुद का फूल खिल जाता है, सवेरे सूर्य के आते ही कमल खिलता है और रात्रि में सूर्यास्त के साथ ही कुमुद का फूल खिल जाता है। तो कह रहे हैं कि चूंकि अब प्रातः काल हो गया है, इसलिए अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। वे राजा जिनको अपनी वीरता पे बहुत अहंकार था, बहुत अभिमान था, जैसे लग रहा था कि इतनी अपनी वीरता दिखा रहे थे कि उनके समक्ष कोई और टिक ही नहीं सकता, ऐसे अभिमानी राजा मानो कुमुद के फूल की तरह थे, जो रात्रि होने पर तो खिल गए थे लेकिन अब सूर्योदय होते ही वे कुमुद के फूल संकुचित हो गए हैं। यानी ऐसे अभिमानी राजा जो अब तक अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने को सबसे बड़ा वीर और पराक्रमी मान रहे थे, वे अब संकुचित हो गए, शांत हो गए। उन्हें लगा कि श्री राम के तेज के आगे सचमुच हमारा तेज किसी काम का नहीं है। और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। आपको मालूम है रात में उल्लू बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उल्लू रात में जगता है और सुबह दिन में सो जाता है। तो राजा रूपी उल्लू मतलब ऐसे मूर्ख राजा जो बेकार में अपने ऊपर अहंकार कर रहे थे, उनके अंदर ना तो कोई तेज था ना उनके अंदर पराक्रम था, लेकिन जैसे उल्लू को झूठ मूठ अपनी वीरता पर अभिमान होता है, वो इसीलिए उल्लू को मूर्ख माना जाता है। तो ऐसे जो कपटी छल वाले जो राजा थे, जो उल्लू की तरह थे, जो रात्रि में तो अपनी वीरता का डंका पीट रहे थे, वे ऐसे राजा इस समय सूर्योदय होने पर क्या हो गए, उल्लू की तरह छिप गए। भय बिसोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। जो चकवे हैं वो शोक रहित हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो चकवा पक्षी है वह रात्रि में विरहावस्था में होता है और दिन में उसका चकवी से मिलन होता है। यानी रात्रि में चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है चकवा और चकवी का मिलन हो जाता है। तो रात्रि में चकवा और चकवी उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलग होना पड़ता है, और प्रातःकाल होते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनका मिलना हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मुनि और देवता वो किसकी तरह हैं, चकवे की तरह हैं। उनका दुख दूर हो गया क्योंकि रात्रि बीत गई है, प्रातःकाल हो गया है, सूर्योदय हो रहा है, यानी श्री राम अब धनुर्भंग करेंगे। ये देख करके जो मुनि हैं, यानी ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, उनका दुख दूर हो गया। उनके मन में अब ये विश्वास पैदा हो गया कि श्री राम धनुर्भंग करेंगे और वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। यानी अपनी सेवा, अपनी प्रसन्नता को कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, गगन से फूल बरसा करके। और श्री राम ने क्या किया, तो गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आया सुमांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
राम जी का यही तो चरित्र है, यही तो राम जी का बड़प्पन है।

है। इसीलिए तो राम जी मूल्यों के भंडार माने जाते हैं, उनका आचरण हम सब के लिए एक उदाहरण है कि उन्हें गुरु ने कहा कि जाओ तो वे उठ गए, और अब जब वे मंच पर पहुँचे, इसके पहले कि वे धनुष का स्पर्श करें, वे सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और जितने भी ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित हैं उन सब के चरणों में प्रणाम करके सबका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और श्रोताओं, आइए अब एक भजन सुने और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।

शाम सवेरे करे जय जयकार, हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है श्रोताओं, 10:38 हुए हैं। आप भक्ति धारा कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और दिन के 11 बजे तक नीतुषा आपके समक्ष में है। जी हाँ, हम भगवान का नाम लेते हैं, सुबह शाम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब सफल रहे, कुशल मंगल रहे, अपने परिवार की कुशलता मांगते हैं। बस कभी कभी होता है वही जो ईश्वर चाहते हैं, जो हम मांगते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन जो उन्हें चाहिए यानी कि जो ईश्वर चाहते हैं वो हमको मिलता है। तो बस आप उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना करते रहे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, और सब कुछ अच्छा ही होगा। नतमस्तक हो जाती है उनके चरणों पर।

बस श्रोताओ, 10:55 हो रहे हैं और दुर्गा चालीसा भी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का यह भक्ति धारा कार्यक्रम समाप्त हो चला। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, उसके पश्चात साइदा के साथ उर्दू प्रोग्राम। नीतूषा को आज्ञा दीजिए, शुभ दिन, प्रणाम।

0: राशि अंतरराशि न्यूज अपडेट्स के साथ स्टूडियो में आ गई हैं अदिति, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। कौंदेमास में कल एक हादसा पेश आया। 24 वर्षीय एक महिला ओमेश्वरी एंथनी की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई। उसके पति ने उसे बाथरूम में बेहोश पाया और अस्पताल पहुंचाए जाने पर फ्लाकी अस्पताल में उसे आईसीयू में दाखिल किया गया और उसे वेंटिलेशन पर रखा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जहाँ से पता चला है कि इस हादसे के पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड का के इंटॉक्सिकेशन का कारण है। घरेलू हिंसा के पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करना और साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का प्रमुख मकसद है, जिस पर पिछले मंगलवार से राज्यसभा में बहसें चल रही हैं। ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। इसके लिए इसमें हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें आर्थिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ये नई संस्था उन मुख्य सुझावों में से एक है जो ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशने के वास्ते स्थापित कमेटी ने दिए हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगा। मंत्रिमंडल ने इस पूर्णतः स्वायत्त विशेष देखभाल और शिक्षा केंद्र की तत्काल स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता गुरा ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार इस संस्थागत कमी को दूर करना आवश्यक है। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर ये रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए, जब विदेशी कामगारों के काम करने की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी ने नॉर्थर्न मारियाना आइलैंड्स पर प्रहार किया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। इस तूफान के साथ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ जगहों पर भारी नुकसान की भी खबरें हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड लिस्पेरांस ट्रेबुशे में 79 साल के श्री सुरेंद्र रंजाया, जो सुरेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेलू रंजाया के मकान रॉयल रोड लिस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेल्मो वुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंगबो में 77 साल के श्री हरिदेव लक्ष्मीन, जो गुरु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री मनहर कुमार लक्ष्मीन के मकान नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शुमेलागो मोदालबेया में 27 साल के श्री दिवेश गौरिया, जो घो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी माँ श्रीमती रूपवंती गौरिया के मकान शुमेलागो मोदालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोबो में बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। केजू रोड पिची विलाज गुडलैंड्स में 86 साल के श्री लखनाथ गोपाल चिमंगतू, जो विद्यानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके अर्थयाज दिन के एक बजे इनके मकान केजू रोड पे चीवी लाश गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड ओकुले में, रॉयल रोड ओकुले में 81 साल की 81 years old श्रीमती बाला रामदू, श्रीमती बाला रामदू पैदाशी नाम इराना जो दामी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनके अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके रोड बुबासें के एलियन सन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है। दिन के 11:05 हो रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनिए दो विज्ञप्तियां। मरम्मत कार्यों की वजह से सीबी अपने सभी ग्राहकों को सूचित करता है कि वाक्वा खास तौर से ओले गुट नंबर 1, गुट कैस काउंटो नंबर 2 के कुछ भागों, गुट दिव्यागु के कुछ भाग, साथ ही साथ गुट

0: Damary, route Beg, route Bonnefin, chemin réservoir, Doody Lane, chemin La Sauce, Muthu Lane और आसपास के इलाकों के रहने वालों को कि आज सोमवार 6 जुलाई सुपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सूरीनाम और मोसलमा गोबिन सूरीनाम के निवासियों को भी सूचित किया जाता है कि इस बुधवार 8 जुलाई की सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जो ही मरम्मत कार्य पूरे होंगे बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सामान्य पर ला दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے دعا کیجئے دعا دیجئے اور دعا لیجئے ہمارے دل کی گہرائیوں سے ये दुआ है कि रब करीम आपकी खूबसूरत ज़िंदगी को दुनिया और दीन की तमाम खुशियों से मालामाल कर दे। इसी नेक तमन्ना के साथ आज की इस नशरियात की शुरुआत करते हैं। हज़्ब मामूल आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द बयान और नातु सलाम। तुम पढ़ के देखो कुरान उसका है उसको बंदों से प्यार कितना मिसाल दे दे कि हर किसी को वो अपनी जानिब बुला रहा है। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

सदाकल्लाहु लजीम। कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बन कर आएगा। अल्लाह पाक हमें कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सिमत उसकी शान करीमी का नूर है, औसाफ क्या बयां करूं अपनी ज़ुबान से मैं, जिनसे खुदाए पाक की तारीफ़ हो सके, अल्फाज ऐसे लाऊं तो लाऊं कहां से मैं।

0: वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। मौज़े सामीन, इस वक्त आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुलमाजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, मौजू है बुराइयाँ। आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। एक बुज़ुर्ग जंगल में सफ़र कर रहे थे कि रात हो गई, हर तरफ खौफनाक दरिंदे दन दनाते फिर रहे थे। इन्हें खौफ महसूस हुआ कि अचानक ये हदीस पाक याद आई कि जो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और एक जगह सो गए। सारी रात सुकून से गुजारी और किसी दरिंदे ने इनको छुआ तक नहीं। फिर इस हदीस के मुतालिक उन्होंने फरमाया, मैंने इसीलिए दुरूद शरीफ पढ़ा था क्योंकि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और जब मुझे अल्लाह पाक की 10 रहमतें घेर लेंगी तो भला किस दरिंदे की मजाल है कि वो मेरी तरफ आँख उठाकर भी देखे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये सब ईमान की पुख्तगी पर मुनहसिर है। आपने इन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह के ईमान की पुख्तगी मुलायजा फरमाई, जबकि हमारी हालत यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन तो हैं लेकिन हमारी तवज्जो ज़ाहिरी असबाब की तरफ ज़्यादा होती है। अल्लाह पाक हमारा ईमान भी पुख्ता फरमाए, आमीन। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने समुंदर के किनारे एक लाश देखी। सूरत हाल ये थी कि जब पानी आता तो इस वक्त मछलियाँ जाती और इस लाश को खाती, जब पानी उतर जाता तो दरिंदे इस लाश को खाते, और जब दरिंदे खाकर चले जाते तो परिंदे नोचने खाने आ जाते। ये मंज़र देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, बेशक तू कादिर है और मुझे यकीन है कि तू मरने के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाएगा, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है कि काश मैं ये मंज़र अपनी आंखों से देख सकूं कि तू क़यामत के दिन किस तरह इस इंसान को इकट्ठा करेगा जिसके जिस्म से कुछ हिस्से मछलियों के पेट में है, कुछ दरिंदों के पेट में है और कुछ परिंदों के बोटों में हैं। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ए इब्राहीम, तुम 4 परिंदे पालो और इनको खूब मानूस कर लो, यानी वो तुमसे हिल जाएं, तुमसे मोहब्बत हो जाए, उनको करीब हो जाएं तुमसे। जब अच्छी तरह मानूस हो जाएं तो इनको ज़बह करो। ज़बह करने के बाद उनके सर अपने पास रख लो और गोश्त का कीमा बना लो, यानी बिल्कुल बुद बुद बुद बुद कर दो, छोटा छोटा कर दो। इसे इर्द गिर्द के मुख्तलिफ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख कर आओ और इनको पुकारो, फिर हम तुम्हें अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुक्म खुदावंदी 4 परिंदे, मोर, मुर्ग, कबूतर और गिद्ध पाले। जब वो अच्छी तरह मानूस हो गए तो आपने इन चारों को ज़बह करके उनके सर अपने पास रख लिए और गोश्त का कीमा बनाने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इनको पुकारा,

इस तरह गौर व फिक्र करने से इंशाअल्लाह इसकी तकब्बुर जैसी बुरी खसलत ख़त्म हो जाएगी। आजकल हर एक अपनी बुलंद परवाजी यानी मनसब और अहदे के पीछे दौड़ता नज़र आता है, और अगर किसी को बुलंद परवाजी यानी कोई बड़ा अहदा या मनसब मिल जाए तो उसे बहुत घमंड होने लगता है। ऐसों को उन लोगों के अंजाम से इबरत हासिल होनी चाहिए जिनकी हलाकत का बाइस इनका अहदा मनसब बना। आइए अहदे और मनसब में तकब्बुर करने वालों का अंजाम मुलायजा कीजिए। जब फिरौन को अहदा मिला तो वह भूल गया और खुदाई का दावा कर बैठा। 300 साल तक अयाशी करता रहा, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम ये हुआ कि वो दरियाए नील में बड़ी जिल्लत के साथ डूब कर मरा। इसी तरह जब नमरूद को ओहदा मिला तो वो भी खुदा होने का दावा कर बैठा। बिलाखिर उसे एक मच्छर के ज़रिए हलाक कर दिया गया। याद रखिए, ओहदा वही अच्छा जो इस्लाम की मोहब्बत के साथ हो, जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अली मुरिदवान के पास था, और वो इसे दीन इस्लाम की तबलीग और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हमारे बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम के पास भी ओहदा था, और ऐसा ओहदा कि दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आज भी वो अपने उर्स के मौके पर लाखों लोगों को जमा कर लेते हैं, जबकि कोई बड़े से बड़ा सियासी लीडर इतने लोगों को जमा नहीं कर पाता। आज भी रोज़ाना हज़ारों लोग उनके मज़ारात पर हाज़िरी देते हैं, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत जारी है। याद रहे, आजकल दुनियावी कानून के एतबार से अगर किसी को कोई ओहदा या मनसब मिलता है तो वो सिर्फ 5 साल तक होता है, जबकि औलिया इकराम की हुकूमत सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद आज भी जारी और जारी रहेगी। अगर किसी पर ओहदे की धुन सवार हो और मकसद सिर्फ दुनिया बनाना या दौलत कमाना, तो यकीनन ये उसकी बुरी सिफत है। उसे चाहिए कि अपनी इस बुलंद परवाजी की चाहत को ख़त्म कर दे ताकि इसे दिली सुकून हासिल हो। हाँ, अगर वाकई कोई दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ओहदा या मनसब पाने की कोशिश करता है तो वो लायक़े तहसीन है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में शहवत जैसी बुरी खसलत को काबू में रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये बड़े बड़ों को चारों खाना चित कर देती है और बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है। तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जो लोग बड़े बुज़ुर्ग और वली माने जाते थे, इनके साथ शहवत ने वो गुल खिलाए कि इनकी विलायतें छीन ली गईं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आइए इसे एक शख्स की इबरतनाक दास्तान मुलायजा कीजिए। सुनिए, जो शहवत के सबब अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठा। बनी इसराइल में एक आबिद था जिसकी दुआएँ रद्द नहीं होती थी। लोग अपने मरीज़ों को इसके पास लाते और दुआ करता तो सेहत याब हो जाते। एक मरतबा इलाज के लिए बादशाह की लड़की उसके पास छोड़ा दी गई। वो इसका इलाज करता रहा, यहाँ तक कि शैतान ने उसके दिल में बुराई डाली और ना होने का हो गया, और उसने खौफ की वजह से लड़की को कत्ल करके दफन कर दिया। शैतान इंसानी शक्ल में बादशाह के पास गया और इसे इस वाक़े से आगाह करके कब्र के बारे में भी बता दिया। चुनाचे बादशाह ने ज़मीन खुदवाई तो लाश बरामद हो गई। अब जब सज़ा के तौर पर इस आबिद को सूली पर लटकाया जाने लगा तो शैतान इसके पास आया और कहने लगा, मैं तुझे इससे निजात दिला सकता हूँ, लेकिन शर्त यह कि तू मुझे सजदा कर। आबिद ने शैतान को सजदा किया तो शैतान खिलखिलाकर हंसा और बोला, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर इस बदनसीब आबिद को सूली पर लटका दिया गया। और कीजिए, शहवत को काबू में ना रखने की वजह से बदनसीब आबिद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर बैठा। बदकिस्मती से आजकल के हालात इतने ख़राब हो गए कि अगर कोई इस दौर में गुनाह से बचा हुआ है तो शायद इसलिए कि इसे गुनाह करने का मौका नहीं मिला, या वो इस बात से डरता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, वरना अगर बिल्कुल खुली छूट मिल जाए तो शायद ही कोई गुनाह से रुक पाए। वैसे जिस तरह आजकल गली कोचों में खुलेआम नाच गानों के फंक्शंस रखे जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गुनाहों की खुली छूट मिल चुकी है। कारों में सफ़र करने वाले जो भी मामलात होते हैं, स्कूटर पर साइकिल चलाने वाले, सब बुराइयों की तरफ ही, बुरे कामों में ही सफ़र करे जाते हैं। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दौर बड़ा नाजुक है, खुदारा अपने आप को संभाल लो। जब लोग इज्तमात में शिरकत करके सुन्नतों पर बयानात सुनते हैं तो कम अज़ कम इन्हें समझ जाना चाहिए कि, और शुक्र अदा करना चाहिए कि इन्हें समझाने वाला मौजूद है। जो पुकार पुकार कर समझाते हैं, कुरान और हदीस सुनाते और ये बताते हैं कि जिस तरफ लोग जा रहे हैं वो हमारा रास्ता नहीं। याद रखिए, हमारा रास्ता मदीने का रास्ता है, और हमें सिर्फ उन्हीं बातों को मानना है जिनका हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। बदकिस्मती से मुसलमानों की भारी अक्सरियत गुनाहों में मुलव्वस हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे वो गुनाहों को दिल और जान से चाहती है। कौन सा घर है

0: ऐसा है जहाँ इस्लाम के प्यारे उसूल अपनाए गए हों? कौन सा घर ऐसा है जिसका बच्चा बच्चा नमाजी और सुन्नतों का पाबंद है? कौन सा घर ऐसा है जिसमें रहने वाले तमाम खवातीन पर्दा नशीन है? कौन सा ऐसा घर है जिससे मौसीकी की सदाएँ बुलंद नहीं होती? पता चला कि मुसलमानों की गालिब अक्सरियत गुनाहों को सीने से लगा चुकी है और दुनिया की मोहब्बत पर फरिफ्ता है। शायद लोग ये समझते हैं कि वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं। इस दुनिया में ना कोई हमेशा रहा है और ना रहेगा। बाज़ औक़ात मौत ऐसे अजीब अंदाज से आती है कि देखने वाला हैरत का मुजस्मा बनकर देखता रह जाता है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामेईन किराम, अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। हमने जो बयान सुना जिसके अंदर जिन बुराइयों के बारे में बताया गया, अल्लाह पाक हमें इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, इन ख्वाहिशात को मारें, दीगर जो हमने बयान सुना इस पर अमल करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए अयादत के हवाले से एक हदीस समात फरमाइए। हज़रत सौबान रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब अपने साहिब ईमान भाई की अयादत करता है तो वापस आने तक वो गोया जन्नत के बाग में होता है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ।

आइए एक और हदीस समात फरमाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की आयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ।

0: आइए एक और हदीस समात फरमाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की आयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ।
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: समय थयो छे बपोरना पौणा बे।
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 上演遥遥前衣绵长，客家文化鲜活相传。无论身在何方，上演总能拉近彼此的距离。无论岁月如何变迁，客家文化始终是我们共同的根。今次两位批判唐叔朋友，我们下期客家风情化再会，祝大家平安喜乐，我们下期再见。
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: घड़ी मिला लीजिए, इस समय दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम अवार्ड 19 किलोहर्ट्ज पर समय हो चला है आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ जुड़ने का। ये है दैनिक कार्यक्रम जो है आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम, जहां पर हम चलाते हैं आप ही के पसंदीदा गीतों को। फरमाइश करने के लिए आप बेशक हमें कॉल कर सकते हैं 4028085 पर। जी हाँ, 4028085 पर। मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। गाने पुराने हो चाहे नए, जो हो दिल के बिल्कुल करीब और आप करना चाहते हैं किसी को ये गाना स्पेशली डेडिकेट, तो बेझिझक हमें कॉल कीजिए 4028085 और मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5251700 पर। तो आइए आज के इस हसीन सफर की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। 1995 के दौर का ये गाना है और बिल्कुल फिल्म है चांदनी, लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत।

0: आपकी पसंद।
1: भाई जहाँ प्रीत हो वहाँ मीत खींचा हुआ चला आ ही जाता है, जैसे आप खींचे चले आते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम की ओर। और चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों के सफर में हमारे साथ जुड़ चुकी है अनीता जी, जो इस वक्त फ्लिक ऑन फ्लैक से हमारा साथ दे रही हैं। और उनके सभी परिवार के नाम और खासकर MBC की टीम के लिए उन्होंने मांगा है ये अगला गाना, और ये गाना है फिल्म चोरी चोरी से लिया हुआ। पुरानी फिल्म चोरी चोरी और मन्ना डे साहब की आवाज़ साथ दिया है लता जी ने, तो चलिए इस मधुर गीत को साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। और अनीता जी थैंक यू सो मच इस प्यारे से गीत की फरमाइश के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: 2:42 और पुराने गीत हों चाहे नए, बस आपके दिल को छू कर निकल जाए ऐसा ही गाना हम लाए हैं बेशक आपके लिए। और आज के इस कार्यक्रम में चलिए अगला गाना जो है फिल्म चंद्रकांता से लिया हुआ बहुत ही प्यारा सा गाना है। ये गाना है फिल्म चंद्रकांता का, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ गीत। और ये गाने की फरमाइश कर रही हैं रेहाना, जो इस वक्त नॉर्थ-ए-दाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी प्यारी सखियाँ माला फौदा, साथ है सुरेखा जी और बेल्जियम से उनकी बचपन की सहेली सकुन रघुनंदन, जो हमेशा साथ देती है MBC रेडियो के साथ जुड़ी रहती हैं। चलिए इसी गीत के साथ नाम जरूर जोड़ना चाहेंगे हम आफेज का, जो लावेनिया से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारा साथ दे रही हैं। सुनीता जी जो है घोंगोब से, उनकी प्यारी बहन कुंगुमा से विमला जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ गुडलैंड से है वीना जी और अमृता जी हमारा साथ दे रही हैं घोंगोब से ही। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। यहाँ पर शिमला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिमला जो है बेलगोज की रहने वाली, और नाम जोड़ना चाहती हैं अपनी बहनों का रूमा, आरती, साथ है इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज,

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रखते हैं और यहाँ पर शीला जी बहुत ही प्यार से देपीने से हमारा साथ दे रही हैं और इतनी सुरीली आवाज में उन्होंने हमारे लिए एक लाइन गाई, तू है तो दिन गुजरता है बिल्कुल, और जिंदगी में अच्छे दोस्त अच्छे हमसफर अगर हो तो जिंदगी जीने लायक बनती है। और ये गाना आपने खास हमारे लिए डेडिकेट किया है, थैंक यू सो मच शीला जी। मिस्टर एंड मिसेस माँ ही से लिया हुआ ये गीत, 2024 के साल की ये मूवी है और इस फिल्म में नजर आए थे राजकुमार, बिल्कुल इस फिल्म में नजर आई थी जानवी कपूर और बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।

0: आपकी पसंद।
1: लाजवाब गानों का सिलेक्शन, और यहाँ पर एक और प्यारा सा गाना जो जाएगा शकुंतला जी के लिए, जो इस वक्त मोताइलोंग से हमारा साथ दे रही हैं, और उनकी प्यारी भाभी, प्यारी ननंद है गायत्री, साथ है बेटा अजय जो है एनुअल फॉन्स से, और बेटी सुनीता के नाम हम करेंगे ये अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। और ये है बात एक रात की फिल्म से लिया हुआ गाना, और यही गाना हमें जोड़ेगा हमारे अगली कड़ी यानी सपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, साथ देते रहिएगा। वैसे ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा शाम के 4 बजे तक।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: आदाब, छात्रों के लिए दो नए अंडर ग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें। कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में ही ऐसी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में। गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर लागू किया जाएगा जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह ले। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त करने वाले लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो, बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पर रह जाते हैं, कुछ दूसरे अपराधों को हटाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC की पहल पर कोलिंस ओडिटो मॉरिशस में हैं। गैर खानों में सुधार के लिए वो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिशन पर आए हैं। मॉरिशस 9 चुने देशों में शामिल हैं जहाँ UNODC अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार गैर खानों का अनुपालन परखेगा, खासतौर पर कैदियों के साथ सलूक और कैद खानों के संचालन के लिए। स्टॉक टेकिंग के इस मिशन से मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाएगा और मॉरिशन अधिकारियों को सहयोग देने के लिए सिफारिशें दी जाएंगी। विदेश में पैसिफिक टापुओं में सालों के बाद एक जोरदार तूफान ने प्रहार किया है। बावी नामी इस तूफान से बड़े नुकसान पेश आए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। दुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 years old श्री भवन कुमार द्विवेदी पोमानन, श्री भवन कुमार द्विवेदी पोमानन जो कुशन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके घर दुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो
1: मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। जी हाँ, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 3:03 होने जा रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले आइए एक विज्ञप्ति लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो जारी की गई है, वाकवा के आसपास के इलाके जिनमें है हॉलीरोड नंबर 1, कुछ इलाके रूत कैंस कौतो नंबर 2, कुछ इलाके रूत दिव्यगु, कुछ इलाके रूत लामारी, रूत बेग, रूत बनफिन, शमा रिजिवॉर, दूदी लेन, शमा लासूस, मुतू लेन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 6 जुलाई को दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा

0: होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: आपकी पसंद।
0: जी हाँ, पुनः आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और बड़े ही प्यार से आप लोग हमारा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच। और बस आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल 4 बजे तक जारी रखा जाएगा और बेशक आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस का हमें हमेशा बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है और हमारी कोशिश भी जारी रहती है कि हम सभी के कॉल्स को अटेंड करें, सभी के गानों को चलाने की पूरी कोशिश करें। चलिए यहाँ पर ज्योति जी हमेशा की तरह शातुबे नागस से जुड़ चुकी हैं, साथ है आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार हमारा साथ दे रहा है। बहुत बहुत प्यार आप सभी को और बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ अगला जो गीत है फिल्म मोहरा से लिया हुआ ये गाना, और बिल्कुल इस गीत की फरमाइश कर रही हैं। जी हाँ, ये गाना भी हमारे साथ विश्वानी दुमन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये गाने की फरमाइश वे कर रही हैं। उनकी प्यारी बहनें इंदिरा, शारदा, सहेलियां हैं नीला और प्रतिभा, साथ है शोभा और गीता गजाधर के नाम, कुमार शानू की प्यारी सी आवाज़ में।

0: फिल्म है भाभी और ये गीत मांगती हैं उषा जी जो वाकवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनकी पिता की याद में पिता भाईचंद शिवधारी जो उन्हें छोड़ चले हैं और पांच भाई रमेश मनोहर नीतीश शैलेश साहिल साथ है बहनें मेधा शोभा और कामिनी और ये गाना सभी शिवधारी परिवार के लिए
1: चल उड़ जा रे पंछी
0: और बेशक सभी भाभियों की ओर से भी।

भाई कुछ गाने बिल्कुल शांत और कुछ गाने तड़कते फड़कते। भाई आपकी पसंद कार्यक्रम में ऐसे ही गाने चलते हैं जहां पर कुछ नए कुछ पुराने। और चलिए इसी के साथ यहां पर ये जो अगला गाना है फिल्म जुदाई से लिया हुआ गीत, और इस फिल्म की फरमाइश, इस गीत की फरमाइश कर रही हैं सुदेवी जी जो इस वक्त वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और बिल्कुल मुझे प्यार हुआ अभिजीत और अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ में, ललिता कुशल जो उनकी प्यारी बहन है त्रियोले से उनके नाम करेंगे, साथ है सुनीता, शोभा, देवीनाथ, संगीता, जीवराज, बिंदु, मलेगा से है राम रतन, राम गुलाम, कुआरू और रघुबर परिवार के लिए।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद। इस वक्त 3:18 बिल्कुल 4 बजे तक हम हैं आपकी सेवा में। और काट्रबोन से इस वक्त स्वस्ति जी हमारे साथ हैं, साथ दे रही हैं उनकी प्यारी बेटी लेखानी और है उनका प्यारा बेटा सुमित। वो लम्हे, ग्लेन जॉन की आवाज में रखा हुआ ये गाना, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई कई बार दोस्तों का होना, परिवार का होना कितना जरूरी होता है। अपनों का साथ है तभी तो ये जिंदगी आबाद है। पर ये बात हमें तब समझ आती है जब अपने दूर हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ये जो लम्हे हैं, इसे यूं ही जाया ना कीजिए।

आपकी पसंद। रूप की रानी चोरों का राजा, ये है अगला गाना और फिल्म, इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक मांगा है माहिन जी ने, जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं पाल्मा कात्रबोन से उनके सभी परिवार के लिए, और लता जी और तलत महमूद की प्यारी सी आवाज़ में।

तुम हसी मैं जवां, सुमन कल्याणपुर की आवाज में रखा हुआ ये अगला गाना। और ये है गीता जी की पसंद पर पोंफे ऐसे साथ दे रही हैं उनके प्यारे पति रोहित, साथ है आदित्य आरव तानिश, उनके तीन नाती और प्यारी सी नातिन है जानवी, तीन बेटे तीन बहुओं के नाम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में तुम हसीन मैं जवां। और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं। और इसी के साथ 2016 की फिल्म एयरलिफ्ट, इस फिल्म में नजर आए थे अकी यानी अक्षय कुमार। और इस फिल्म का ये गाना मांगते हैं हरीश जी बुब्बासे से, उनके सभी दोस्तों के नाम, सभी परिवार के लिए।

जी हाँ, ये है आशिक, मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज, और इस गीत की फरमाइश कर रहे हैं नंद नाना जी। शनाया और रियांश के साथ वे जुड़े हुए हैं।

की पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और अगली जो पसंदीदा फरमाइश आई है गुडलैंड से सरिता जी की, फिल्म है खरा खोटा। उनके सभी परिवार के नाम और सभी सुनने वालों के लिए किशोर कुमार की आवाज में रखा हुआ ये गाना उनके नाम हम जरूर करते चलेंगे। वैसे 3:46 हो चुके हैं और अभी भी फरमाइशी गीतों की जारी है। चलिए कोशिश जारी रहेगी कि आपके नामों को जरूर जोड़ें।

प्यार ऐसा ही होता है और प्यार से बंधा हुआ रिश्ता कभी टूटता नहीं। चलिए इसी के साथ आप लोगों का प्यार और हमेशा आप लोग साथ देते हैं इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ पर हम आखिरी गाना जोड़ना चाहेंगे, जी हाँ, पोप काले की जैबुन के लिए खुदा गवाह का ये गाना उन्होंने मांगा है। उनके चार बेटे, चार बहुएं, नातिन है जहीरा बी, नगमा, उर्फा, हिदायत, असगर, फैजुल्ला और निहाद के लिए और सभी बिहारी परिवार के लिए। इस समय हमारा साथ दे रही हैं माया जी जो है मोताई ब्लॉश से, साथ है मानती जी इन वल्फों से, उनकी दो प्यारी बहनों के साथ अनंती, आरती बहुएं हैं अनुषा और उर्वशी, और साथ ही साथ गिरिशा और मितिशा के साथ, और मोका से जुड़ी हुई हैं सुदेवी जी बहुत ही प्यार से। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के आवाज में रखा हुआ ये गाना काफी लंबा है, इसीलिए इसी गीत के साथ आज के इस गीत की क्लोजिंग, आज के इस कार्यक्रम की क्लोजिंग हम करेंगे। वैसे आपको याद दिला दे, चार बजे बिल्कुल आप जुड़ पाएंगे अगले कार्यक्रम के साथ जो है प्रकाश, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्बरन द्वारा। तो चलिए इसी के साथ हमारा और आपका साथ अब रहेगा बचपन ऐसा कार्यक्रम में ठीक 5:30 से 6 बजे के बीच, भूलिएगा नहीं। रेडियो मॉरिशस पर हम जुड़ेंगे और एक बार आपके साथ 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपका प्यार से साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ नमस्कार, शुभ संध्या अभी के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय शाम के ठीक 4 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति। ऑजी और इजिदोगोज के आसपास के इलाके जिनमें है MPI ऑजी, CWA ऑजी और साथ ही साथ इजिदोगोज विलाज के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 7 जुलाई को सुबह 8:45 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आगे का कार्यक्रम प्रकाश अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।
2: 819 kilowatts.
3: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
4: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं आज के पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश में। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे वादा किया था कि हम एक और छात्र को लेकर आएंगे और उनसे विचार जान पाएंगे कि वो क्या सोचती हैं। हिंदी भाषा से लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम हिंदी का है, तो आज हमारे साथ MGSS की जो अध्यापिका हैं पूनम किशुन जी, उनका स्वागत करते हैं प्रकाश कार्यक्रम में। और उनकी ही छात्रा हैं अदिति देवी बांसुदेव, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप दोनों से मेरा एक ही प्रश्न है कि आप हिंदी से कैसे जुड़े?
5: मैं तो जब से छोटी थी तभी से हिंदी में रुचि रखती थी। मेरी जो हिंदी की पढ़ाई है बैठकाओं से शुरू हुई और बैठकाओं से जब मैं प्रेरित हुई तो घर पर भी ऐसा वातावरण था कि हमारे यहाँ मंदिर जाते थे, हर बार शिवलिंग में पूजा करने के लिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं मेरी संस्कृति परंपराओं ने मेरा साथ दिया और इसी तरह से हिंदी से लगाव बढ़ता गया। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, फिर हिंदी से जुड़ी रही और इसी तरह मैंने कभी हिंदी का साथ न छोड़ा। आगे बढ़ते हुए मास्टर्स किया, फिर उसी में अपनी रुचि बढ़ाती
4: रुचि बढ़ती गई
5: बढ़ती गई
4: जी। और आप अध्यापिका बन गई?
5: अध्यापिका बन गई और जो भी कार्यक्रम होते थे, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वह ऐसे राइटिंग हो, बच्चों की तैयारी हो, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो जिस हिंदी ने मुझे पाला पोसा उसी को, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही सपना है, यही मेरा कर्म है।
4: देश की अनेक संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती हैं, उनके लिए भी आप छात्रों को तैयार करती हैं?
5: जी बिल्कुल।
4: जैसे कि MGI में निबंध प्रतियोगिता हुई।
5: हिंदी से चाहे कुछ भी हो, कुछ भी जुड़ी हो, मैं बच्चों को अवश्य भेजती हूँ, चाहे वह MGI का हो, चाहे वह हिंदी स्पीकिंग यूनियन का हो, आर्य समाज द्वारा हो, चाहे कोई मंदिर कहे हमें या किसी गांव में किसी ने कुछ भी आयोजन किया हिंदी को लेकर, तो मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और चाहती हूँ कि वे भाग लें।
4: चलिए हम आप छात्रा से पूछना चाहेंगे कि वो कैसे हिंदी से जुड़ी हैं।
6: मेरा संबंध है हिंदी भाषा से मेरे लड़कपन से ही शुरू हुआ था
4: जी।
6: जैसे कि मेरा बहन जी ने कहा वह बैठका में पली बरी है, तो मैं भी बैठकाओं में पली बरी हूँ। और हिंदी भाषा की पढ़ाई के अलावा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में भी भाग लिया है, जैसे वाक पटूठा, निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा कविता वाचन प्रतियोगिता। इन सभी से मेरी रुचि हिंदी भाषा में और बढ़ती रही और मैं हिंदी भाषा के और समीप जुड़ती रही।
4: पाठ्यक्रम में कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप

0: करती हैं?
1: अदिति जो है वो ज़्यादातर जो नाटक पसंद करती है तो नाटक से जुड़ी है और बहुत अच्छी कलाकार है। और न केवल वह हिंदी भाषा की मतलब नाटक के नाटकों में भाग लेती है, भोजपुरी से के साथ भी जुड़ी हुई है, अंग्रेजी के साथ भी जुड़ी हुई है।
0: तो
1: तो
0: अनेक
1: इस
0: भाषाओं में आप नाटक करती हैं, इसके लिए हम बधाई देंगे। अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि हिंदी के लिए आपके क्या विचार हैं।
2: आज का विषय है हिंदी का बढ़ता स्वरूप, जिस पर मैं अपने विचार प्रदान करूंगी। यूटोक लैंग्वेज वेबसाइट के 2026 आंकड़ों के अनुसार हिंदी भाषा दुनिया की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इसके बोलने वालों की कुल संख्या 7 करोड़ से अधिक है। नेपाल में 80 लाख हिंदी भाषी हैं। फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह 11वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और हमारे देश मॉरिशस में हिंदी हमारी शिक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक धरोहर एवं अस्मिता का अभिन्न अंग है। वर्तमान काल में दुनिया के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। रशिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका और चीन जैसे देशों के छात्र बड़ी संख्या में हिंदी सीख रहे हैं। रिव्यू ऑफ रिसोर्स जर्नल के अनुसार अकेले भारत के केंद्रीय हिंदी संस्थान में लगभग 67 देशों के छात्र हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ कदम मिलाते हुए हिंदी भाषा का स्वरूप अब वैश्विक हो गया है। क्या आप जानते हैं इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस 2026 का मूल विषय क्या रहा? तो सुनिए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यह पहल कोडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल युग में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, OTT प्लेटफॉर्म्स तथा ई-बुक्स के माध्यम से हिंदी सामग्री की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई है। प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म्स पर तमिल, तेलुगु, हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी अनुवाद करके ऑडियो बुक्स द्वारा प्रसारित की जा रही हैं। आज हिंदी साहित्य का रसास्वादन करने के लिए भाषागत दीवार टूट रही है। निसंदेह हिंदी भाषा यहाँ न केवल संचार की भाषा बनी है, बल्कि एक महत्वपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी है। 2025 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एकेडमिक स्टडीज़ के अनुसार सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी भाषा विश्व भर में भारतीय पहचान का प्रतिनिधित्व कर रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, आध्यात्म, बॉलीवुड, डिजिटल कला व लोक परंपराएं, इन सभी के प्रसार में हिंदी सेतु का काम कर रहा है। इतलाती हुई आज हिंदी भाषा बड़ी मदमस्त आगे बढ़ रही है। हिंदी फिल्में हिंदी को जन जन तक पहुंचाने में भारी योगदान दे रही हैं। केवल हिंदी भाषा में प्रसारित धुरंधर फिल्म पूरे विश्व में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। किसने सोचा था कि अमेरिका के लिंकन स्क्वायर में इस फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे और उसके बॉक्स ऑफिस चार्ट में कोई हिंदी फिल्म, जी हाँ, हिंदी फिल्म प्रथम स्थान पर होगा। हिंदी गाने अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषा के साथ तालमेल बिठाकर करोड़ों श्रोताओं के दिल जीत रहे हैं। यह गाना कौन नहीं जानता।

शाम हिंदी फिल्मों के चुटीले अंदाज में बोले गए संवाद हिंदी प्रेमियों को वर्षों तक याद रहते हैं, जैसे ओम शांति ओम में शाहरुख खान का यह वाक्य, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे

0: से मिलाने की कोशिश में लग जाती हैं, या फिर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हिंदी साहित्य परिषद के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा निराशा को आशा में बदल रही है। AI की सहायता से कविताएं पॉडकास्ट में बदल गई हैं। प्रसिद्ध लेखक जैसे प्रेमचंद की कहानियां एनिमेटेड फिल्मों और कार्टून के प्रारूप में उपलब्ध हैं। भारी भरकम उपन्यासों को ऑडियो बुक और इंटरैक्टिव डिजिटल कहानियों में बदल रहे हैं। हिंदी ऑफिस सॉफ्टवेयर बोल पहचान वर्तनी जांच अनुवाद टूल्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। चाहे याहू हो या गूगल, हिंदी विषय वस्तु की कमी नहीं है। अंततः जिस प्रकार अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, आज मेरे पास गाड़ी है बंगला है क्या है तुम्हारे पास, मैं कहूँगी मेरे पास माँ है, मेरे पूर्वजों की मातृभाषा, मेरी माता स्वरूपा, मेरी हिंदी भाषा। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए और इसमें सहयोग मिला होगा आपको पूनम बहन जी का, जिन्होंने आपको ये तैयारी करवाई होगी। बहुत सारे विचार आपने छात्रों द्वारा हम तक पहुँचाए। आपका क्या विचार है कि हिंदी आज कहाँ पाती हैं आप?
2: मैं कहूँगी कि जो हिंदी हमने पढ़ी थी, तुलसीदास सूरदास कबीरदास, तो वो शुद्ध हिंदी थी। यह अलग है कि आज बच्चे हिंदी बोलते हैं तो ज़्यादा हिंदुस्तानी हिंदी बोलती है, लेकिन यही हिंदी की सुंदरता है, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो ऐसी भाषा है जो दूसरों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ रही है। और इसी कारण आज जो भाषागत दीवार है वह टूट चुकी है और हिंदी भाषा दूसरी भाषाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे फिल्में हो, पढ़ाई को लेकर हो, साहित्य की बात हो। क्योंकि अभी मॉरिशस में ही आप जानती हैं अभिमन्यु अनंत की एक बहुत सुंदर उपन्यास है, तो उसको आज फ्रेंच भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। लाल पसीना से वह एक्यूल्ट जुसल हो गया है
1: जी।
2: और जो जो जो फ्रेंच वाले हैं उसकी सुंदरता, उसकी भाषा की जो सुंदरता है, उसमें जो प्लॉट है, उन सब से वे परिचित हो पाए। तो अनुवाद भी हो रहा है और दूसरे मतलब आप कभी सोच नहीं सकते थे कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपसे हिंदी में बात करेगा। लेकिन आज आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है, अरे मैं हिंदी में उसको कुछ बोल दूंगी क्या समझेगा वहाँ, लेकिन ऐसा है नहीं।
1: है नहीं, बिल्कुल। आज पोले व्यासिनी हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, और हमारे स्थानीय लेखकों ने अनुवाद किया है। कल्पना लाल जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया, लाल पसीना का अनुवाद हुआ। ऐसे कितने ग्रंथ हैं, कितनी पुस्तकें हैं जो कि मॉरिशस वासियों ने लिखी, साहित्यकारों ने लिखी, और उनका अनुवाद अन्य देशों में पहुंच रहा है अन्य लेखकों द्वारा। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हिंदी से जुड़े। और आपने भी बताया कि अमिताभ बच्चन की बात की, शाहरुख खान की बात की आपने, तो आप भी हिंदी सिनेमा से प्रभावित होकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाती हैं, कि इसका मतलब हिंदी सिनेमा का भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाने में, ये हम कभी भूल नहीं सकते। इसी प्रकार MBC का भी योगदान है, क्योंकि आप तक जो कार्यक्रम पहुंच रहे हैं 2400 घंटे सातों दिन, वो भी तो MBC पहुंचा रही है आपको। तो हमें हर एक व्यक्ति, हर एक बैठ का, हर एक विद्यालय, हर एक छात्र, हर एक टीचर को धन्यवाद देना है कि इस भाषा से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा पर गर्व करें। क्योंकि पहले ये होता था कि पोर्टुगीज जाना है तो हिंदी नहीं बोलनी है, भोजपुरी नहीं बोलनी है, क्योंकि हम शहर आए हुए हैं तो शहर में फ्रेंच बोली जानी चाहिए या अंग्रेज़ी बोली जानी चाहिए। पर आज हम विद्यालय में भी खड़े होकर हिंदी बोल सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर अपनी भाषा पर बोलने में ना हिचकें, ये हमें आज के छात्रों को बताना है, आज के बच्चों को बताना है, और यह कार्य बड़ी अच्छी तरह से आप कर रही हैं पूनम जी।
2: जी बिल्कुल, कार्य तो कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, यह तो मेरा कर्म है, लेकिन इसके साथ से

0: साथ में कहूँगी कि यह मेरा धर्म बन गया है,
1: जी,
0: क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदी बोले, फ्रेंच बोले, अंग्रेजी बोले, जितनी भाषा है उसको सीखें, और जितना आप जानेंगे ना उतना आपका जो आप उसकी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत होगी। और जब वो आजकल जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति होता है वो जितनी भाषाएं जानता है उतना उसको सम्मान मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात की, हमारे लिए सभी भाषाएं सम्माननीय हैं, क्योंकि ना हम हिंदी को कम कह सकते हैं ना अंग्रेजी को ज़्यादा कह सकते हैं, सभी भाषाएं बराबर हैं। सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए हम में कि हम कितना सीख पाते हैं। देश हमारे लिए क्या कर रहा है ये नहीं सोचना है हमें, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो भाषा सबसे पहली है, क्योंकि जब माँ कहते हैं तो हमारी माँ सर्वप्रिय है, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा भी सर्वप्रिय होनी चाहिए। अविश, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहा है, आप अदिति हमारे साथ जुड़ी, और पूनम जी आपको भी हम धन्यवाद देंगे कि आप समय निकालकर छात्रों को लेकर आई यहाँ पर, और प्रकाश कार्यक्रम के श्रोताओं तक हम ये कार्यक्रम पहुंचा पाए। इसके साथ ही हम कहेंगे शुभ संध्या, एक और कार्यक्रम आपके साथ फिर जुड़ेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।

0: शाम के ठीक 5:30 बज चुके हैं। बचपन ऐसा कार्यक्रम में पुनः आपका साथ दे रही है रत्ना। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत मजेदार बीता होगा। और बेशक अभी एग्जाम्स की तैयारियां, बहुत सारे बच्चे अभी इस वक्त एग्जाम्स में हैं। चलिए आपको कहेंगे बहुत सारी बेस्ट विशेस। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में चलिए कुछ हल्के फुल्के गानों के साथ बातें करेंगे आपके जनरेशन की। चलिए पहले तो हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे, हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक जनरेशन का नाम दिया गया है, ये तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते, चलो आज इस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जितनी भी जनरेशन्स आई हैं उसे किस प्रकार से नाम दिया गया है। 19 की सदी से हम शुरू करते हैं, ठीक है। 1901 से लेकर 1927 तक, यानी 1901 से लेकर 1927 के बीच जो जनरेशन आया था उसे कहा गया ग्रेटेस्ट जनरेशन। 1928 से लेकर 1945 तक जो जनरेशन आया उसे कहा गया साइलेंट जनरेशन। 1946 से 1964 के बीच में आए बेबी बूमर्स। 1965 से 1980 के बीच में आए जेन एक्स, यानी जनरेशन एक्स। 1981 से 1996 के बीच में जितने लोग पैदा हुए उसे कहे गए मिलेनियल्स, यानी जेन वाई। 1997 से लेके 2012 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए उन्हें नाम दिया गया, उनकी जनरेशन को नाम दिया गया जेन जी, यानी जनरेशन जेड। 2013 और 2024 के बीच जितने बच्चे पैदा हुए उसे कहा गया जनरेशन अल्फा। और 2025 के बाद जितने भी जन्मे उन्हें बस जनरेशन बीटा में शामिल किया गया। वैसे ये एक तरीका है हमारी जनरेशन को समझने का, क्योंकि हर एक जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम बेबी बूमर्स की बात करते हैं या फिर हम मिलेनियल्स की बात करते हैं या जेन एक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ जाता है, सोच में अंतर आ जाता है, तकनीक में अंतर आ जाता है, बिहेवियर्स में अंतर आ जाता है। और इसी के साथ कई सारे लोग जो बूमर्स के समय, बेबी बूमर्स के समय आए थे, तब कह सकते हैं कि तकनीक का जो हिस्सा था, टेक्नोलॉजी थी, वो धीरे धीरे करते हुए डेवलप होना शुरू हुई थी। और धीरे धीरे करते हुए जब तक हम जेन जी तक पहुँचे तो संचार के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आ गए। और कह सकते हैं कि जिस तरह से लाइफ ने स्पीड पकड़ी, भाई पीछे पलट कर नहीं देखा जिंदगी ने। पहले के ज़माने, यानी हम कह सकते हैं कि जेन जेड तक, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। भाई जब हम बूमर्स की बात करते हैं, यानी 1964 के दौर के जितने भी पैदा हुए लोग थे या उससे पहले, उसे बूमर्स जनरेशन कहा गया था। और बूमर्स सामाजिक रूप से अधिक रूढ़िवादी हो सकते हैं, जबकि जेन जेड विविधता, जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्यता और ऐसे मुद्दों पर बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील है, बहुत ही ज़्यादा रफ्तार दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से जानते हैं हर एक चीज़ को। और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत बूमर्स की जब हम बात करते हैं तो बूमर्स एक ऐसा समय था जब पारंपरिक और ऑफिशियल माहौल को हम बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा करते थे, वर्क लाइफ बैलेंस हुआ करता था। पर आजकल जो है, बस स्पीड बहुत ज़्यादा है और काम बहुत ज़्यादा करना है, तो इसीलिए हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है या फिर जेन ज़ेड कह लो, जेन एक्स कह लो और जेन बीटा, जेन अल्फ़ा कह लो, ये सारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। और डेफिनेटली हम जब उनके माइंडसेट की भी बात करते हैं तो उनके बोलने में, उनके व्यवहार करने में, उनकी बातचीत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बचपन ऐसा कार्यक्रम में आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं तो जेन ज़ी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा रफ्तार तेज़ है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं और इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग और उद्यमिता, यानी हमेशा आप देख लीजिए यंग जनरेशन के जो लोग हैं, जो 12-15 वर्ष की आयु के हैं, वे बेहद पसंद करते हैं अपने आप को हमेशा गतिशील रखने के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए वे हमेशा उत्सुक रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं। और जहाँ बेबी बूमर्स की हम बात करते हैं तो बेबी बूमर्स अभी तक उसी माहौल में है जहाँ पर हम ऐसे ही गाना गाया करते थे,
1: लकड़ी की काठी का ठी पे घोड़ा।
0: पर कुछ भी कह लो, वो दौर भी लाजवाब था।

बचपन ऐसा और ऐसे में आज हम बता रहे हैं आपको कि हर जनरेशन को एक नाम दिया गया है। जैसे आज की जनरेशन जेन जी, जेन अल्फा, और अब 2025 के बाद जितने भी बच्चे जन्मेंगे उनको शामिल किया जाएगा जेन बीटा में। भाई जब हम जेन जी की बात करते हैं तो आपको ये भी बता दे कि ये जो पीढ़ी है वो बिना इंटरनेट वाली दुनिया जानती ही नहीं, यानी स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और ये किसी भी जानकारी को तुरंत ही गूगल पर या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई करते हैं और आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। पहले के ज़माने में लोग मेहनत पे मेहनत किया करते थे, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मिलेनियल या उससे पहले जो थे बेबी बूमर्स, मेहनत ही हमारा नारा था, मेहनत से आगे बढ़ना था। पर आज की ये जो जनरेशन है हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो गई है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये वे अपनी मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत खुशी को मायना देते हैं। जेन जी अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है। वे पुरानी वर्कहॉलिक या दिन रात काम करने वाली प्रणाली जो थी, संस्कृति से सख्त खिलाफ है। अगर कोई कार्य क्षेत्र या रिश्ते उन्हें मानसिक शांति नहीं देते हैं, उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो ना कह देना पसंद करते हैं। और हम जो हैं पुराने ज़माने के, लगता है कि हाय हाय आज की ये जनरेशन तो बड़ी मुँहफट हो गई है। हालांकि ये मुँहफट नहीं है, ये मुँह पर ना बोलना पसंद करती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहाँ हम ना बोलने से इतराते थे, ये जनरेशन बिल्कुल आपको सफाई से ना बोलती है। इतना ही नहीं, ये पीढ़ी दिखावे को पसंद नहीं करती। पहले के ज़माने में हम दिखावे में जानते थे, लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचकर हम बैठते थे। लेकिन सच में देखा जाए तो आज की ये जो जेन जी जनरेशन है वे दिखावे में नहीं मानती। वे ब्रांड्स और कार्यस्थलों से पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं और वे केवल पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसी जगहों पर काम करना पसंद करते हैं जिनके मूल्य और विचारधारा उनकी अपनी सोच से मेल खाते हैं। और ये होना भी चाहिए, जहाँ पर आपको एक खुशी मिलती हो, सैटिस्फैक्शन मिलता हो, वहाँ पर काम करने का जो अंदाज है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। और बचपन ऐसा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं यही डिफरेंशिएशन के बारे में। कई बार हम जनरेशन गैप की जब हम बात करते हैं तो हम ये ब्रिज नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के साथ मेल नहीं कर पाते, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे मानते हैं और इसीलिए ये जनरेशन के साथ आगे हम मिल नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। सच में देखा जाए तो आज की ये जो जनरेशन है वो बहुत आगे का सोचती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जलवायु परिवर्तन जैसे जेंडर इक्वालिटी और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सच में क्षमता और तीव्र आत्मविश्वास के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। बस हाँ, डेफिनेटली उनमें कमी है तो पेशेंस की, क्योंकि सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। यानी आजकल हम कह सकते हैं ना कि बस एक टच पर, यानी स्मार्टफोन्स में केवल एक टच पर सारा कुछ आपको मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने के जो टेलीफोन्स हुआ करते थे, जहां हम नंबर कर कर करके घुमाया करते थे, आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और बस टच पर, एक छूने पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए इस पीढ़ी में धैर्य की थोड़ी बहुत कमी महसूस

होती है और वे हर चीज का परिणाम बस तुरंत चाहते हैं। और इसके साथ ही अत्यधिक स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन रहने के कारण अक्सर उनका ध्यान थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भटकता है। पर चलिए एनीवेज, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में उसका जो पॉजिटिव भी है उसका नेगेटिव भी है। और इसी के साथ साथ ऐसी कई सारी भाषाएं हैं जो आजकल के जेंजी जब यूज़ करते हैं तो भाई हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं, क्योंकि हम हैं कहाँ इनके जनरेशन के। पर सच में देखा जाए तो लाजवाब भी लगता है, पर कई बार ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग से बस छू मंतर होके ऊपर से निकल रही है। बट डेफिनेटली ये जनरेशन भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। चलिए, आज की जनरेशन के ऐसे गाने भी बहुत मजेदार लगते हैं, नाचने पर मजबूर कर देते हैं ये गाने। फिल्म चिल्लर पार्टी का ये गीत, जहां पर एक कुत्ते की वजह से ये बच्चों ने जमाई ऐसी अपनी एक छोटी सी सरकार जिसने बड़ी वाली सरकार को हिला के रख दिया।

भाई कभी बैठिएगा अपने जेन जीज, जेन अल्फा, जेन बीटा के साथ, फिर आपको दिखाई देगा, आपको एक्चुअल में महसूस होगा कि उनके जो सोचने की उनके जो सोचने का ढंग है, उनकी जो चीजें करने का ढंग है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। भाई ये जो जेंजी है, ये जो युवा पीढ़ी है, अपनी तेज रफ्तार सोच, साथ ही साथ डिजिटल समझ और खुली विचारधारा के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, और एक बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ वे समाज में आज एक डिजिटल क्रांति यानी एक पूरा रेवोल्यूशन ला रहे हैं। पर्यावरण में जागरूकता और सामाजिक समानता जैसे बदलाव को लेकर वे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्वपूर्ण और सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। और डेफिनेटली जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ पली बड़ी ये पीढ़ी डिजिटल माध्यमों का बेहतरीन उपयोग करती है। सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आप कोई बिजनेस में जुड़े हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली किसी यंगस्टर या किसी जेंजी की ज़रूर मदद लीजिए, जेंजी या जेन अल्फा की, जो बहुत ही ज़्यादा आपको आइडियाज देंगे, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको सिखाएंगे कि कहां से कैसे क्या लिंक करना है। बिल्कुल बचपन ऐसा, जब हम बात करते हैं तो आज का ये जो बचपन है, ये बचपने वाला बचपन नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला बचपन है, जो इतनी कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। और सच में अगर उन्हें सही दिशा मिल जाए, अगर उनको सही दिशा दिखाई जाए, तो ये दोनों ही यानी हमारी जो जनरेशन है और ये जो जेंजी की जनरेशन है, ये साथ मिलकर आप खुद सोचिए कि क्या कमाल कर सकती है। पर कई बार हमारा जो है ना ईगो बीच में आ जाता है कि हम क्यों सीखें इन छोटी जनरेशन से। भाई हम बहुत ज्यादा जानते हैं, हम बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। बिल्कुल आप अनुभवी हैं, पर इसी के साथ साथ भाई ये जो हमारी चिल्लर पार्टी है ना, ये हमसे दो कदम आगे है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और हमें इन्हें दुनिया सौंपनी है। इसीलिए बहुत ही प्यार से आइए सीखते हैं और उनके साथ जुड़कर कुछ नया सीखकर कुछ नया कमाल दिखाते हैं। बचपन ऐसा कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे इस आखिरी गीत के साथ। और एक स्कूल बनाना है जहां पर बड़ों के साथ साथ बच्चों को शामिल करना है, और जेन जी के साथ आइए हाथ मिलाते हुए समाज में कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा देश तेजी से प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके, और उनके विचारों को हम अपना सके, हमारे अनुभव को वो अपना सके। यही अपनाने का नाम तो जिंदगी है मेरे दोस्त। और इसी के साथ चलिए लगाते हैं एक फुल स्टॉप यहाँ पर, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे आपको आएंगे उठाने के लिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर से। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराइए, जिंदगी बहुत हसीन है।

नमस्कार और आदाब। शाम के 6 बजे हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। यूनिवर्सिटियों में एचआईवी एड्स के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। चेतना अभियान

0: लाने, मुफ्त में वॉलंटरी और गुप्त स्क्रीनिंग करने के लिए ये पहल की जाएगी। गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू, जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह ले रहा है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त कर गए लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। एक बीघा जमीन की कीमत 85,000 रुपये। सरकार ने आलू उगाने वाले 64 खेतीहरों के लिए मुआवजे की ये रकम प्रस्तावित की। फाके की रिपोर्ट के बाद ये प्रस्ताव रखा गया कि ये प्रस्ताव रखा गया है। और पैसिफिक आइलैंड्स में भावी तूफान का प्रहार, नुकसान काफी ज्यादा है। नमस्कार, राधा। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले ये खबर, यूनिवर्सिटियों में एचआईवी एड्स के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। चेतना अभियान चलाने, मुफ्त में वॉलंटरी और गुप्त स्क्रीनिंग करने के लिए ये पहल की जाएगी। 25 से 34 साल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नौजवानों को स्क्रीनिंग करवाना एक बड़ी चुनौती है। अनिशा मदाया, अशिता रघु।
1: एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय का ये छात्र पहली बार एचआईवी जांच करा रहा है। उसने अपने एचआईवी स्टेटस की जानकारी हासिल करने के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन हमारी टीम के वहां पहुंचने तक केवल 4 छात्रों ने ही जांच कराई थी। हालांकि ये सेवा पूरी तरह निशुल्क और गोपनीय है, फिर भी छात्रों को जाँच के लिए प्रेरित करना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सब कुछ ठीक है। इस परीक्षण से हमें अन्य बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। एचआईवी के बारे में कईयों को पता नहीं होता, या शायद वे बताना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल यौन संबंध के अंतर्गत बहुत लोग कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये मॉरिशस में अभी भी मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल हेल्थ लेबोरेटरी के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं में एचआईवी संक्रमण का असर अब भी लगातार बना हुआ है। रोकथाम के चलते परीक्षण करवाने की सलाह दी जाती है। नौजवानों की अपनी जीवन शैली है वयस्कों की तुलना में। एचआईवी को अभी भी कलंक माना जाता है। जैसे जहां स्वास्थ्य अभियान चलाए जा रहे हैं, वहां एचआईवी की तुलना में मधुमेह का परीक्षण करना ज्यादा आसान होता है। लोग इस सुविधा से दूर भागते हैं या कहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वर्ष 2024 में सामने आए नए मामलों में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 48.3% रही, जबकि 2025 में ये 32.8% दर्ज की गई। वर्ष 2025 के दौरान देश भर में एचआईवी की 1,00,000 से अधिक जांचें की गई, जिनमें से 569 जांच विश्वविद्यालयों में आयोजित की गई। ऐसे परिदृश्य में इस क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एचआईवी की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकते हैं। ये पहल व्यापक रोकथाम रणनीति का हिस्सा है, ऐसे समय में जब मॉरिशस में युवा वयस्क अब भी एचआईवी संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले वर्गों में शामिल है।
0: एक व्यक्ति ने रात के वक्त मेट्रो की टिकट मशीन से चोरी की, करीब 1,00,000 रुपए के नुकसान हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा काफी है। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंट्रोल रूम के स्तर पर किस तरह की निगरानी रखी जाती है ताकि नेटवर्क की गतिविधियां सुचारू रूप से चलें। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट में विस्तार विवरण गीता सुनारान का है।
2: रात के करीब 1 बजे का समय था। बेल्ट्रोज मेट्रो स्टेशन पर एक नकाबपोश व्यक्ति टिकट बिक्री मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकद रकम चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार साबित होती है क्योंकि मशीन में नकद पैसा लगभग नहीं था। हालांकि इस तोड़फोड़ से लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। संदिग्ध को 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के चीफ ऑफ ऑपरेशंस लवेश जड्डू कहते हैं, 1 बजे के करीब अलार्म बजने लगा और तुरंत एक प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया। सुरक्षा कर्मी स्थल पर पहुंचा, लेकिन काफी तेजी से व्यक्ति ने उसमें तोड़फोड़ की और चोरी करके चला गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंट्रोल रूम पहुंची, जहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति की हर गतिविधि पर कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाती है। पूरे मेट्रो नेटवर्क के 22 स्टेशनों की

0: निगरानी के लिए 6 कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि मेट्रो की संपत्ति तोड़फोड़ या चोरी का निशाना बनी है। एक्टिंग चीफ सर्विस सपोर्ट राजीव ननकू कहते हैं, दिन हो या रात गश्त लगाने वाली टीमें और सीसीटीवी मॉनिटोरिंग सिस्टम हैं, जहां हर समय सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। हमारे कैमरे की निगरानी के लिए करीब 400 कैमरे हैं और पुलिस के साथ भी निरंतर संपर्क में रहते हैं। सातों दिन 24 घंटे एक पुलिस अफसर तैनात रहता है। हर किसी स्टेशन पर कोई घटना के बारे में पता चलता है तब हम पुलिस कर्मी को सूचित करते हैं, वो संबद्ध पुलिस स्टेशनों में सूचना देता है। शनिवार 20 जून को हुई इस घटना के बाद से बेलरोज स्टेशन की टिकट बिक्री मशीन आंशिक रूप से बंद है। मोगिसियो और उसकी जैसी अन्य टिकट मशीनें हर महीने 1.2 मिलियन यात्रियों की सेवा करती हैं। और अगर कभी आपके मन में किसी मेट्रो स्टेशन को लूटने का विचार आए तो मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि हर एंगल से आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही होती है।
1: गुजरी 1 जुलाई से नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू है, जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त कर गए लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पर रह जाते हैं, कुछ दूसरे अपराधों को हटाया जा सकता है। सिंचा मोटू की रिपोर्ट में ज्यादा जानकारियाँ।
0: नए कानून में भेदभाव न करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि किसी उम्मीदवार का पूर्व अपराध या दुष्कर्म उस पद से संबंधित नहीं है जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो नौकरी पर रखने वाले केवल उसी आधार पर उसे नौकरी से वंचित नहीं कर सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर से कुछ अपराधों को हटाने के लिए मानदंडों को अधिक लचीला बनाया गया है। एक्टिंग प्रिंसिपल स्टेट काउंसिल वकील दामोदर सिंह विशेषा कहते हैं,
2: Sous l'ancienne loi, si une personne finit être condamnée par une cour de justice,
0: पुराने कानून के तहत अगर किसी को दोषी पाया गया और उसे कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना मिला, तब उसे 5 साल इंतजार करना पड़ता, जब तक कि इस अपराध को उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर से नहीं हटा दिया जाता। नए कानून के साथ 5,000 के जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अगर किसी को किसी अपराध के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना मिला, तब 5 साल तक इंतजार करने की बजाय 2 साल के अंदर ही ये अपराध उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में शामिल नहीं होगा। अगर किसी को 50,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना हुआ और 3 साल से कम समय की कैद की सजा हुई, तब उसे 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर 18 साल से कम उम्र की आयु में उसने अपराध किया हो, तब नए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में ये अपराध शामिल नहीं होगा। हालांकि कुछ दोष सिद्धियां ऐसी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इनमें सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर की जालसाजी या धोखाधड़ी से उसमें फेरबदल, शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनना और विभिन्न मौजूदा कानूनों के अंतर्गत आने वाले अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। यदि कुछ अपराध या दोष सिद्धियां जीवन भर सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में दर्ज रहेंगी, तो कुछ अन्य अपराधों को इस सूची से हटा दिया गया है। डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है या अपने पास ड्रग्स रखता है या गांजे का सेवन करता है, ये अपराध जीवन भर उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में रहता है। नए कानून में प्रावधान है कि अगर किसी के पास बहुत कम लागत के ड्रग्स पाए गए या गांजे का सेवन किया गया, तो ये सर्टिफिकेट में शामिल नहीं होगा। ये संभावना भी है कि क्षमादान दे दिया जाए, तब ये अपराध उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में शामिल नहीं होगा। जिला पुलिस स्टेशनों को अब सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के लिए आवेदन स्वीकार करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। डीपीपी दफ्तर हर महीने लगभग 9,000 सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के आवेदन प्राप्त करता है।
1: छात्रों के लिए 2 नए अंडरग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें। कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा।

0: कि ग्रिडस में ऐसी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कि कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में। एक बीघा जमीन की कीमत 85,000 रुपए, सरकार ने आलू उगाने वाले 64 खेतीहरों के लिए मुआवजे की ये रकम प्रस्तावित की। फागे की रिपोर्ट के बाद ये प्रस्ताव रखा गया। रिपोर्ट में ये उल्लेख हुआ कि सन 2025 में आलू की फसल में बहुत नुकसान हुआ क्योंकि एएमबी ने अनियमित बीजों की सप्लाई की थी। तांजानिया मॉरिशस के साथ अपना सहयोग कई सेक्टरों में मजबूत करने का इरादा रखता है, जैसे शिक्षा, कृषि, पर्यटन और नई टेक्नोलॉजियों के संदर्भ में। तांजानिया की नई उच्चायुक्त सुजान सालोमी कागांदा ने आज गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र दिया। सन 2007 से दोनों देशों के बीच सहयोग है। मॉरिशस और तांजानिया एक स्थायी आयोग कायम करने का मकसद रखते हैं ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा किया जा सके। लागोजा में 46 साल के एक आदमी के यहाँ 900 से ज्यादा साइकोट्रोपिक दवाएं पाई गई हैं। कल सुबह उसके घर की तलाशी ली गई। गांजा और 3,150 रुपए की रकम भी जब्त की गई। ये पैसे ड्रग्स की बिक्री से बरामद किए जाने का शक है। संदिग्ध मुजरिम को ड्रग तस्करी और डेंजरस ड्रग पोसेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया। और अब विदेश की खबरें। पैसिफिक टापुओं में सालों के बाद एक जोरदार तूफान ने प्रहार किया। बावी नामी इस तूफान से बड़े नुकसान पेश आए हैं। उधर केव में लगातार दूसरी रात के दौरान रूस ने हमले किए। कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। करीब 46 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल। 20 से ज्यादा जगहों पर बचाव कार्रवाई की जा रही है। और अब कुछ दूसरी खबरें विधिमा सिबोरन के साथ।
1: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के पास शनिवार शाम लगी एक भीषण जंगल की आग के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। आग के तेजी से फैलने के बाद शहर के उत्तर में स्थित 3 छोटे उपनगरों के निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। मध्य पुर्तगाल के वुजेला के पास लगी एक भीषण जंगल की आग तेज हवाओं और अत्यधिक गर्मी के कारण कई नगर पालिकाओं में फैल गई है। जैसे ही निकासी के आदेश दिए गए, निवासी अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अग्निशमन प्रयासों के तेज होने के साथ ही अधिकारियों ने हजारों हेक्टेयर भूमि के जलने की सूचना दी है। स्पेन के कोस्ता ब्रावा के बे ओंपोदा जिले में शुक्रवार को लगी जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार ये आग लगभग 1800 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है, जबकि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी चीन में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश के दक्षिणी हिस्से में आए एक ट्रॉपिकल तूफान ने पेड़ गिरा दिए और गाड़ियों को पानी में डुबो दिया। सुरक्षित स्थानों पर लगभग 3,600 निवासियों को स्थानांतरित किया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे राज्य में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पालघर जिले के कुछ हिस्सों से बाढ़ जैसी स्थिति की खबरें हैं, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे व सतारा के घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू है।
0: और अब आज खेले गए मैचों की बात करते हैं। इंग्लैंड और नॉर्वे की जीत हुई है। मेक्सिको और ब्राजील की हार 3-2 और 2-1 से हुई है। विस्तार अरविंद बिसेसर के साथ।
2: वर्ल्ड कप में टीमें आती हैं जाती हैं, पर जब वर्ल्ड कप में से ब्राजील बाहर होता है तो इसे बड़ा झटका माना जाता है। ब्राजील की टीम इस बार नॉर्वे के खिलाफ हार गई, 2-1 से ब्राजील की हार। मेटलाइफ स्टेडियम जो रंगारंग था दोनों टीमों के रंग में, शुरू में नॉर्वे ब्राजील के खेल को परख रहा था। लासेलिसाओ को एक पेनाल्टी भी मिलता है, लेकिन ब्रूनो गुमारेस के सामने नॉर्वे का चट्टान जैसा गोलकीपर नाइलन था जो पेनाल्टी रोक पाया। ऐसा मौका अगर हाथ से जाने दे तो बाद में पछताना पड़ता है। नॉर्वे में ऐसा खिलाड़ी है जिसको जब एक मौका दिया जाए तो वो छोड़ता नहीं।
3: It's vital for Brazil.

0: अर्ली अलोन। इस मैच में चार शॉट लगाता है दो गोल। इंजरी टाइम में ब्राजील एक गोल कम करता है नेमार के पेनाल्टी के जरिए, पर बहुत देर हो चुकी थी। नॉर्वे पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड मेजबान देश मेक्सिको को हरा के यहां पर पहुंचा। ब्राजील के वर्ल्ड कप का किस्सा समाप्त, अब फिर से इस टीम को बनाना है।
1: और राउंड ऑफ 16 में आज रात 11 बजे पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला होगा। अमेरिका और बेल्जियम के बीच कल सुबह 4 बजे और अर्जेंटीना इजिप्ट के खिलाफ खेलने वाला है कल रात 8 बजे। विस्तार।
0: आज टेक्सास में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से है। एक 2024 में यूरोपियन चैंपियन बना था, दूसरा यूरोपियन नेशंस कप जीत पाया था। इबेरियन डर्बी कहा जाता है इसको। दो पड़ोसी आमने सामने। स्पेन की टीम पर अभी तक किसी ने गोल स्कोर नहीं किया है। डिफेंस मजबूत है और सामूहिक खेल उनकी शक्ति है। लामिन यमाल के साथ ओयोज़ाबाल गोल पर गोल स्कोर करता जा रहा है। पुर्तगाल अपने अनुभवी खिलाड़ी पर निर्भर करेंगे, जिनमें आक्रमण काफी है और अनुभव काम आएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडेस जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। करीबी मामला होगा दोनों के बीच। इस मैच में एक्स्ट्रा टाइम और पेनाल्टी तक भी जा सकते हैं। स्पेन की टीम यहां तक आने के लिए आराम से ऑस्ट्रिया को हराया, जबकि पुर्तगाल को बहुत पापर बेलने पड़े क्रोएशिया को हराने में। पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, ये मैच 11 बजे एमबीसी के स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाया जाएगा। फिर कल सुबह इस वर्ल्ड कप में बची मेजबान टीम यूएसए का सामना बेल्जियम से है। अपने घर में अपने फैंस के सामने हौसला बुलंद है यूएसए के लिए, और उनका टॉप स्ट्राइकर बालोगन, जिसको रेड कार्ड मिला था, उसे रद्द कर दिया गया था, वो खेल पाएगा। मॉरिशियो पोचेटिनो की टीम में ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। सामने है बेल्जियम की टीम, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं है। केविन डे ब्रुइन, लुकाकू, कूतवा सब हैं यहां पर। इस वर्ल्ड कप में धीमी गति से शुरुआत हुई थी, रफ्तार पकड़ते हुए यहां पर पहुंची है बेल्जियम की टीम। ये मैच 4 बजे कल सुबह।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। हमारे इलाके में एक ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम काफ़ी हवादार और ठंड महसूस की जाएगी, और कल सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी होगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की वर्षा होगी। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 15 से 18, अधिकतम 17 से 20। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। और कल दक्षिण पूर्व की तरफ से हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली। सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जाती हैं, ख़ासतौर पर समुद्र में न जाने की दरख्वास्त है। कल 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:43 पर सूरज ढल जाएगा।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नंबर 67 पुश स्ट्रीट थोंकबा में 77 साल के 77 years old श्री हरिदेव लक्ष्मीन जो गुरु के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु

हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे उठाई गई। डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 years old श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद, श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद जो कुशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व पैच सुपरवाइजर ऑफ एयरपोर्ट थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौताल बेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड त्रोआ बुटीक त्रियोले में 47 साल के 47 years old श्री सच्चिदानंद परलाकी, श्री सच्चिदानंद परलाकी जो ऋषि एक्स प्रिजन ऑफिसर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल ढाई बजे इनकी माँ परबावती सकुन परलाकी के घर महात्मा गांधी रोड त्रोआ बुटीक त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। जोली स्ट्रीट 400 में 74 साल की 74 years old श्रीमती मानती राम सोहक पैदाशी नाम जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने एक बजे इनके भाई पुरन बली के घर जोली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 PM। कलावती राकुतू अली बॉम्बू मोतायोरी में 100 साल की 100 years old श्रीमती कलावती राकातू पैदाइशी नाम सालदों जो पुपू साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने ग्यारह बजे इनके बेटे देव राकातू के घर अली बॉम्बू मोतायोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाए की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 AM। रॉयल रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 years old श्री देवानंद ईश्वरलाल बोलोराम जो बोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके घर रॉयल रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। रॉयल रोड एस्पेरेंस ट्रेबुशे में 79 साल के 79 years old श्री सुरेंद्र रंजया जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी पत्नी सेलू रंजया के घर रॉयल रोड लिस्पियांस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 8 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सुरीनाम और आसपास के इलाकों में मौसम

भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आप समस्त श्रोताओं को हमारा जो है सादर प्रणाम स्वीकार करें, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। चंद भक्ति गान आपकी सेवा में। वैसे आज है सोमवार, सोमवार का दिन समर्पित है भगवान शिव का, और भगवान शिव जो है वो सत्य है, सत्य में ही शिव है। तो चलिए इसी भाव के साथ हम आज जो है उनके नाम जो है चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में प्रसारित करने वाले हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा जो है भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को हमारा नमन।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यही कहेंगे कि भक्ति की सबसे सुंदर पहचान आंसू नहीं बल्कि वह शांत मुस्कान है जो पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास से जन्म लेती है।

भजले प्रभु का नाम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको पता है आज का दिन जो है बहुत सारे लोग जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उनका जो है शिव अभिषेक करते हैं, अनेकों उपाय करके उनको हम प्रसन्न करते हैं। कहते हैं ना शिव बहुत ही दयालु है, एक लोटा जल चढ़ाने से ही वे खुश हो जाते हैं। तो आइए चैन भक्ति गीत जो है आप

श्रोताओं, जब हम समर्पण के बारे में बात करेंगे तो हम यही सीख लेते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर पल ईश्वर की अनमोल देन है। इसलिए हर सांस के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे, समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। जहाँ अपेक्षाएं समाप्त होती है, वहीं से प्रभु की कृपा का अनुभव गहरा होने लगता है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जाने से पहले हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने में देर ना करो, ऐसा ना हो कि जब जान हलक तक आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। बहवाला सही अल-बुखारी शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमने जो कुछ नेक बातें आज समात फरमाई, हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 6 जुलाई 2026 के रात्रि है और आज इस सप्ताह के पहला दिन सोमवार के दिन रात के 9:03 होलबा और आपके मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का के समय चलाल बा। अभी से रात के 11 तक हमार और आपके साथ रही हमेशा की तरह रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर ये कार्यक्रम के प्रसारण हुआ था। और जैसे जाने ला ये कार्यक्रम के अंतर्गत आपके मनपसंद भोजपुरी गीत चलेला आपके ही फरमाइश पर। और जैसे जाने ला मॉरिशस में भोजपुरी के जोन एगो नावा सकब जा बोले जुनून छैले जाता हमने के देश में, ओकर अंतर्गत हमने के कलाकार लोग एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर गीत गावत हवन जा। और ये भोजपुरी में खाली नावा ही नहीं बल्कि पुराना गीत भी शामिल बा, पुराना लेकिन परंपरागत हमने के रीति रिवाज से जुड़ल, हमने के जो विरासत बा ओकर से जुड़ल। और ये सब गीत के ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुत प्यार से चलाए ला सा और उतने ही प्यार और मोहब्बत के साथ और उतने ही दिलचस्पी के साथ आप लोग हमने के साथ देवेला, ये खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। पहला गीत ई रात्रि के जोन वेला बा ओकर से बहुत तालमेल रखता और सुनते ही आप समझ जेबा काहे कि आजकल ठंडा के मौसम बा, कहूँ कहूँ थोड़ा बहुत पानी भी बरसता और एकर में मेंढक लोग ढेर चिल्लावे लगेला। तो पहला गीत मेंढक चिल्लाए कृष्ण के आवाज़ में, आप सब कोई के नाम कृष्ण ओकाच के आवाज़।

0: संगे।
1: और जब सर्दी के मौसम आवेला जहाँ पर घाम उतना कड़ा नहीं रहेला और ठंडा ठंडा हवा चलेला, ढेर घड़ी तक घाम नहीं मारेला खेत पर, तो ऐसन में रोपाई करे के सबसे बेहतरीन मौसम है। और गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश। अमृता गणेश अपन दुगो नातिन के नाम सोनिया और परी, और अपन बेटी के नाम पूनम, और साथ में अपन बेटा और बहू के नाम इगीत करत हवन, जिनकर नाम बा विशान और मीनाक्षी, और पूरा गणेश परिवार के नाम जे पितो से हवन जा। और आप ये भी बोलत हवा कि जितना कोई ई बखत आपके फरमाइशी गीत सुनत हवा जा, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

आज सोमवार के जन दिन रहेला काफी भारी रहेला, काफी कठिन रहेला इस सप्ताह के शुरुआत करे के, खास तौर पर जब सप्ताहांत में एगो ब्रेक मिल जाला। और इ ब्रेक से न सिर्फ आराम ही होवेला, लेकिन आराम के संगे संगे वो सब काम भी जुटावल जाला जौन भर्ती समय नहीं करले हवा। तो इ वजह से लेंदी के पेड़ से काम में जाए के थोड़ा कठिन हो जाला। फिर से वो जौन रोजाना रोजमर्रा के जीवन बा ओकर से जुड़ला थोड़ा मुश्किल लगेला। और ख़ास तौर पर आजकल जबकि वर्ल्ड कप के मौसम चलता, रात रात भर भजीर के बुनेरे ढेर कोई उठत हवा जा फुटबॉल देखे खातिर, और एकर से आपके परिवार के भी थोड़ा नींद खुल जात हुई। तो ये एगो दूसर अभी से कब्जा बोले एगो ऐसा माहौल से गुजरत है जा, जहाँ पर उत्साह ही उत्साह बा, और जहाँ ढेर उत्साह रहेला तो वहाँ पर थोड़ा बहुत थकान भी महसूस होवेला। आज लेंदी के दिन सबसे जस्ती थकान महसूस करे होला दिन है। तो आशा करत है जा कि जैसे तैसे ये दिन कट गल, लेकिन अब आराम के समय बा, सप्ताह के शुरुआत अच्छा से हो गल। लेकिन अभी अमी के सामने 4 दिन बाकी बा, इस 4 दिन के चाहिए उतना ही ऊर्जा उतना ही उत्साह के साथ बितावे के जितना कि इस सप्ताहांत बीतल। और आप में से कितने जना के स्वास्थ्य उतना ठीक ठाक नहीं चलेला, अभी आत्माराम जी फ़ोन करलन और बोलत हवन कि बहुत बीमार हवन। आत्माराम जी आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इ खातिर हमने सब कोई के प्रार्थना, हमने सब कोई के प्यार और आशीर्वाद आप संगे बा। आप सुने चाहत हवा महेश विश्वजीत के आवाज़ में पानी के बुलबुला। और ये गीत आप हमेशा की तरह अपन 4 गो बहिन के नाम करत हवा, सुदेवी, ललिता, छोटी और प्रभावती के नाम। तो जितना कोई ये गीत खुशी रहे ला जा सुने के चला, आज बहुत दिन बाद फिर से ये गीत चला जा।

जीवन बा पानी के बुलबुला ई गीत के फरमाइश आ रहल आत्माराम जी के ओर से जे बेलिया से हवन और एकर बाद जो अगला गीत चली धोती पोती पगड़ी ई गीत हमेशा एकर फरमाइश आते रहेला। ई गीत ई बखत सुने चाहत हवन सेंट जूलियन विलाज के नीता किडनी जी। नीता जी ई गीत खास तौर पर अपन पूरा परिवार किडनी परिवार के नाम करत हवन और साथ में आप बोलत हवा कि ई बखत आप अपन बेटी के घरे हवा फ्लैक में हवा। बेटी के नाम बा रूमा और दामाद के नाम बा कृष्णानंद और आपके एगो पोता बा वैभव। तो आप ई सब कोई के नाम साथ में पूरा जीता और किडनी परिवार के नाम अगला गीत सुने चाहत हवा विक्रम कोलाचंद के आवाज़ में। आप सब कोई के मनपसंद गीत धोती पोती पगड़ी।

धोती पोती पगड़ी संभाल के जब अइलन, ये गीत आप लोग के सबसे मनपसंद है, ये बात हमने सबको जानी ला जा। और एकर बाद जो अगला गीत चली, मच्छी मरवा हमर नाम, हम मच्छी मारीला, ये गीत के फरमाइश आलबा हमनी के भाई अबू के ओर से। और भाई अबू, ये गीत ख़ास तौर पर अपन बीमार भगिनी के नाम रकीबा के नाम करत हवन। और रकीबा के साथ हमने सब कोई के दुआ बा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएबा। और ख़ास तौर पर आपके मामूजान भाई अब्बू के ओर से आपके बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआ। और साथ में भाई अब्बू, ये गीत जितना कोई ये बखत रेडियो सुनत हवा जा, आप सब कोई के नाम करत हवन। साथ ही साथ आप हमेशा की तरह अफेज़, अयाज़, ज़यर, ज़हीरा, रईस काला चोटी और अपन दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवा। तो चला ये गीत सुनी जा, भले ही आजकल सर्दी के मौसम बा, समुंदर में जाए के आसान नहीं बा, फिर भी चला देखी सा कैसे मच्छी मराता।

आपके फोन कॉल्स, आपके मैसेज एक के बाद एक ले जाता, एक खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। हमने के व्हाट्सएप मैसेज सकबा आप भेजे 5251700005 पर, सैंग वैन सैंग जिसत 005 पर, और फ़ोन नंबर तो आप जनबे ही करेला, कहे कि एक ही आला 6-7 जना जब फ़ोन करेला जा तो एक मतलब है कि हमने के फ़ोन के नंबर आप लोग बहुत भली भांति जाने ला जा। अगला जन गीत चली विनोद शिवदत्त के आवाज़ में, दगा दिले रे सुनरवा। ये गीत सुने चाहता वन शीला जी अपन पति के साथ सुरेन, और ये गीत आप लोग अपन पूरा परिवार सब लड़का लोग के नाम करत हवा, सब भाई बहन सब जोन परिवार के सदस्य बा, जे लोग पर फ़ोन पर जे लोग से आपके बातचीत दिन भर रात भर होते रहेला, वो सब कोई के नाम शीला जी के ओर से ये अगला गीत।

0: मिला किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one station.
4: रात के 10 बजे में और 15 मिनट कमती बा और आप लोग के साथ अभी तक हमने के ये प्रोग्राम के संगे संगे चला था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सफ़र बा आपके साथ ही बनेला और अंतिम घड़ी तक आप लोग साथ देवेला जा, एकर से खुशी के बात और का रही। बरसेला मुसर के धार, रामतोहल सीता देवी के आवाज़ में ये गीत के फरमाइश करले हवन रोजील से साजिद। साजिद ख़ास तौर पर अपन दोस्त सरोवर जे कनाडा में हवन, ओकर नाम गीत करत हवन। और ई बखत जितना कोई भी रेडियो सुनत था और हमर नाम भी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी। तो सुनी जा ई गीत रामतोहल जी के आवाज़ में।

सच में हमने के धरती काफ़ी सुखल बा, काफ़ी प्यासल बा, और जब ये सर्दी के मौसम आल बा तो सकब जा बोले कि एगो थोड़ा राहत मिलता हमने के ये धरती के, जहाँ नदी के भी बहे के मौका मिलता। और अगला गीत गिरीश रूपचंद के आवाज़ में सुंदर परी, ये गीत सुने चाहत हवन ख़ास तौर पर शांति जी जे त्यागूज से हवन। शांति जी ये गीत नाम करत हवन अपन भगिना ओम जे अप दागोचिया रहेला, और दागोचिया के अपन पूरा मराठी परिवार के नाम, और साथ में चाची शांति बोलत हवन कि ये गीत आप हमार नाम भी करत हव। और जितना कोई ई बखत रेडियो सुनता, चाहे आप लोग काम करत हुई बजा, आराम करत हुई बजा, या ड्राइव करत हुई बजा, आप सब कोई के नाम ई अगला गीत सुंदर परी, दूर से देखली, पास से देखली, का सोचली और का लौकल।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night.

एक घंटा के सफर हमने के पूरा हो गल और एक घंटा हमने के अभी बाकी बा। और अगला जन गीत चली आतिश भगीरथी के आवाज में छोर के मोरी स्वा। ई गीत के फरमाइश कर ले हवन फ्लिक ऑन फ्लैक से अनिता जी। अनिता जी हमेशा मैसेज भेजेलन और बहुत आगे से आपके मैसेज चलल बा। थोड़ा चला गीत के चलावे में देरी हुआ था, ई खातिर माफ़ करिया अनिता जी। आप ई गीत खास तौर पर अपन पति राज, अपन बेटा अंतिश अंकुश, आपके बहू मनीषा, आशिमा पोती हिमेशा, आध्या पोता अंश और बोला था कि हमर नाम भी, और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के सुनने होला पूरा टीम के नाम ये गीत करत हवा। और आपके साथ साथ ये गीत फोंजिसा के उमा जी खातिर भी, उमा जी अपन फूफू खातिर ये गीत मांगत हवन जे बीमार चलत हवन, और आपके फूफू के तबीयत ठीक हो जाए ई खातिर हमने सब कोई के आशीर्वाद उनकर संगे बा, हमने के प्यार बा। आपके दुगो सहेली हवन देवी और मुन्नी, आपके भी नाम उमा जी के ओर से फौजिसाक से जे हवन। और जितना कोई के ई मनपसंद गीत है आप सब कोई के नाम चला ई सुंदर गीत सुनी जा, जो मॉरिशस के साथ साथ मॉरिशस से अलग होई के भी जोन भावना बा ऊ बयां करेला।

रात के ठीक 10:06 हो गल बा, और अगर आपके नींद लगे कि शुरू हो गल हुई तो हमने यही आशा करा थे जा कि आपके एगो मीठा नींद आए, अच्छा अच्छा विचार के साथ सुते जाया, ताकि फजर के जब उठबा तो आपके मन हल्का रही और आपके जितना विचार रात भर आपके मस्तिष्क में चलल बा, कहे कि सुतला के बाद भी आपके दिमाग काम करते रहेला, और जितना विचार के साथ आप सुते जाएबा वो सब आपके दिमाग में चलते रही। और ये भी बोलल जला कि जैसन विचार लेके आप सुतबा वैसन ही सच्चाई आपके सामने आए। बोलल जला सिद्धि से सृष्टि होवेला, तो ये खातिर आपके चाहिए अच्छा अच्छा चीज सोचे के, और रात भर जब आपके मन में ओकर मंथन होई तो वो सच्चाई के रूप भी ले लेवेला। तो ये बखत जितना कोई सफ़र पर होई बजा, ड्राइव करत होई बजा, काम में होई बजा, तो आपके बहुत बहुत शुभकामना। हमने आपके साथ देवबजा अभी से और एक घंटा तक, ओकर बाद भी हमने के ये प्रोग्राम चलते रही रेडियो पर। आप जाने ला रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के साथ साथ हमने के सब जितना MBC के रेडियो चैनल बा आपके सेवा में 24 घंटा उपस्थित रहेला। आपके जोन भी मूड रही, जोन भी पसंद रही, जोन भी राग, जोन भी सुर आप सुने चाहत हवा, जोन भी समय के गीत आप सुने चाहत हवा, वो सब हमने के अलग अलग चैनल पर आपके सेवा में

प्रस्तुत होते रहेला। अगला गीत बसंत सुपोल के आवाज में बेलेला बेलेला ये गीत सुने चाहत हवन लाल माची से शोभा जी। और शोभा जी बोलत हवन कि ये गीत जितना कोई अभी हमने के सुनत हवा जा उनका नाम करत हवन, ये बखत ऐसा ढेर कोई आप में से हो बजा जे लोग वर्ल्ड कप के इंतज़ार में तब तक रेडियो संगे टाइम पास करत हवा जा। तो जब तक कि हमने के टीवी पर फुटबॉल नहीं चले लगी हमने के साथ देवत हवा, ये खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकवाक के सुदेवी जी भी हवन, आप भी कुछ समय आगे से अपन मैसेज भेज दिले हवा और आप बोलत हवा कि हमेशा के तरह प्रोग्राम के आप सुनते आवत हवा, पसंद करते आवत हवा। और अगला गीत आप अपन दीदी ललिता और पूरा कुशल परिवार आत्माराम भैया, सुनीता दीदी, शोभा और देवीना के नाम करत हवा, मालेगा के रामरतन परिवार, राम गुलाम कोतवारू परिवार और जितना कोई हमने के सुनत हवा जा सब कोई के नाम बसंत सुपोल की आवाज में अगला गीत।

आज 6 जुलाई के जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और खाली आज ही नहीं बल्कि काल जेकर जन्मदिन रहा, काल जेकर जन्मदिन रही और हमने के मुलाकात हुई होला बा बिफे के, तो अभी से बिफे तक जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

रात के 11 बजे में लगभग आधा घंटा बाकी बा, 10:27 हो गल बा। और अभी वर्ल्ड कप के शुरू होई में सकब्जा बोले और आधा घंटा बा। अभी जोन

मैच चली एकर इंतजार आप में से बहुतों के होई जे आपके नहीं होई ता आपके परिवार के तो जरूर होई। आज रात के 11 बजे मैच चले होला बा पोर्टुगल और स्पेन के बीच और अब से देखते जाके मैच जस्ती तगड़ा हो गल बा सब कोई के

0: दुनिया के एगो सूत्र में बांध के रखे और यही आशा करत है जा कि जो सबसे बेहतरीन टीम रही, जो सबसे अच्छा खेली ओकर ही जीत हुई। तो चला अगला गीत के ओर बढ़ब जा और कुणाल हीरीलाल के आवाज़ में जलसा के रात, एकर बाद संतोष महादेव के भी सुनब जा और दिव्या रघु और उनकर आवाज़ में पियर पियर ऊँठी और फिर आशीष रामफल के आवाज़ में सुहाना सफ़र, धनाजी नावजी के आवाज़ में वो बहुत सुंदर गीत जवानी के रेल धुआं उड़ैले चला जाला और 11 बजे से ठीक कुछ मिनट पहले नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में फुटबॉल पर गीत चली, जेकर बाद वर्ल्ड कप उधर शुरू हो जाए और इधर सुनहरे पल शुरू हो जाए। आशा करत है जा ई प्रोग्राम से आप सब कोई के अच्छा मनोरंजन हुआ था, हमने के साथ देवत हुआ, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार खातिर, आपके जितना मैसेज बा, आपके जितना फ़ोन कॉल्स बा, हमने के साथ ऐसे ही देते रहिया। और चला अगला गीत आप सब कोई के नाम कुणाल हीरीलाल के आवाज़ में।
1: जलसा

0: मिलाओ किरण संगे।
1: RM3 Radio.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
0: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: A very good evening to all of you. नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों। शायद आपकी पहली मोहब्बत बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों। शायद आपकी पहली मोहब्बत बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप काम पे हो तो आपको विश करना चाहेंगे बॉन वोयाज माय डियर, और अगर घर पे हो आराम फरमा रहे हो तो बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे आप लोगों के लिए। जी हाँ, पुराने बॉलीवुड के सुनहरे गीत आपके दिल को ज़रूर छू जाएंगे, ये हमें पता है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और ये अगला गाना आप दिल से महसूस कर लीजिए।

जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लेना चाहिए और सुनिए वो गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल सुनहरे पल में लेकर आते हैं ऐसे कुछ प्यारे प्यारे गाने जो सीधे आपकी यादों को छू जाते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए बस तैयार।

पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि उनमें बसी होती हैं यादें और जज्बात। आइए उन लम्हों को फिर से जी लेते हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। तो दोस्तों, म्यूजिक सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस भी किए जाते हैं, हमेशा हम आपको कहते हैं। और आज के ये गीत आपके दिल की हर धड़कन को एक नई मुस्कान देंगे।

कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा दिल के करीब रखते हैं, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हर उम्र के लोगों को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। आज हम वही अनमोल गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यादों की डायरी खोलिए और पुराने बॉलीवुड के उन गीतों के साथ वक्त को थोड़ा सा पीछे ले चलिए। स्वागत तो बड़े प्यार से हमने कर लिया है जी, और ये शो बहुत ही प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि बस आप रिलैक्स होके हमारे साथ एंजॉय कीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू। बस अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से शो में जिसका नाम है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे तेरी ओ ऐसा चला तेरा।
3: Turn up the volume.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: My, this is Radio Voices.
2: नमस्कार
3: ஸ்ரோதரந்திரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
4: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
5: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस नेवर

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: जमुना, जब वक्त ने हमारी जिंदगी के फासले मिटा दिए तो फिर ये शर्म का पर्दा क्यों? देखो, अगर तुम यूं ही शर्माती रही तो ये पर्दा ऐसे ही पड़ा रहेगा।
1: तो आप ये पर्दा उठा दीजिए ना।
2: You're listening RM Free Radio.